السماوات

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hamay Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de chaar guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hamay Diamond Glow Bleach Cream.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिलु करियो. सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो. अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे. होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे. एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण. वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763.
5: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरण, ऐं सकरण जो आवाज़
6: GFM 90.8.

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
0: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
0: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
2: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
0: 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: Ladies and gentlemen, Mark Ihop proved that Pakistan's response is not driven by rhetoric, but by preparedness, professional excellence, and strategic clarity. The enemy was defeated in all domains by forces united in purpose and execution.
1: Hazrat, Pakistan chahta hai. लेकिन अपनी खुदमुख्तारी और अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी बरी, बहरी और फजाई अफवाज हर लम्हा तैयार है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसे पहले ज्यादा सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा।
2: दुश्मन के नापाक जवाब में हमारी बहादुर अफवाज ने हमेशा पाकिस्तानी अवाम के एतमाद, हौसले और जज्बाए हुब्बुल-वतनी को तकवीयत बख्शी है और कौम की उम्मीदों पर पूरी उतरी है।
1: ख्वातीन और हज़रात, कंपटीटर्स की आवाज इशारा है कि आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी परेड में तशरीफ ला रहे हैं।
2: मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेगा। आपसे गुजारिश है कि जब कौम तराना पढ़ा जाए तो एहतरामन अपनी नशस्तों से खड़े हो जाएं और बाबर्दी हज़रात सल्यूट करें।

सहर को जाके बता दो कि बेखतर निकले। हर एक महास पर इसको जुनू सलामत है।

0: Moin, meine Mama.
1: Oh!

0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालों, आखिर वो बात क्यों कहते हो जिस पर अमल नहीं करते। अल्लाह के नजदीक ये सख्त नाराजगी का सबब है कि तुम वो कहो जिस पर अमल न करो। बेशक अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है जो उसकी राह में इस तरह से बांध कर लड़ते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो।
1: जज़ाकअल्लाह।
0: ख़वातीन हज़रात, मार्के हक के दौरान पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की रहबरी में अफ़वाज़े पाकिस्तान और पूरी कौम ने हक के रास्ते में बुनियाद मरसूस की मानिंद पाकिस्तान का भरपूर दिफा किया। अफ़वाज़े पाकिस्तान के हर जवान के लब पर नारे तकबीर बुलंद हुआ और इफ़लाक़ ने ये गूंज सुनी कि पाकिस्तान का दिफा नाक़ाबिले तस्ख़ीर है। हम आम के ख़ाह हैं मगर अपनी खुद मुख्तारी के मुहाफिज भी। अफ़वाज़े पाकिस्तान हम हर खतरे से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। ख़वातीन और हज़रात, अब मैं आज तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशाने मिलिट्री हिलाल जुरत से दरख्वास्त करता हूं कि वो तकरीब से खिताब फरमाएं।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।

0: Chief of Air Staff, General Officers, Flag Officers, or Air Officers, Officers of Fawaj-e-Pakistan ke Jareen-e-Jawano, Sailors or Airmen, Qabil-e-Ikram, Mehman-e-Ikrami, Khawateen-e-Hazrat, Assalamu Alaikum. आज का दिन हम सब के लिए बाएसे खार है कि एक साल कबल माकाए हक ऑपरेशन दुनिया महसूस में अल्लाह ताला की रज़ा से पाकिस्तान इसकी अवाम और वाज़े पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी मिली। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब से 10 मई तक दुश्मन ने पाकिस्तान की मुख्तारी और जोग्राफियाई हदूद की खिलाफवर्जी करके हमारे कौमी अज़्म-ओ-वक़ार को आज़माने की नाकाम कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब पूरी कौमी वहदत और अस्करी क़ुव्वत से दिया गया। मार्का-ए-हक महज दो ममालिक या फ़ौज के दरमियान जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि हकीकत दोनों रियासतों के दरमियान मौका था।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: हाँ, हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज से कुदरती शिफा हासिल करो। सेहत तंदुरुस्ती की नई राह से गामजन थे तो देर छो। अवे शहर सकरडमी मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ है अध मथे जो सूर अखिन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण। वधिक मशोरे राबते 0327-99-84-763।
6: अजरक के रंगों से रंगी,
7: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,

0: चाटा थे ये मत
1: सुबह की पहली किरण
2: मुतवाजिन गजा महंगी ना होंगी बेहतरीन गजा बारन जो बेहतरीन मुस्तकबिल ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट के तरफा पेश कयो वयो
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
5: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं
4: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
6: खाधो गरम करे थी वठा
7: पुद थकल थकल पे लगे घणी खरेता
6: तवा जो पुट सुमई नथो पूरी रात मा त खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा
8: मेरी थकल को भी तेरे
7: तू हल वे मा अच्छा तू

0: हे वट एड़ी शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तवा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी त माके खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पीरण वाली माओ जी बेहतरीन गिजा भाव ए बार इन्हीं जो हक है ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: हाँ हैरत अंगेज ए जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज से कुदरती शिफा हासिल करो सेहत ए तंदुरुस्ती की नई राह से गामजन थो तो देर छो अवे शहर सकरणमी मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो ए जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ है अध मथे जो सूर अखिन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई बरोज जुमू मोकल आहे एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण मशोरे राब्ते

0: लाइ 0327 उणानवे चौरासी 763।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

Thank you.

0: Now, just wait for our response.
1: Pakistan, hamesha zindabad.
2: हक जी जंग में भारत जी प्रतनाक शिकस्त एक साल मुकम्मल अज समूरे मुल्क में फतेह जो जश्न मल्हायो पियो वञे जी एच क्यू रावलपिंडी में शानदार तकरीब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के शहीद की यादगार से हाजिरी गुलदस्तो रखियो पियो फातेह खानी कई आई एस पी आर पारा जारी कियल बयान में चयो वियो आहे कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी अंबार चर्जन के मुंह डेण मुकम्मल तौर से तैयार है जंग में फतेह हथियारबंद फौज की तैयारी जहा पेशेवराना सलाहत जो सबूत है हक जंग में कामयाबी आवाम जो हथियारबंद फौज के अतमाद के मजबूत किया है।

भारत खिलाफ ऑपरेशन अमेरिका जी कामयाबी के एक साल मुकम्मल थियण ते सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कौम ए पाक फौज के वाथायूं। आसिफ जरदारी चो तो पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जारियत जो भरपूर जवाब दियण भी जानूं था। फील्ड मार्शल आसिम मनीर की क्यादत में पाक फौज दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दिनों। भारत के गैर कानूनी कब्जे हेठ वलायल कश्मीर जो मसलो ठहराइण मुताबिक हल थियण घुर्जे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखो। वजीर आजम शहबाज शरीफ पैं पैगाम में है दुश्मन खिलाफ कामयाबी थे अल्लाह तला के बेशुमार निमतन एहसासन लाए सजदो करण जो ढी है। अज असा उन अजम हिम्मत ए साबित कदमी के याद क्यों पा जेका पाकिस्तान शिकस्त डी। भारत खिलाफ हक की जंग में कामयाबी के एक साल मुकम्मल थियण ते पीपल्स पार्टी कराची के सीवीयू वट शानदार तकरीब। वडे वजीर मुराद अली शाह खिताब करे जो तो पाकिस्तान हक की जंग में दुश्मन के इबरतनाक शिकस्त डी। भारत सदाई पाकिस्तान से कूड़ा इल्जाम लगाई रो है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है खिते में अमन तोड़े इस्तेकाम चाहे तो। सदर आसिफ जरदारी शेख बिरेंद्र भुट्टो चीन का मिजाइल टेक्नोलॉजी वरती पाकिस्तान या मिजाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे कुछ ही इलाकन में भारत के शिकस्त डी। भारत के पैंजन ही जहाजन से वो नाज हो पाकिस्तान उ जहाज किराए तबाह कर छा। अज पाकिस्तान खिते जो अहम मुल्क बणज चुको है। अमेरिका हक में कामयाबी की खुशी में गवर्नर हाउस में भी शानदार तकरीब। भारत के वर्तनाक शिकस्त डींदड़ पाक फौज के भेटा पेश कई वही।

अकबर जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते सिंध जे मुख्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं, कराची डॉक्टर्स जे एन सी एच खां जना अस्पताल ते रैली, पाक फौज के भेटा पेश, चंडू मोहम्मद खान में पुलिस जवान पारां जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते रैली कढी पई। पनवाकुल में पाक फौज जी हिमायत में रैली निकती। खैरपुर में मेडिकल कॉलेज खां सिविल अस्पताल ते रैली कढी वई। लड़कणो में तालीम खाते पारां जंग में कामयाबी जी खुशीअ में रैली कढी वई। पीरे जो ॻोठ में मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जे उस्तादनि, शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणियुनि पारां रैलियूं कढी वयूं। भारत खे दर्दनाक शिकस्त ॾियण ते पाक फौज खे भेटा पेश कई वई। अकबारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते सिंध जेलनि में बि तकरीबूं। सेंट्रल जेल सखर में अकबारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते तकरीब, जेल अमले ऐं क़ैदनि जी शिरकत। खैरपुर जो डिस्ट्रिक्ट जेल में भारत खे शिकस्त ॾियण ते पाक फौज खे भेटा पेश करण लाइ तकरीब थी। हैदराबाद सेंट्रल जेल में बि अकबारी जंग में कामयाबी जी तकरीब, इंतिज़ामिया क़ैदनि जी शिरकत। मलीर जेल में बि अकबारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते तकरीब थी। पाक फौज खे भेटा पेश। सेंट्रल जेल लाड़काणे में बि मेयर खां हक़ जी कामयाबी जो जशन मल्हायो वियो। जेल इंतिज़ामिया ऐं क़ैदनि पारां पाक फौज सां ॿधीअ जो इज़हार कयो वियो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक

0: मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरडमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ है अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सबनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई बरोज जुमु मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण वधिक मशोरे रबते जे लाए 0327-99-84-760 है।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hamay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hamay Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती है जो असल राज. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधमथे

0: जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बालन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सबनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे खां शाम 5 वगे ताई बरोज जुमू मोकल आहे एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327 9984763
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ਦੱਸਣ ਜੇ ਰਾਜ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਡੇਰੀ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵਡੇਰੀ ਹੋਇਆ ਦੂਲੇ ਨਮਾ ਮੈਂ।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: साथ
4: लॉयल मोटर फैंस
3: साथ जिंदगी भर का

फील्ड मार्शल सिद्धार्थ सिंह मरीज चवाहे मेयर का हक रुगो बिन मुल्कन की जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसला थी जंग हुई सत मैच विच वारी रात का 10 मई तई दुश्मन असां जे कौमी वकार के आजमाने की नाकाम कोशिश कई मई 2025 जी जंग का ओचितो इंदड़ जंग न हुई माजी में दुश्मन पाकिस्तान ते बेबुनियाद हथ ठोकिया इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कई पर हक की जंग में भारतीय जारा जो मुंह तोड़ जवाब दिनों वो पाकिस्तान दुश्मन के हर भेरे शिकल जो मुंह दिसो पो ऑपरेशन बनाल मरसूस के एक साल मुकम्मल थियण ते जीएचक्यू में मुनक्कद खास तकरीब के खिताब कंदे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर चयो दुश्मन जाने वठे तो पाकिस्तान खिलाफ अगते अगराई जा असर इंतहाई खतरनाक आए तकलीफ डींदड़ हूँ भारत जो ख्वाब है तो पाकिस्तान की अस्करी जारियत ए सफारती अकेलाई जो निशानो बढ़ाए खिते में ताकत जो तवाजन तब्दील करे यो ख्वाब उन कद ए सलाहत का घणो वधीक है जो पाकिस्तान कदें भी कामयाब से न डींदो फैदा मजालन ए पाक फिजाइन निशाइनन दुश्मन के छवी का वधीक फौजी हथकन के कामयाबी से निशानो बढ़ाया आवाम में कौमी क्यादत जो पैगाम है तो मुल्क खुद मुख्तियारी सरहदी सलामत ए कौमी वकार से को भी ठह काबिल कबूल ना है भारत जंग के नतीजे में थियल जानी ए माली नुकसान की कीमत ईंदड़ वक्त तई अदा कंदो रहंदो आखिरी जंग में भारत की प्रतनाक शिकस्त के एक साल मुकम्मल अज समूरे मुल्क में फतह जश्न मल्हाया पे वे जीएचक्यू रावलपिंडी में शानदार तकरीब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड फील्ड मार्शल सिद्धार्थ सिंह मुनीर की तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत फील्ड मार्शल सिद्धार्थ सिंह मुनीर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के शहीदन की यादगार से हाजिरी गुलदस्तो रखियो ए फातह खानी कई एस पी आर पारा जारी कल बयान में चे पो है तो कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी बारह चैलेंजन के मुंह दियण लाइ मुकम्मल तौर तैयार है जंग में फतह हथियारबंद फौज की तैयारी चाह ए पेशेवराना सलाहत जो सबूत है हक जंग में कामयाबी आवाम जो हथियारबंद फौज के तमाद के मजबूत किया है।

भारत खिलाफ ऑपरेशन अमेरिका जी कामयाबी के एक साल मुकम्मल थे सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कौम के वाधायूं सदर आसिफ अली जरदारी चौथ पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जहाजत जो भरपूर जवाब दियण बजाणू था फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की क्यादत में पाक फौज दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दिनों भारत के गैर कानूनी कब्जे हेठ फलरल कश्मीर जो मसलो ठहराने मुताबिक हल घुर्जे पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के इखलाकी सफारती हिमायत जारी रख वजीर आजम शहबाज शरीफ पैं पैगाम में चया है त दुश्मन खिलाफ कामयाबी थे अल्लाह ताला के बेशुमार नियमतन असन ला सजदो करण जो ढी है अज अस उन अजम हिम्मत ए साबित कदमी को याद क्यों पा जो पाकिस्तान आजमाइश के वक्त में दिखारी ए दुश्मन के जबरदस्त शिकस्त दिनी भारत खिलाफ हक की जंग में कामयाबी के एक साल मुकम्मल थे पीपल्स पार्टी कराची अज सीबीओ वट शानदार तकरीब वरे वजीर मतल शाह खिताब करे चो पाकिस्तान हक की जंग में दुश्मन के प्रतनाक शिकस्त डिनी भारत सदा ही पाकिस्तान से कूड़ा इल्जाम लगाई रो है पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है खिते में अमन तुड़े इस्तकाम चाहे तो सदर आसिफ अली जरदारी शहीद बिन नज़ीर भुट्टो चीन का मिज़ाइल टेक्नोलॉजी वरती पाकिस्तान या मिज़ाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर कुछ ही कलाक में भारत के शिकस्त डी भारत के पैन जहाजन से वो नाज हो पाकिस्तान उ जहाज किराए तबाह कर छाया अज पाकिस्तान खिते जो अहम मुल्क बण चुको है अमेरिके हक में कामयाबी की खुशी में गवर्नर हाउस में भी शानदार तकरीब थी भारत के इबरतनाक शिकस्त दींदड़ पाक फौज के भेटा पेश कई वही

ईरानी आयल टैंकर्स के निशानो बनाया वो तो खिते में अमरीकी ठिकाना के निशानो बनाईदी। ईरान के पासदान इनकलाब अमरीका की सख्त वॉर्निंग जारी कर छी। आई आर जिस सी एरो स्पेस फोर्स के कमांडर चो तो ईरान जहाँ मिजाइल और जदीद ड्रोन मुकम्मल तौर से तैयार हैं। कें बजाराने कदम जो फौरी जवाब देने की सलाहत रखन था। अमरीकी पटी वजीर मार्को रोपियो और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की मियामी में कतर के वजीर अजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात। ईरान सा जंगबंदी और तफसील गाल मुख्तसर मफामती यादाइश के गौर जर मूजिब तजवीज़ कल फ्रेमवर्क जो मकसद जारी छिकटाण जो खात्मो सफारती गाल रस्त कर अगड़ाबर से हथियारबंदन की फायरिंग में घरधणी कतल गोट बरकत आराई में हथियारबंद घर अंदर दाखिल थे तो घरधणी सुजाग थी पाया हथियारबंदन फायरिंग कर पीरसन अब्बास अली के कतल कर छो लाश किम्स अस्पताल मुंतकिल किया वो पुलिस मूजिब जांच कई पी वे वाक्य फुरज है या पुरानी दुश्मनी तीरसन कतल थोड़ा जांच करूं पाया।

देंगे। तो आज एक नया सेगमेंट स्टार्ट होने लगा है, तो जैसा कि आप सुन रहे हैं GFM 88 सखर। तो जी आज का नया सवाल मेरे पास आप लोगों के लिए मौजूद है, और सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने मुझे ज्वाइन करना है, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे तो आपने परेशान नहीं होना, मोबाइल को उठाना, मोबाइल को उठाते साथ टाइप करना है GFM 888 पे, आपने SKR लिख के आपने मुझे लाइव SMS कर देना है। 888 पे SKR लिख के अपने प्यारे से सिटी का नाम के साथ, अपने नाम के साथ आप मुझे SMS कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे सवाल को सुनने के बाद उसका जवाब दे सकते हैं, और जवाब देने के साथ साथ अपना एक फरमाइशी सॉन्ग भी लिख सकते हैं अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीकेंड भी बताया था। तो मैं आपका सॉन्ग प्ले करूंगी, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो जवाब था वो राइट है। ओके, सवाल के जवाब के साथ आप लोगों ने गाना पसंद का भेजना है मुझे, और जो मुझे फेसबुक से सुनना चाहते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फेसबुक पे ज्वाइन करने के लिए आपने फेसबुक ऑन करना है, GFM88 का पेज आपने ओपन करना है, मेरे नाम का फ्लायर आपको दिख जाएगा संविता आरजे सना के नाम से, आओ बात करें मैं, तो बिना देर किए आओ बात करें, और आओ बात करें। ओके, तो यहाँ पर सवाल मैं आपको बताती हूँ। सवाल मेरा ये कि आपने मुझे बताना है आज कि वो कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं पर उसे खाते नहीं हैं, वो कौन सी चीज़ है जिसे हम खरीदते हैं खाने के लिए पर हम उसे खाते नहीं हैं, तो आपने पता लगाना है और मुझे बताना है, और अपने बताने के साथ साथ एक सॉन्ग का नाम भी ज़रूर लिख के भेजना है। तो अगर वो जवाब आपका ठीक होगा तो मैं सॉन्ग प्ले कर दूँगी। ओके जी, बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है, हमें किसने ज्वाइन किया है।

लोग फैजल के बाद में सॉन्ग, जैसा कि आपने सुना है, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है उनका, न्यू न्यू सॉन्ग आया था, तो मैंने सोचा कोई भी सॉन्ग मैं सुनती हूँ तो हमेशा आप लोगों के साथ ही कोई भी नया सॉन्ग होता है जो मैं अकेले नहीं सुन रही होती।

थैंक यू सो मच अब्दुल रजाक, आपने मुझे ज्वाइन किया. अच्छा, आपने मेरे सवाल को भी सुना होगा, और अगर नहीं सुना था तो मैं अपना सवाल आपसे रिपीट कर लेती हूँ, जिसका आपने मुझे जवाब भी देना है. और साथ में इन सबके नाम आप अगर आपने लिए, इनको भी मेरा सवाल सुनाना है और बताना है उनसे पूछ के जवाब, और एक कोई भी सॉन्ग का नाम, ताकि अगर आपका जवाब ठीक होगा मैं सॉन्ग प्ले कर दूँ तो आप समझ जाइएगा कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक था, और ना प्ले हो तो समझ जाइएगा कि आपका जवाब गलत था. तो जी, सवाल जो मेरा था, सवाल मेरा ये था कि आपसे, कि आपने बताना था कि वो कौन सी चीज़ें जो हम खाने के लिए खरीदते हैं पर हम उसे खाते नहीं हैं. तो पता लगाना है, बस इतनी सी बात है, दिमाग को चलाना है और कुछ नहीं. तो पता लगाएं और मुझे बताएं.

कम है, आप सॉन्ग प्ले नहीं करती तो आप लोगों की शिकायतें बढ़ जाती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के तरीके से कोई शिकायत बढ़े। तो आपने क्या करना है, मुझे टाइमली ज्वाइन कर लेना है और टाइमली मुझसे बात

रजाक मुझे जवाब देते हुए कहते हैं कि सवाल का जवाब का आंसर है बर्फ। तो और आपने कोई सॉन्ग तो मुझे नहीं बताया, सॉन्ग मुझे बताया ना ताकि अगर मैं प्ले करूंगी तो आप समझ जाएगा कि आपका ठीक है, प्ले नहीं करूं तो समझ जाएगा कि ठीक नहीं है। तो सॉन्ग का नाम मुझे जरूर बताया करें, अभी आपने मुझे जवाब दिया तो उसके सॉन्ग भी भेजें, अगर मैं प्ले कर दूं तो समझ जाइएगा कि ठीक है और ना करूं तो समझ जाइएगा ठीक नहीं है। ओके जी, जवाब के साथ आप मुझे सवाल का जो है कोई भी सॉन्ग जरूर भेजा करें, क्योंकि अगर सवाल का जवाब मुझे देते हैं तो फिर पता लगाने के लिए सॉन्ग भेजना जरूरी है, अगर मैं प्ले कर दूं तो आप लोग समझ जाएगा कि भाई जवाब आपका ठीक है। तो ठीक है जी, आप मुझे कोई भी सॉन्ग का नाम बता दें अब्दुल रजाक। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हफीज, कहते हैं कि ईदगाह जनूबी बकर से मोहम्मद हफीज उल रहमान मुल्तान से गुली यासिन नाज वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप मोहम्मद हफीज, आपने मुझे ज्वाइन किया, अच्छा लगा कि आपने मुझे ज्वाइन किया, ऐसे आपने हमेशा मुझे संडे संडे ज्वाइन करते रहना है। और बात करें मैं होती हूँ आपके साथ पूरे पूरे दो घंटे के लिए, तो अगर आपने मेरा सवाल नहीं सुना तो मैं अपना सवाल अभी आपको रिपीट करते जाते हैं, फिर हम उसके बाद जाएंगे छोटे से शॉर्ट कमर्शल ब्रेक की तरफ। तो जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसे खाते नहीं हैं। हम उसे खाने के लिए तो ज़रूर खरीदते हैं पर हम उसे खाते नहीं हैं, तो पता लगाना है और मुझे बताना है कि वैसी कौन सी चीज़ है। तो पता

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।

कर देते तो क्या ही बात थी, और पता चल जाता कि आपका जवाब ठीक है या नहीं। खैर आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए हैं और ऐसे कैसे हम आपको जाने दें। तो आपने मुझे ज्वाइन किया बहुत अच्छा लगा, ऐसी आओ बात करें। मैं आपने हर संडे मुझे ज्वाइन करते रहना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ। आओ बात करें मैं तो जी जरूर सुनाएंगे आपके पसंद का सॉन्ग भी। और उसके अलावा देख लेते हैं कि हमारे साथ मशहूर अहमद हमें सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि आरजे सना जी सवाल का जवाब है चम्मच। और ओके जी, और जी जी जरूर आपने मुझे सॉन्ग पहले ही बताया था, हमने आपका सॉन्ग प्ले कर दिया था। अभी भी अगर आपकी कोई फरमाइश है जो कि फायज़ अली की आवाज़ के अलावा कोई सॉन्ग है तो वो भी आप मुझे टाइप करते हैं, जवाब ठीक होगा तो हम जरूर आपका सॉन्ग प्ले कर देंगे। और ताकि आप समझ जाइएगा कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, अगर प्ले ना करें तो समझ जाएगा जवाब ठीक नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है वही दुन्नड़। वही दुन्नड़ कहते हैं जवाब बर्तन सांग, जवाब बर्तन सांग, मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी। अच्छा जी, ज़रूर आपने जो सॉन्ग बताया है और अगर आपका जवाब ठीक होगा तो ये सॉन्ग प्ले हो जाएगा। आपने करना है लास्ट तक, एंड तक, मतलब वेट, और देख लेते हैं कि आपका सॉन्ग प्ले

अच्छा जी, और उसके अलावा देख लेते हैं कि अभी हमारे साथ SMS पे हमें कौन ज्वाइन करते हैं, और SMS पे हमें जो ज्वाइन करते हैं वो हैं, देखते हैं अभी।

0: सुना उसको मैं सवाल जैसे मेरा सवाल नहीं सुना उसको मैं सवाल अपना बताती जाती हूँ। तो सवाल मेरा यही है कि आपने मुझे बताना है कि भाई वो क्या चीज़ें जो हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसे खा नहीं पाते। ओके जी, तो जब तक आप लोग जवाब दें जब तक हम लोग ब्रेक से वापस आते हैं। वापस आके करेंगे दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, ये सॉन्ग प्ले करेंगे। तो जी सुनने के लिए इंतजार करिए और रहिए मेरे साथ। हम चलते हैं छोटे से शॉक कमर्शियल ब्रेक की तरफ।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
1: जीए FM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग को हिस्ट्री में सब, और यकीनन आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा मैं सब। तो जी और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि जैसा कि आपको पता है कि अगर आप लोग उठ जाते हैं मुझे ज्वाइन करने की कोशिश करें परेशानी हो रही होगी, तो परेशानी क्यों होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना, फेसबुक सिंपल ऑन करनी है, GFM88 का पेज आपने ओपन कर लेना है, मेरे नाम का फ्लायर आपको दिख जाता है, मेरा नाम प्यारा सा आपको दिख जाता है, और उसके साथ मेरी प्यार से आवाज़ सुनने के साथ आपको देर किए बगैर ही आपने मुझे कॉमेंट करना होता है कि भाई आप मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे सवाल को आपने सुन लिया है। अगर नहीं सुना है और जिसे मुझे अभी ज्वाइन किया है, तो उसके लिए मैं अपना सवाल आपको रिपीट कर लेती हूँ। तो जी मेरा सवाल ये था आप लोगों को, सिर्फ जस्ट ये बताना था कि यार वो कौन सी चीज़ें जो हम खाने के लिए खरीदते तो हैं पर हम उसे खाते नहीं हैं, तो ये लगाना था पता, और अभी तक आपने मुझे नहीं पता लगाया। और जिसने भी अभी तक जवाब दिया है, जिसके पसंद के अभी तक सॉन्ग प्ले नहीं हुए हैं, तो उसका मतलब है उसका जवाब बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसा ही है ना, बिल्कुल अगर सवाल बिल्कुल ठीक होगा तो आपका यकीनन सॉन्ग भी हम ज़रूर प्ले कर देंगे। अच्छा जी यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें SMS पे किसने ज्वाइन किया है और कौन हमें SMS करता है। हमें ज्वाइन करते हैं सकर से याली मदद, आपका शो सुन रहे हैं, सदाकत हुसैन मीरानी साहब, टेलर मास्टर अली अकबर शेख एंड शौकत शेख बच्चल शाह मियानी सखर सही क्या नाम बताया था आपने, सदाकत हुसैन। कैसे हैं आप सदाकत हुसैन, और अच्छा लगा कि आपने मुझे ज्वाइन किया है लास्ट संडे की तरह आज भी, तो ऐसे ही आपने हर संडे मुझे ज्वाइन करते रहना है। आओ बात करें, मैं रहती हूँ मैं आपके साथ और आपका मेरा साथ 1 बजे से सुबह 11 बजे तक, 1 बजे तक। 2 घंटे बहुत होते हैं बात करने में, लेकिन आप लोग तो बात ही नहीं कर रहे होते, आप लोग सब छुपा रहे होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ चुरा लूँगी, छुपा लूँगी, आपसे छीन लूँगी, तो ऐसा नहीं है जी, आप अपने घर में हैं, मैं अपने, तो ऐसा ही होता है कि बस आप लोग बता देंगे तो थोड़ी खुशी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर से जुटे हुए लोग आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी कि मैं इतना तो अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, इतना तो समझदार आप खुद भी हैं, तो जी इतना तो नहीं करें ना। और हमारे साथ मौजूद हैं सक्कर से कहते हैं अजीम चन्ना फ्रॉम साले पर जवाब खाने वाला चम्मच प्ले किसी दर्द, कहते हैं कि जवाब खाने वाला चम्मच प्ले किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को डाल दे, सलाम सब सुनने वालों को। ओके जी, वालेकुम सलाम, और यहाँ पर हम लोग सॉन्ग ज़रूर प्ले करेंगे आपका जो आपने मुझे बताया है, अगर आपका जवाब ठीक होगा तो रहेगा मेरे साथ, आपको वेट करना पड़ेगा ना पूरा, ताकि सुनने को पता चल जाएगा आपके पसंद का सॉन्ग चला है कि नहीं है। तो उसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं विलेज गोड नबीदाद बमड़ो नारो से इमाम डिनो बमड़ो, सवाल जो जवाब चम्मच यान प्लेट प्लीज प्ले शमन शमन अली का करो वादा कब आलो, अच्छा कब आओगी, करो वादा कब आओगी। ओके जी, ओके ज़रूर ज़रूर, इतने सारे सॉन्ग्स हो गए हैं भाई राइट आंसर के साथ साथ, तो प्ले करना तो बनते हैं, तो ज़रूर ज़रूर हम ज़रूर

लेकिन सॉन्ग सुनने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे पास वैसे ही एक टाइम बहुत कम हो गया, 2-3 मिनट रह गए हैं न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाने के लिए, क्योंकि अभी हम जाएंगे न्यूज़ ब्रेक की तरफ और न्यूज़ ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो वापस आके मैं कर दूंगी आप लोगों के पसंद पसंदीदा सॉन्ग। तो सुनने के लिए रहना पड़ेगा मेरे साथ और कहीं जाइएगा नहीं तो आपके सॉन्ग चल जाएंगे, आपकी जगह कोई और सुन लेगा, फिर आप बोलेंगे आपने हमारे सॉन्ग प्ले नहीं किया। तो रहना पड़ेगा मेरे साथ और मजे मजे के सॉन्ग सुनने के लिए, क्योंकि देखिए ना सॉन्ग के अलावा अगर हम लोग सिर्फ सॉन्ग सुने तो भाई न्यूज़ का भी तो पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप लोग कौन सा मेरे साथ रहते हैं तो ये चीज़ें तो मुझे पता लगानी पड़ेंगी ना भाई। तो दी एक और देख लेते हैं हमारे साथ कौन हमें ज्वाइन करता है। हमें ज्वाइन करते हैं SMS करते हुए, कहते हैं स्वीट सन्ना हम बर्तन खरीदते हैं और खाते नहीं हैं, आई वसीम। ओके, आपने कोई सॉन्ग का नाम है तो वो भी शेयर कर दें, अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो हम आपका सॉन्ग भी साथ में प्ले कर सकते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो है ये सॉन्ग मतलब आपका जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक था। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, कहती है मुस्कान बाजी प्लीज प्ले तावीज करे तुके मुखा वॉइस बाय फैजा अली की। ओके जी, लेकिन फैजा अली की आवाज में हम लोग एक सॉन्ग वैसे ही प्ले कर चुके हैं सिस्टर, आप अगर कोई और सिंगर का नाम है तो वो जरूर बता दें और साथ में मेरे सवाल का जवाब भी बता दें, क्योंकि अगर जवाब बताएंगी और मैं अगर वो प्ले करूंगी तो ये अंदाजा हो जाएगा आपको के और सुनने वालों को भी कि भाई आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। तो जवाब भी जरूर दीजिए और अगर कोई और सॉन्ग है तो वो भी बता दें, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हम लोग जरूर प्ले करेंगे फैजा अली की आवाज में ये सॉन्ग है, तो जरूर हम लोग नेक्स्ट शो पे ये सॉन्ग प्ले करेंगे जो आपने मुझे बताया है। ओके, कोई और सॉन्ग है तो मुझे जरूर बता दें और मोस्ट वेलकम है, हम लोग वो जरूर प्ले करेंगे। तो ऐसा ही है।

0: अच्छा जब हम लोग न्यूज से वापस आएंगे, न्यूज से वापस आने के बाद यार मैं एक और अपना सवाल आप लोगों से पूछूंगी, इसका जवाब आपने मुझे देना है कि इसका हल मैं कैसे निकालूं। तो जी यहाँ पर टाइम हो गया है हमारे न्यूज ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे, वापस आके करते हैं बाकी की बातें, तो रहिएगा मेरे साथ।
1: Express PM. This time check is brought to you by
2: Michael Habib. Rishta Bharose Ka.
3: Moro.
2: No Shehro.
3: Mirpur Khas.
2: Larkana.
3: Sakhar.
2: Goonj Rahi Hai Har Jagah Par.
3: Sindh Ki Awaaz.
2: GA FM 88 Network.
4: Ab aap sunenge GA FM Network Par. KTN News.
5: सूफी का एतमाद लिए
6: आइस बॉक्स ठंडक कम चेरी एयर को
7: गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डाले अपने खानों में जान।
8: गिब्स पास्ता
9: इतना एसी चल रहा है, आपको बिल की टेंशन नहीं है, आपको बिल की टेंशन नहीं है।
10: एआई वाला स्मार्ट एसी, लो बिल मुझल माय डियर।
11: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
12: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

पाकवारी जंग रुगो बिन मुल्कन की जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो ऑपरेशन बिनानल मुड़स की कामयाबी के साल पूरा थे थे जीएचक्यू में कोठे हल तकरीब के खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चो तो हकवर जंग 7 मई की विच वही रात का 10 मई ते दुश्मन असाजे कौमी वकार के आजमाने की नाकाम कोशिश कई। मई 2025 की जंग का ओचतो इंदर जंग न हुई। माजी में भी दुश्मन पाकिस्तान से बेबुनियाद हथ तो क्या इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कई पर हक की जंग में भारतीय जारियत की मुंह तोड़ जवाब दिनों पो। पाकिस्तान दुश्मन के हर भेरे शिकस्त जो मुंह दिसो पो। ऑपरेशन बिनानल मुड़स के एक साल मुकम्मल थे ते जीएचक्यू में मुनद खास तकरीब के खिताब कदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चो दुश्मन जानी वे त पाकिस्तान खिलाफ अगत अगराई का असर इनता ही खतरनाक ए तकलीफ दींद हूँ। भारत जो ख्वाब है तो पाकिस्तान की अस्करी जारियत सफारती अखिलाई जो निशानो बढ़ाए खिते में ताकत जो तवाजुन तब्दील करे। यो ख्वाब उन कद ए सलाहत का घणो वधीक है जो पाकिस्तान कदें भी कामयाब थे नींद। फतेह मिसाइल ए पाक फिजाया के शाहिन दुश्मन के 26 का वधीक फौजी हथकन के कामयाबी से निशानो पढ़ाया। आवाम ए कौमी क़यादत जो पैगाम है तो मुल्की खुदमुख्तियारी सरहदी सलामती ए कौमी वकार से को भी ठाह काबिले कबूल ना है। भारत जंग नतीजे में थियल जानी ए माली नुकसान की कीमत ईंदड़ वक्त तई अदा कह रो।

आखिरी जंग में भारत जी प्रतनाक शिकस्त के एक साल मुकम्मल। आज समूरे मुल्क में फतेह जश्न मल्हाए पे वे। जीएचक्यू रावलपिंडी में शानदार तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल कासिम मुनीर तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत। फील्ड मार्शल कासिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु ए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के शहीदन की यादगार से हाजिरी। गुलदस्तो रखियो ए फातिह खानी कई। ISPR पारा जारी कल बयान में कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी ए बाहर चैलेंजन के मुंह डेण लाय मुकम्मल तौर से तैयार है। जंग में फतह हथियारबंद फौज की तैयारी चाह ए पेशावरानी सलाहत जो सबूत है। अगली जंग में कामयाबी अवाम जो हथियारबंद फौज के एतमाद के मजबूत किया है। भारत खिलाफ ऑपरेशन मरक हयात की कामयाबी के एक साल मुकम्मल थे ते सदर आसिफ अली जरदारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कौम ए पाक फौज के वाधायू डी पन। सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जारियत जो भरपूर जवाब दियण बजाणो था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क्यादत में पाक फौज दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दिनों। भारत के गैर कानूनी कब्जे हेठ वाल कश्मीर जो मसलो ठहराने मुताबिक हल थन घुर्जे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी ए सफारती हिमायत जारी रख। वजीर आजम शहबाज शरीफ पैं पैगाम में चाहिए दुश्मन खिलाफ कामयाबी अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतन ए एहसासन ला सजदो करण जो ठीक है। अज असा उन आजम हिम्मत ए साबित कदमी के याद कर रहा हूं जहां पाकिस्तान आजमाइश के वक्त में दिखारी और दुश्मन के जबरदस्त शिकस्त दिनी। भारत खिलाफ हक की जंग में कामयाबी के एक साल मुकम्मल थे पीपल्स पार्टी की कराची की सीवीयू शानदार तकरीब पर वजीर मुराद अली शाह खिताब कर तो पाकिस्तान हक की जंग में दुश्मन के प्रतनाक शिकस्त दिनी। भारत सदाई पाकिस्तान से कूड़ा इल्ज़ाम लगाई रो है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है ए खिते में अमन तोड़े इस्तकाम चाहे तो। सदर आसिफ जरदारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो चीन का मिज़ाइल टेक्नोलॉजी वरती। पाकिस्तान यह मिज़ाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर कुछ ही कलाकन में भारत के शिकस्त दिनी। भारत के पैन जहाजन से बड़ो नाज हो। पाकिस्तान वे जहाज किराए तबाह कर छे। आज पाकिस्तान खिते जो अहम मुल्क बणजी चुको है। अमेरिका हक में कामयाबी की खुशी में गवर्नर हाउस में भी शानदार तकरीब। भारत के भरतनाक शिकस्त दिन पाक फौज के भेटा पेश। ईरानी आयल टैंकर्स के निशानों बनाया वो तो खिते में अमरीकी ठिकाणों के निशानों बढ़ाई। ईरान के पासदान इनकलाब अमरीका के सख्त वार्निंग। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर चो तो ईरान जहा मिज़ाइल ए जदीद ड्रोन मुकम्मल तैयार हैं। कें भी जाराने कदम जो फौरी जवाब दियण की सलाहत रखन था। अमरीकी परदेही वजीर मार्को रूबियो ए अमरीकी नुमाइंदे एसटी विटकोप की मियामी में कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी से अहम मुलाकात। ईरान से जंगबंदी तफसीली गाल मुख्तसर मफामती यादश से गौर किया वो। जरिय मूजिब तजवीज़ कल फ्रेमवर्क जो मकसद जारी चिकटाण जो खात्मो ए सफारती गाल रस्त कढ़ण है। मियाँ साहब से बात बुरलो वेंदड़ जाने की बस से हादसों बारों समेत चीफवी हादसों हुमाय रोड से पेश आओ। केतरे मानू बस हटा फाथल जख्मी अस्पताल मुंतकिल।

अग्रवर्ष हथियारबंद की फायरिंग में घर धनी कतल गोट बरकत आराई में हथियारबंद घर नर दाखिल थे घर धनी सजाग थी पाया हथियारबंद फायरिंग करे पीरसन अब्बास अली के कतल कर छो लाश गिम्स अस्पताल मुंतकल पुलिस मूजिब जांच कई पे वे वाक्य फुरज है या पुरानी दुश्मनी पीरसन कतल थोड़ा है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
2: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखिन जी खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 5 AM ताई, बरोज जुम्मू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

Thank you.

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तो जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक सॉन्ग जो नुसरत फतेह अली का आवाज में था, तो जी बहुत अच्छा सॉन्ग था। और उसके अलावा देख लेते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है, हमें कौन ज्वाइन करते हैं। इसके बाद तो हमारे पास बहुत सारे सॉन्ग मौजूद हैं सुनने के लिए। तो यहाँ पर एक और हम सॉन्ग लगाने लगे हैं और इस सॉन्ग को हम प्ले करने लगे हैं और प्ले करते हैं, और ये है कि भाई शमन अली मिराली की आवाज में सॉन्ग, जो कि जिसकी भी आवाज में जिसकी भी पसंदीदा सॉन्ग चलते जा रहे हैं वो समझते जाएं कि भाई इनके जवाब जो बिल्कुल ठीक हैं, जो जो आपने मुझे जवाब दिए हैं वो उसके आंसर बिल्कुल ठीक हैं। तो उनकी ये सॉन्ग प्ले करने लगती हूँ मैं सारे। तो एक और सॉन्ग मैंने कर दिया है।

0: सुन रहे थे जैसा कि हम लोग एक और सॉन्ग के आने का करो वादा खपाओगे गाँव में, तो जी जिसका ये फरमाइशी सॉन्ग था और जिसने ये जवाब दिया था तो एक ने उनको पता चला गया कि उन्होंने मेरा जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मुझे जवाब ठीक दिया है तो सॉन्ग मैंने प्ले किया है तो वो समझ गए होंगे वैसे ही। तो जी यहाँ पर टाइम होता है हमारे पास एक और छोटे छोटे कमर्शियल ब्रेक जब जाने करके, जैसे ही वापस आएंगे वापस आके करेंगे एक और सॉन्ग प्ले किसी और के राइट आंसर पर। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जवाब दें मेरे सवाल का, फिर मैं इस सॉन्ग के बाद ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि राइट आंसर कौन सा था। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको रिपीट कर दूंगी क्योंकि सॉन्ग तो मैं प्ले करती जा रही हूँ, तो यकीनन आप लोग समझ गए होंगे। और मैं फिर भी ब्रेक से वापस आने के बाद मैं अपना राइट आंसर आपको बता दूंगी कि राइट आंसर क्या था जब भी मैंने ये सॉन्ग्स प्ले किए हैं। तो टाइम होता है यहाँ पर हमारे पास ब्रेक की तरफ जाने का, चलें चलते हैं ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे तो वापस आके मैं बताऊंगी। और जाते जाते मैं एक और देख लेते हैं कि हमारे साथ अभी कौन से लिसनर मौजूद हैं जो न्यू हमें ज्वाइन किया, जिसने देख लेते हैं फिर उसके बाद जाएंगे यार हम ब्रेक पर। अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार, कहते हैं गोट बाबू वेरो थरपारकर से दिलीप कुमार मेघवार नोल रॉय और दानिश कुमार और सूरज गुल शंकर लाल और शो लाजवाब है। थैंक यू सो मच दिलीप कुमार, आपने मुझे ज्वाइन किया, ऐसे ही हर संडे आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है और जैसा कि आपका और मेरा साथ हमेशा रहता है संडे संडे ओनली सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक, तो ऐसे ही आपने आज भी मेरे साथ रहना है पूरे पूरे 1 बजे तक। तो अभी यहाँ पर टाइम हो गया बस छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जाने का, वापस आएंगे वापस आके करेंगे बाकी की बातें, तो रहिएगा मेरे साथ।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
3: This program is brought to you by
4: Bank Al Habib, rishta bharose ka.
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
6: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम आम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़न जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण शुगर दिमागी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
7: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
8: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
7: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तो जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक और फरमाइशी सॉन्ग, क्योंकि जिसने जवाब राइट दिया था तो उसका ये सॉन्ग भी प्ले करना जरूरी था, तो सुन चुके हैं हम लोग ये सॉन्ग। और उसके बाद एक और सॉन्ग हमारे पास है वो जो मैं लास्ट में प्ले करती जाऊंगी आप सबके लिए। तो देख लेते हैं एक नज़र फेसबुक पर भी कि फेसबुक पर हमारे साथ कौन मौजूद हैं।

हमारे साथ रमेश कुमार कोहली मौजूद हैं, गॉट जगी जो धड़कान, रमेश कुमार और केवल कुमार और हरेश कुमार, मुकेश कुमार। ओके जी, ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सारे मेरे साथ मौजूद होते हैं और आपकी फैमिली वाले भी, और आप जो नाम बता रहे होते हैं हमें ज्वाइन कर चुके होते हैं या वो भी मुझे सुन रहे होते हैं, तो ऐसे ही अच्छा लग रहा होता है। तो ऐसे ही आपने हमेशा संडे संडे मेरे साथ रहना है, बात करनी है, जमा कर लेनी है पूरे हफ्ते की बातें और मेरे साथ करनी है। जब मैं आपके साथ आती हूँ सुबह 11 से 1 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और मुझे ज्वाइन करने के लिए 888 पे इसके लिए आप मुझे SMS कर सकते हैं, और लाइव फेसबुक पे कमेंट करने के लिए आप फेसबुक ऑन करके GFM88 का पेज आपने ओपन कर लेना, मेरे नाम का फ्लैट आपको दिख जाता है। आओ बात करें विताजे सना के साथ, दिल की बात, खुशी की बात, हर बात यहाँ होती है। तो आपने करनी होती है मुझसे बहुत सारी बातें, लेकिन आप लोग तो नींद से ही इतनी देर से उठ रहे होते हैं जिसकी वजह से आप लोग मुझसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक का मैसेज अभी रिसीव होता है, कहते हैं फजर सुन रखी ये सॉन्ग सुना दें।

0: अच्छा जी, मसरूर अहमद ने एक पोएट्री भेजी है और वो पोएट्री बहुत अच्छी है, जो मुझे लग रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको रीड आउट करूँ। तो जी कर लेते हैं रीड आउट। और कहते हैं कि जो बदल जाए वो यार कैसा, जो बदल जाए वो यार कैसा, जो छोड़ जाए वो साथ कैसा। लोग कहते हैं तुझे फिर से प्यार हो, लोग कहते हैं तुझे फिर से प्यार हो जाए, लेकिन जब फिर से हो जाए वो प्यार कैसा। बिल्कुल ऐसा ही है ना, दोबारा से वो प्यार कैसे हो सकता है जो एक दफ़ा हो जाए। बहुत अच्छी मसरूर अहमद आपने पोएट्री भेजी है। लेकिन अभी जो मेरा सवाल था, मेरा सवाल ये था कि आप लोग मुझे बताएं कि मेरा दिल बहुत उदास है और बहुत ज़्यादा ना, आज बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है मेरा दिल। फिर भी मैं आप लोगों को देखें हंसा रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ और आप लोग मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे, ना मुझे कुछ बता रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ अभी, मुझे बस दुख हो रहा है बहुत कि आप लोग तो मुझसे किसी से बात भी नहीं कर रहे होते और मेरा दिल बहुत ज़्यादा। इसके लिए क्या हाल है, मैं क्या करूँ, मुझे आप लोग ज़रा मैसेज करके ये तो बताएं कि मैं आज क्या करूँ ऐसा कि जो है मुझे मतलब फीलिंग कुछ तो बेहतर होना। तो अभी तो मज़ा ही नहीं आ रहा बिल्कुल। और अभी देख लेते हैं SMS हमें कौन ज्वाइन करता है। हमें SMS से ज्वाइन करते हैं कि सटर से बाजी, ओ बाजी हमारी फैमिली आपके लिए खुदा से सेहत की दुआ मांग रहे हैं। सदाकत हुसैन मीरानी साहब बजल शाह मियानी सखर, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए दुआ मांग रहे हैं। सदाकत हुसैन बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, रियली दिल से कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। और इसी दुआ की वजह से शायद कि आज मतलब इतने दुख और दर्द के बाद और इतने दिल उदास के बाद भी मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। आप लोगों की दुआ की वजह से ही दुआ इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। तो अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की है। प्लीज़ मेरे लिए ऐसे ही दुआ किया करें, क्योंकि मैं खुद तो अपने लिए दुआ नहीं करती और बाकी सबके लिए मैं करती हूँ। तो मेरे लिए दिल से हमेशा आप लोगों के लिए दुआ है और ऐसे ही आप लोग हमेशा मुझे भी दुआ में याद रखा करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे दुआ में याद रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, रियली रियली। और अभी बहुत अच्छा लगा कि आपकी फैमिली मेरे लिए दुआ कर रही है। थैंक यू सो मच सदाकत हुसैन, और जहाँ से आप मुझे सुन रहे हैं तो ऐसे ही आपने हर संडे मुझे ज्वाइन करते रहना है और मुझे बताना है कि आज मेरा दिल जो है, सबने बताना है कि आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा, इसके लिए मैं क्या करूँ, उदास दिल के लिए मैं क्या करूँ, मुझे ये ज़रूर बताना है। तो क्योंकि यहाँ पर टाइम हो गया वापस एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे, वापस आके करते हैं बाकी के सॉन्ग को एंजॉय, जो कि एक लास्ट में सॉन्ग है दीवान की, जो मैं लास्ट में ही प्ले करूँगी। तो अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, वापस आके करते हैं बाकी की बातें। तो रहिएगा मेरे साथ क्योंकि मज़े का सॉन्ग है, जो लास्ट में मैं प्ले करूँगी, तो कहीं जाना नहीं है आप लोगों ने। ओके जी,
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: जडे माँ पांजो ख्याल रखन दिया है तो सेहत नस्लन ताई हलन दिया है। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
4: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो, पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीए हुजे हीरो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
5: आप सुन रहे हैं,
6: आप सुन रहे हैं
5: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: दीवानगी।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: इट्स 1 PM, दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
4: माइकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: 2016
1: अख़बारी जंग रुगो बिन मुल्कन जी जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर जो ऑपरेशन बनियाद मरसूस की कामयाबी के एक साल पूरा थियण से जीएचक्यू में कोठायल तकरीब खिताब। फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर अख़बारी जंग 7 मई के विच वाली रात का 10 मई तीन दुश्मन असि कौमी बकार के आजमायण की नाकाम कोशिश कई। मई 2025 जंग का ओचतो इंदर जंग न हुई। माजी में दुश्मन पाकिस्तान से बेबुनियाद हथ ठोकिया इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कई पर हकी जंग में भारतीय जारत जो मुंह तोड़ जवाब दिनों वो। पाकिस्तान के दुश्मन के हर भेरे शिकस्त जो मुंह ढो पो। ऑपरेशन बनियान मरसूस के एक साल मुकम्मल थे जीएचक्यू में मुनद खास तकरीब के खिताब कदे फील्ड मार्शल आसम मुनीर चो दुश्मन जाने वे तो पाकिस्तान खिलाफ अगत अगराई जहा असर इंतई खतरनाक ए तकलीफ दींद हों। भारत जो खराब ख्वाब है तो पाकिस्तान की अस्करी जारियत ए सफारती अखलाई जो निशानों बनाए खिते में ताकत जो तबादन तब्दील करे। यो ख्वाब उन कद ए सलाहत का घणो वधीक है जो वो पाकिस्तान करें भी कामयाब थे न दी फतेह मिजाल ने पाक फिजाए के शायनन दुश्मन की छवी का वधीक फौजी हदफन की कामयाबी से निशानों बनाया। आवाम ए कौमी क्यादत जो पैगाम है तो मुल्की खुदमुख्तियारी सरहदी सलामती ए कौमी वकार से को भी ठाव कबूल ना है। भारत जंग के नतीजे में थल जानी माली नुकसान की कीमत इंदड़ वक्त तीन अदा कह रहा।

कराची के मंगूपीरवार इलाके में पुलिस चढ़ाई दौरान दिन के दौरो पाण सौ पीसन फौत लाश मेन रोड से रखी धरणो गाड़ियों जो कतारू लगी पयू वारसन जो चवण है पुलिस घर से चढ़ाई कर औरतन बार तशद किया समेत पंजाठ साल रमजान सरमस्तानी दिल जो दौरो पाण सौ फौत पो एहलकार खिलाफ कतल केस दाखिल कर इंसाफ किया वे बिया साहब बसा के कंबाद का मीरपुर बुरड़ो वाजन की बस से हादसों बारह समेत टी का जख्मी हादसों माए रोड से पेश आयो केतरे मू बस हेटा फातल जख्मी अस्पताल मुंतकिल

अगड़ाबर से हथियारबंदन की फायरिंग में घरधनी कतल गोट बरकत आराई में हथियारबंदन घर अंदर दाखिल थे तो घरधनी सुजाग थी पाया हथियारबंदन फायरिंग कर पीरसन अब्बास अली के कतल कर छो लाश किम्स अस्पताल मुंतकिल पुलिस मूजिब जांच कई पे वे वाक्य फुरजो है या पुरानी दुश्मनी तक पीरसन कतल थो है। बेहड़ में 27 ॾींहं अगवा थी पियल 6 साला बाड़ी उजाला परवीन सोलंकी जी बाज़ियाबी लाइ बासन पेटेलिफ ऐं सिविल सोसाइटी जी एहतियाजी रैली घंटाघर चौक वटि धरणो अॻवाणनि जो चवणु हो त बाड़ी उजाला परवीन जी बाज़ियाबी सवालिया निशान बणिजी चुकी आहे। वार सख़्तु परेशान आहिनि पर पुलिस खे बासाइता क़दम न आहिनि खयां।

0: तां घुर वेंदड़ दुनिया जी अजीम हस्ती अमर जिजल के सलाम रातन जा उजागा करे बचन के हंज में सकून जी निंड सुमाईंदड़ अमर वो रिश्तो आहे जंहिंजे पेरन में अल्लाह साईं औलाद लाइ जन्नत रखी आहे दाती हुजे या आंधी अमर इन हर हाल में बचन तां घुर वञे थी सॼी दुनिया में अॼु माइरनि जो आलमी ॾियारो मल्हायो पियो वञे माइरनि जी मोहबत क़ुर्बानी ऐं ख़िदमतनि खे भेटा पेश कई वेंदी
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वियो
6: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देरि सां हलणु शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763
7: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: 3566286।
1: तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। जब दंदड़ा सभी समातन के मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दो के समंदर है चाहे तो भी बारिश उलाजवल खजानों के साथ हुआ है, पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नींद से जाकर समी से आसमान तक, जिंदगी से मौत तक, चाहते दाते गम से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमारे साथ मौजूद है। जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखर मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। बिल्कुल सुना व्हाइट एश इंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, इंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ये प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए, आप लोगों के ऐसी सी चेहरे के लिए और आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को और ज्यादा ब्यूटिफुल, खूबसूरत और प्रेटी बनाते हैं। तो बिल्कुल सी खूबसूरतियाँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ लड़कियों के लिए खूबसूरतियाँ, बस इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके कार को फॉलो करके आप लड़के हो या फिर लड़कियां हो, सारे लोग हसीन और खूबसूरत बन सकते हैं। तो बिल्कुल सी प्रोग्राम व्हाइट एश इन डी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। हाँ जी भाई, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर रीजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा, उसका नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद, जितनी भी समाते हमारे साथ मौजूद है, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज आ रही है तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और इसी के साथ साथ जरा अपने हाल चाल भी बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, हालत कैसे है आपकी हालत है? उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता है ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी तीन बजे तक मैं आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगी और यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके क्या ऐसे फायदे हैं और क्या ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जानें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर आप खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को नॉलेज नहीं होती है, तो कहते हैं ना हाफ नॉलेज होती है वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। तो आप लोगों को भरपूर तरीके से नॉलेज दी जाएगी कि जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका इस्तेमाल किस तरीके कार से करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं। ओके जी, तो रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए हमारे साथ मजे करने के लिए और प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट के साथ साथ खूबसूरत होने के लिए भी। ओके जी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां जो कि भाई अपने काम के दौरान हमें सुन रही होंगी, बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि हमें किचन में सुन रही होंगी लंच बनाने के दौरान। तो बिल्कुल जी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्रा अली बॉस। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं, प्रोग्राम में आगा से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत ही प्यारे से जो ना कलाम के साथ। तो बहुत ही प्यारा सा कलाम हम प्रोग्राम के स्टारिंग में सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कलाम यहाँ पर आप इंजॉय करिए। इजाजत प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आपके सिद्धरा आप लोगों के साथ साथ मौजूद है और मेरे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों से आज के प्रोग्राम का जो सवाल पूछा जा रहा है तो उसकी जानिब आते हैं। आज के प्रोग्राम का जो सवाल होने वाला है वो जरा गौर से सुनिएगा, जिसका आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। तो सवाल गौर से सुनिए ताकि आप लोग इसका जवाब सही तरीके से दे पाए। तो आज जो मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है वो बिल्कुल ये होने वाला है कि आप मुझे बताएं सबसे इम्पोर्टेंट स्किन केयर स्टेप क्या है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि सबसे ज्यादा स्किन केयर में इम्पोर्टेंट माना जाता है। आजकल के दौर में जो है ना वो हर किसी की स्किन केयर जो है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए, या फिर देखा जाए तो हर किसी को ये एक चीज होती है कि भाई हमें ना स्किन केयर करनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किन केयर स्टेप क्या है, ये आज आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे कॉल्स भी करेंगे। और कॉलिंग का जो सेगमेंट होगा वो 2 बजे के बाद स्टार्ट होगा। फिलहाल जो है ना हम आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों के कॉमेंट्स पे जो है ना आप लोगों के जवाब को देखेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं प्रोग्राम में, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तरीके का नहीं जानते, तो आप अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। इसी के साथ साथ अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जनाब GLRKANA FM 88.8 हमारा पेज है। ओके जी, GLRKANA FM 88.8 आप सर्च करें तो करेंगे ना तो आपको हमारा पेज बस आने मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और जल्दी जल्दी से दोस्तों के साथ जो है ना पोस्ट को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। और मुझे बताइए सबसे इम्पोर्टेंट स्किन केयर स्टेप आपको क्या लगता है कि क्या है, कौन सा है। ओके जी, ओके जी, सो स्किन केयर जो है ना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी एक चीज होती है, क्योंकि आजकल के दौर में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये चीज इग्नोर करनी चाहिए। स्किन केयर किया करें बहुत ही अच्छी बात होती है। और इसी के साथ साथ अगर आप स्किन केयर नहीं करते तो आज से ही आपने ना स्किन केयर स्टार्ट कर लेनी है, क्योंकि जब आप अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये जो आपकी चेहरे की स्किन खराब हो जाएगी ये ठीक कैसे होगी। तो बिल्कुल जी अपने चेहरे का ख्याल रखिए। और साथ साथ आज जो है प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये जो पहला घंटा होने वाला है प्रोग्राम का, इसमें आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। और जो दूसरा घंटा हम आप लोगों के साथ मुखातिब होंगे तो उसमें आप लोगों को डी स्किन के बारे में बताया जाएगा। तो जितने भी लोग हैं, अगर आप व्हाइट एश के प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं, तो भाई फायदा तो दोनों सूरत हाल में आप ही लोगों का है। तो बस आप ऐसा करेंगे जो प्रोडक्ट आपको जो ना अट्रैक्ट करे, जिस प्रोडक्ट में आपको लगे कि ये मुझे लगाना चाहिए, ये मेरी टाइप का है, तो बिल्कुल वही प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे। और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत ज्यादा ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों से सुननी है, क्योंकि ये बातों का और मोहब्बतों का सिलसिला जारी और सारी रखा जाएगा पूरी पूरी 3 बजे तक। सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आऊंगी। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

जनाब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकर मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड ही इज गिविंग ब्यूटी शो. ओके जनाब सो इस प्रोग्राम में आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है. ओके जी तो मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा है. जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आज आप मुझे बता रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्किन केयर स्टेप आपको क्या लगता है कि कौन सा है. यानी कि जब आप स्किन केयर ना स्टार्ट करते हैं स्किन केयर करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है वो आपकी नजर में कौन सा है ये आज आप मुझे बताएंगे. ठीक है जी तो जल्दी जल्दी से प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए. आपके मैसेजेस हैं आप लोगों के कॉमेंट्स हैं जो बिल्कुल मुझे मिल रहे हैं मिलते जा रहे हैं. जल्दी जल्दी से पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों को मेंशन करते जाइए और उसके साथ साथ शेयरिंग जो है ना वो बढ़ाते जाइए. ओके जी यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा लेकिन यहाँ पर जो लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं उनको जरा शामिल प्रोग्राम रख दूँ फिर तसल्ली से आप लोगों को जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं. तो यहाँ पर अनवर भाई हमारे साथ मौजूद है. अनवर भाई आपको वेलकम करते हैं. लिखते हैं जिंदगी ने एक दिन मौत से पूछा कि लोग मुझसे मोहब्बत और तुमसे नफरत क्यों करते हैं. मौत ने मुस्कुराकर जवाब दिया अस्सलाम वालेकुम तो मैं खूबसूरत झूठ हो और मैं एक कड़वा सच हूँ. अच्छा क्या बात है. और अनवर भाई मुझे नहीं मिली जी और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है और व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं क्या बात है जी. हिदायतुल्लाह अहमद आनी हमारे साथ मौजूद है वेलकम. सनाला ब्रोई हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम. आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम. राहत अली बुर्दी हमें सुन रहे हैं वेलकम जी. मोहम्मद जमान हेलो. सिराज अहमद हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम. अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं. ये थे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मीरपुर खास खामठी आयो आया क्रीम जी शाह गाल कजे रमजान कुंभर घर में इस्तेमाल करे पे चलें जी जबरदस्त. अगर आप इस्तेमाल करें तो बिल्कुल ऐसी मुझे बता दिया करें. उसके अलावा तारिक हुसैन लोहर भाई हमारे साथ मौजूद है. तारिक भाई आपको भी वेलकम. पता नहीं क्या आपने कमेंट में लिख दिया है. और उसके अलावा हेंची हमारे साथ सिराज आपने क्या कहा है बहुत दिनों के बाद आप हमारे शो सुन रहे हैं जी बहुत शुक्रिया वेलकम करते हैं आपको. बस रोजाना आप हमारे प्रोग्राम में आ जाया करें. आप लोगों को खूबसूरती की बातें बताती हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ बातें करती हूँ तो खूबसूरती की बातें भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल के दौर में देखा जाए तो कौन आप लोगों को इस तरह की बातें बताता होगा जिसमें आप लोगों की खूबसूरती बढ़ेगी और साथ साथ आपकी खूबसूरती जो है ना वो हमेशा प्रोटेक्ट भी रहेगी. और अगर गर्मी के मौसम में जो है ना कई मर्तबा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है और कौन से प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों का सीजन में खास करके तो गर्मियों का सीजन जब भी आए तो आप लोगों के जहनों में ये बात आए कि व्हाइट एज वालों की लवली क्रीम मौजूद है मार्केट में और व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताते चलूं कि ये व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ये सिर्फ एक लवली क्रीम नहीं है बल्कि इसके अंदर आप लोगों को सनस्क्रीन भी मिल रही है जो कि आप लोगों को खूबसूरती के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो प्रोटेक्ट भी करने वाला प्रोडक्ट है. अगर आप धूप में काम करते हैं या फिर आपका कोई इस तरह का काम है जो कि आपको बाहर धूप में जाना पड़ता है या फिर लड़कियां हैं लड़के हैं जो कि कॉलेज जाते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं स्कूल जाते हैं ऑफिस जाते हैं इस तरह की अगर सिचुएशन आपकी जिंदगी में भी चल रही है तो आपने व्हाइट एज की लवली क्रीम का इंतखाब जरूर करना है अपनी जिंदगी के अंदर. रोजाना सुबह और रात अगर आप मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करेंगे अगर आप चेहरे पर लगाते हैं गर्दन पर लगाते हैं हाथों पैरों पर लगाते हैं तो आप लोगों को जो है ना बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. रेडियंट जनाब अल्ट्रा विटामिंस के साथ तैयार शुदा है जिसके अंदर आपको विटामिन बी मिलता है विटामिन 3 मिलता है विटामिन सी मिलता है और विटामिन ई की ताकत के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विटामिंस जो कि आप लोगों के चेहरे को निखारेंगे और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देंगे. तो व्हाइट एज की लवली क्रीम जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है हर किसी के लिए है इसे हर एज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि भाई एज लिमिट से इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है तो आप हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. बच्चे भी लगा सकते हैं आप टीनेजर्स भी लगा सकते हैं बूढ़े भी लगा सकते हैं जवान भी लगा सकते हैं. बिल्कुल सही ये कमाल है व्हाइट एज लवली क्रीम का. इसके साथ साथ अगर बात की जाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की बिल्कुल जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है तो ये जनाब बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि एवोकाडो और एलोवेरा से तैयार शुदा है. ये दोनों चीजें आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं. आपके जिल्द को फ्रेश और गोरा बनाती है साथ साथ हर किस्म के नुकसानदार असरात से आपको महफूज रखती है. आपके चेहरे पर झुर्रियां हो दाग धब्बे हो इन तमाम चीजों को खत्म करती है और आपके चेहरे पर निखार लाने के साथ साथ आपके चेहरे की हिफाजत भी करती है. तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम अगर आप नाइट क्रीम अच्छी वाली लेना चाहते हैं अच्छी वाली नाइट क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं
तो व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको व्हाइट एज का जो है ना वो ब्यूटी सोप भी मिल रहा है, और व्हाइट एज का ब्यूटी सोप आप इस्तेमाल करेंगे साथ साथ, जो लोग अगर सोप नहीं लगाते फेस वॉश लगाते तो वो व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश लगा सकते हैं। बिल्कुल फेस वॉश भी है और सोप भी है, बस पसंद आप लोगों की होगी कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ साथ व्हाइट एज में और भी मजीद बहुत से प्रोडक्ट है, जैसे कि आप लोगों को डॉक्टर पिंपल का ट्यूब मिल रहा है। और डॉक्टर पिंपल का जो ट्यूब है ना, इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है कि इसे वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके चेहरे पर एक नीज आ चुके हैं, एक नीज को खत्म करना चाहते हैं, तो डॉक्टर पिंपल का ट्यूब लगाएंगे जो कि व्हाइट एज कंपनी का है। इसी के साथ साथ ये फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है, और यानी कि इसके अंदर सारी इस तरह की चीजें ऐड की गई है जो कि आप लोगों की स्किन पर जो ऑयल काफी ज्यादा जमा हो जाता है, या फिर आपके चेहरे पर जो है ना वो एक्नी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक्नी भाई हर तरह के एक्नी अगर आपके चेहरे पर, यानी कि छोटे वाले एक्नी है, मोटे वाले एक्नी है, लाल एक्नी है, या फिर वो गंद वाले एक्नी है, हर तरह के एक्नी का खात्मा कर देगा, क्योंकि इसका नाम ये डॉक्टर पिंपल, या आपके चेहरे पर जितने भी एक्नी है, जितने भी पिंपल्स हैं, ये सारे खत्म कर देगा, और वो भी गारंटी के साथ है। तो आयुर्वेदिक फार्मूला है, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। उसके अलावा हाँ जी, तो व्हाइट एज का जो है ना वो लोशन भी मौजूद है, और व्हाइट एज का जो है ना हेयर रिमूवल लोशन भी मौजूद है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप आसानी कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स। और उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास नंबर है जो है 03-15-799-0595। ओके जी, नंबर डाल कीजिए 03-15-799-0595। ये नंबर आप डायल करेंगे, इस नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे और इन्हें बताएंगे कि भाई जान आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहते हैं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स, और जो भी प्रोडक्ट्स आप अवेलेबल कराना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो आप अवेलेबल इजीली करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप अवेलेबल कराते जाइए और मुझे बताइए कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं।

अच्छा अली अकबर ब्रो ही भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सकरन सी आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम जी। और हैं जी शाहनवाज अली खास के लिए वालेकुम अस्सलाम, मरियम अली जतोई हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया, अदनान नूर हमारे साथ मौजूद है, अदनान आपको भी वेलकम करते हैं जी। और उसके साथ साथ हमारे साथ है

अच्छा ये बीजी इतना मेरे दिमाग के ऊपर चल गया है ना कि बस हर टाइम ये चल रहा है. और साथ साथ अदनान कहते हैं आई थिंक हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही था. और स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय स्मार्ट हाजिर है अपने लबों पर स्माइल आने के लिए अपने लबों पर. चलें ये भी अच्छी बात है. और मोहम्मद समान कहते हैं कि इहा क्रीम डे नाइट लगाए सकजे थी इहा केड़ी वाजे ते कयो इन तो इलाही सारा प्रोडक्ट आयन मु समझो कोन तमा केड़ी क्रीम जी बारे में पूछो पया. हिदायतुल्लाह कहते हैं बिल्कुल जी गाने एंजॉय कीजिए. हजार खान जदोई हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम हजार भाई. अदनान कहते ओए होए आज इतने अरसे बाद. बस कोशिश यही होती है कि हम जब भी आपको मिलें कि तो पुराने अंदाज में मिलें. और किशोर भाई कहते हैं आज भी मैं टॉपिक पर बात नहीं कर सकता. क्यों नहीं करते बात आप टॉपिक के ऊपर? किया करें भाई सवाब मिलता है. और उसके साथ साथ जो है ना पैनल की जाने बातें तो बहुत से मैसेजेस हैं. पैनल की जाने भी पड़ेंगे और आपके मैसेजेस. लेकिन यहाँ पर गाना है तो मैं सोच रही थी कि जरा हम ये वाला गाना सुन लेते हैं. और गाना बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला है. और साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस में जल्दी से इसलिए रीड करती जा रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि हम 2 बजे के बाद कॉल्स की जाने वाले हैं. कॉलर्स जो हैं वो जरा रेडी हो जाएं. 2 बजे के बाद आप लोगों की कॉल्स होंगी. आप लोगों के साथ बातें करेंगे और आप लोगों से पूछेंगे बताइए जरा अगर आप स्किन केयर करने लगते हैं तो कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि आप लोगों का आपको लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन केयर में जो है ना ये स्टेप है. तो आप जल्दी से जरा इस चीज को समझ लीजिए और कॉल पर आएंगे तो टॉपिक को लास्ट मिनट फॉलो कीजिएगा.

अच्छा हिदायतुल्लाह क्या कह रहे हैं, वैसे तुम इतना क्रीम के बारे में बताती हो कि बंदा बोलता है बस अभी चाहें और वाइट एज का। अच्छा वाइट एज के प्रोडक्ट्स लेकर आए। अच्छा इतना पावर है मेरी बातों में, सच बताए। ओके जी, अरीबा हमें सुन रही हैं। अरीबा हेलो, वेलकम करते हैं आपको। इरम हमारे साथ मौजूद है, इरम आपको वेलकम हो गया। मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर, आपका शो वेरी नाइस है। और वाइट एज ब्यूटी क्रीम आज खरीद करूंगा। ओके बाजी, बिल्कुल जी खरीद कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। और गोच मोहम्मद तैयब थेबू, हाँ हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ है, तमाम जो शो वेरी नाइस आए सलाम तमाम के, वालेकुम अस्सलाम। और ये कशफ कहती है अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी है? और कहती है आप ही, मैं भी वाइट एज क्रीम एंड फेस वॉश एंड लवली क्रीम लेकर आई हूँ कल मार्केट से, और लगी बहुत मजे की है। और मैं डॉक्टर पिंपल्स वाला ट्यूब भी साथ में लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है। आप ही अच्छा किया ना मैंने, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया आपने।

ओके जी, जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइएगा, ठीक है ना। और चाचा खालिद तुम्हारे साथ मौजूद है, कहते बेटा सिडो कैसी हैं आप, शो इज गोइंग ओके जी, शो तो अच्छा जा रहा है, बाकी सुनने वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और कहते हैं कि

बिल्कुल जी, आप कोशिश कीजिएगा कि आप वाइट एश के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो परचेज करें और फिर इस्तेमाल करें और फिर हमें बताएं कि आपको रिजल्ट्स क्या और कैसे मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो आपने गाने की फरमाइश कर दी है, ओके जी। और ये है प्रिंस अहमद अली रिंद फ्रॉम अहमद आबाद, वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान बागार में। स्वीट शो प्लीज रहमान मुगल का कोई भी गाना प्ले कीजिएगा, आई विल ट्राई। अच्छा ये कहते हैं सलाम सिदरा मुस्कान केड़ा हाल आहन खुशायो अदीमा अवां जो प्रोग्राम वडी शौक सा बुधा पयो बुधा पई। अच्छा सॉन्ग जरूर प्ले कजो मां अवां जी दोस्त आए हां अवां जी भेण सुगरा जमाली नंडो अली हसन जमाली आहे विलेज रईस मोहम्मद हसन जमाली आ शफियाबाद नवाब शाह प्लीज प्ले अमीरा बेगम मेकू। अच्छा चले मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, हमारी प्यारी दोस्त सुगरा जमाली आपके लिए गाना लगाया गया, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगी, कब करेंगी और कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगी, कौन सा यानी के प्रोडक्ट लगाने वाली है। अच्छा बाबू अदील अबड़ू हमारे साथ मौजूद है, ओके।

बहुत ही प्यारे सा गाना आप इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहिए पूरी 3 बजे तक। प्रोग्राम है व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। ले रही है आप न्यूज ब्रेक, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, बस आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88.8 पर। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए।

अकबारी जंग रुगो बिन मुल्कन की जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल रासिम मुनीर ऑपरेशन बिनानल मुड़स की कामयाबी के साल पूरो थियण से जीएचक्यू में कोठायल तकरीब के खिताब। फील्ड मार्शल रासिम मुनीर चो तो अकबर जंग 7 मई की विच वाई रात का 10 मई ते दुश्मन असाजे कौमी वकार के आजमाने की नाकाम कोशिश कई। मई 2025 की जंग का ओचतो ईंदड़ जंग न हुई। माजी में भी दुश्मन पाकिस्तान से बेबुनियाद हथ तो क्या इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कई पर हक की जंग में भारत जारत की मुंह तोड़ जवाब दिनों पो। पाकिस्तान दुश्मन के हर भेरे शिकस्त जो मुंह दिसो पो। ऑपरेशन बनाल मरसूस के एक साल मुकम्मल थियण से जीएचक्यू में मुनद खास तकरीब। मार्शल आसिम मुनीर चो दुश्मन जानी वे तो पाकिस्तान खिलाफ अगते अगराई जा असर इनता ही खतरनाक ए तकलीफ दींदड़ हूं। भारत जो ख्वाब है तो पाकिस्तान की अस्करी जारत ए सफारती अकेलाई जो निशानो बढ़ाए खिते में ताकत जो तवाजुन तब्दील करे। यो ख्वाब उन कद ए सलाहत का घणो वधीक है जो को पाकिस्तान कदें भी कामयाब थे नींदो। फतेह मिसाइल ए पाक फिजाया के शाइन दुश्मन के 26 फौजी हथन के कामयाबी से निशानो पढ़ाया। आवाम ए कौमी क़यादत जो पैगाम है मुल्की खुदमुख्तियारी सरहदी सलामती ए कौमी वकार से को काबिले कबूल ना है। भारत जंग नतीजे में थियल जानी ए माली नुकसान की कीमत ईंदड़ वक्त तक अदा कह रो।

कागजी जंग में भारत जी प्रतनाक शिकस्त के एक साल मुकम्मल अज समूरे मुल्क में फतेह जश्न मल्हायो पियो वञे जीअं रावलपिंडी में शानदार तकरीब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल सितास मुनीर की तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत फील्ड मार्शल सितास मुनीर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु एंड नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ शहीदन की यादगार से हाजिरी गुलदस्तो रखियो फातिह।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जी ए एफ एम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिप्से की बनी है आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफां पेश कयो वियो।

0: वतन की मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है, गूंज रही है GAFM 88 की सरमस्त आवाज से।
1: तो डालो धमाल और बोलो
0: GAFM 88।

क्रीम एंड फेस वॉश टॉप कैंसर ओके वेरी नाइस. चाचा को देखिए सारी बातें बताए ठीक है, आप सीखा करें चाचा से कुछ. अच्छा ये कश्यप कहते हैं सुनो मेरी तो कॉल लगती ही नहीं है, क्यों भला कब से नंबर लगा रही हूँ कॉल लगी नहीं रही है और कब लगेगी बताओ तो. अब ये मुझे पता होता तो अगते न हो जा. और कहते हैं मेरी सिस्टर अलीजा फिजा माविजा एंड अम्मी और भाभी आपका शो सुन रही हैं और आपको सलाम दे रही हैं बहुत सारे. अब दुआ करो हमारी कॉल लग जाए, कल भी नहीं लगी थी आज भी नहीं लग रही और मुझे बहुत दुख हो रहा है. अब आप ही मेरी दोस्त हैं और सिस्टर बन के रहना. ओके जी ओके तमाम जो हुकुम अखिन थे आई वी गाल तमाम जी कॉल लगी हुई नहीं अगर तमाम ट्राई करना. चाचा खालिद कहते हैं मेरी कॉल काश लग जाए नहीं लगती. हाँ ये वाक्य है चाचा खालिद की भी कॉल कभी नहीं लगी है. वैसे मैं चाहूंगी कि आप लोगों की कॉल लग जाए मजा आएगा. कश्यप से बात करेंगे और उन लोगों से जिनकी कॉल कभी भी नहीं लगी है तो आप कोशिश करें कभी ना कभी आपकी कॉल लग जाएगी. और ये मैंने अमीरा बेगम की आवाज में गाना लगाया है. ये जो एक हमारी प्यारी लड़की थी ना क्या नाम था उसका.

तव्हां जेको आहे न इस्तेमालु कयो पिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे एरिया में नथी मिले, तव्हांजे सिटी में नथी मिले, तव्हांजे ॻोठ में नथी मिले, तव्हांजे शहर में नथी मिले, तव्हांजे पाड़े में नथी मिले, त तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 हिन नंबर ते तव्हां कॉन्टेक्ट कयो, इन्हनि खे चओ त तव्हांजे एरिया में अवेलेबल कराइनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जीअं तव्हां इस्तेमालु कयो ऐं सुहिणा थी वञो। छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे इहा वाइटमिन ई बीट्स सां तयार थियल आहे ऐं माइक्रो बीट्स भी हिन में मौजूदु आहिनि, जेका सिर्फ़ ॿ ॾींहं इस्तेमालु कंदा तव्हां, यानी की ॿ रातूं अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे सफ़ा हीअं असली वी आई पी रिज़ल्ट ॾींदी। सो तव्हां बि ज़रूरु इस्तेमालु करे ॾिसजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे, जेका बिल्कुलु तव्हांजी स्किन खे गोरो जटो बणाए छॾींदी, तव्हांजी स्किन खे सोणो बणाईंदी, तव्हांजी स्किन खे ग्लोइंग बणाईंदी ऐं तव्हां थी वेंदा सफ़ा असली पप्पू। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां अगरि परचेज कयो था त हुन सां गॾु तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश लाज़मी वठिजो, ठीकु आहे। ओके जी, फेस वॉश बि जेको आहे न उहो बि ज़रूरी हूंदो आहे तव्हांजी स्किन जे लाइ, तव्हांजी स्किन केयर जे लाइ, समुझो था।

नौकरी। दोदा अली हमें सुन रहे हैं, दोदा भाई आपको बहुत शुक्रिया। अदनान नूर हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। नूर सिंतुनियो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। कहते हैं टॉपिक रात को क्रीम लगाना, ये स्टेप जो है ना बड़ा अच्छा है। ये अच्छा तो आपको लगता है लेकिन इम्पोर्टेंट है या नहीं ये भी आप मुझे जरा बताइए। और उसके साथ साथ हैं जी फिरोज अली ब्रोई भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। वीरूमल मेंगवार हमारे शो सुन रहे हैं, थैंक यू जी। वाई वाई गाने में ओके जी। फेसबुक वाले लोग जो हमारे साथ मौजूद है वो पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए। इसे ये जो हमारा मैसेज है ना जो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब आप

ये मिसेस रायकी में गाना है ना, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा. अच्छा दिलीप कुमार मेघवार भाई हमारे साथ मौजूद है, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया भाई जान. दर्दी दिल कहती है कि सबसे पहले चेहरे की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जल्द साफ और फ्रेश रहे. बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन जरूर लगाया करें. सोने से पहले मेकअप लाजमी साफ किया करें. हाँ ये बिल्कुल सही बात है. कुछ ऐसी टिप्स वाकई होती हैं हमारी जिंदगी में, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं या फिर अगर आप उन्हें जरा स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो आगे जाकर वो तमाम तर चीजें जो है ना वो आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचा देते हैं. अब जैसे कि कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो रात के टाइम ना फेस वॉश नहीं करते, बस ऐसे ही सो जाते हैं. तो बस ऐसे ही सोना जो होता है ना आपकी जिंदगी में आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि जब आप रात का फेस वॉश करते हैं ना तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन क्लीन हो जाती है, आपकी स्किन पर जितनी भी डस्ट होती है, पोल्यूशन होती है या फिर जो जम्स वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो आपकी स्किन जो है ना वो ग्लोइंग हो जाती है. और अगर आप इस्तेमाल करना चाहें डी स्किन का फेस वॉश, उसे इस्तेमाल करें और रात के टाइम लगाएं अपना फेस वॉश जो है ना डी स्किन फेस वॉश से करेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि भाई आपकी स्किन जो है ना वो और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है, और ज्यादा ग्लोइंग होती जा रही है, और ज्यादा हसीन होती जा रही है. तो जरूर आप ट्राई करके देखिएगा ताकि आप लोगों की खूबसूरती भी बढ़ती रहे और आप लोगों को भी अच्छा वाला निखार मिले. और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, देन आपने डायल करना है 03 15 799 0595. ठीक है,

ओके जी, किशोर भाई लिखते हैं कि जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की लेकिन सजा वहां मिली जहां मैं वफादार था। ये थी दुआ, तुम अकेला नहीं हो। अच्छा मोहम्मद जमान कहते हैं, मुंह चाहियो ना कोई भी टॉपिक के फॉलो न करे सकंदो। छो भला टॉपिक मुंह जो दुखियो पूछो छा भला, टॉपिक तो इजी हुयो, बस गाल या तो तुम्हारे समझ में जगह गाला ना थोड़ी देर ही दिया है। चलिए कोई बात नहीं, सनावला बिरोही हमारे साथ मौजूद है। हेलो हिदायतुल्लाह, क्या कहते हैं वैसे आज? हाँ ये भी वैसे बात है, पता नहीं क्यों नहीं किया। इकबाल लाशारी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा पोस्ट को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। और साथ साथ जो है ना यहाँ पर हम ये वाला प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक लगाएंगे। अच्छा मेरे प्रोग्राम में बहुत से लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो बोलते हैं जो है ना वो फौजिया सुमरो का गाना सुनाए हमें, तो फौजिया सुमरो का जो गाना है ना वो मैंने लिस्ट में लगा लिया है। ये गाना हम आप लोगों के साथ साथ सुनेंगे और उन तमाम तो लोगों को डेडिकेट करेंगे जो फौजिया सुमरो का गाना सुनना चाहते हैं।

ओके, टाइम इतना तेजी से गुजरता जाता है ना, पता ही नहीं लगता। और यहाँ पर महर इरफान सियाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं। देर आए दरअसल आए जी, मैं सोच रही थी आज आप कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, देखिए आपका कमेंट आ गया। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है। हजार खान जतोई कहती अदी सिद्रा, सुना है व्हाइट एज की लवली क्रीम लाजवाब है, सच्ची। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, कसमें आप जब इस्तेमाल करेंगे ना आपको पता चलेगा कि वाकई भाई आपने जो सुना है वो बहुत अच्छा सुना है। तो जरूर आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट जो है ना वो मिल जाएंगे।

0: अच्छा किशोर भाई, आप चाहते अलग हो लेकिन वो चाहते अलग ना हो, तो अब मैं तो बीच वाला इंसान हूँ ना, तो मैं क्या करूँ? तो फिर हमें बात माननी पड़ जाती है। बाकी आप जरूर ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और साथ में आप फेस वॉश ट्राई जरूर कीजिएगा डी स्किन वालों का, ठीक है? डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है, तो इसको आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये ऑल स्किन टाइप के लिए। और मजे की बात ये है कि इसके अंदर जो है ना वो विटामिन ई बीड्स ही शामिल है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही गिने चुने प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर मौजूद होते हैं। और उन्हीं प्रोडक्ट में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल है, जो कि गहराई तक आपकी स्किन में अंदर जाते हैं, आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, आपके चेहरे को निखारते हैं और आप लोगों को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश, ताकि आप लोगों को परफेक्ट वाला निखार मिले। और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, तो हम आप लोगों से इजाजत लेंगे, और इसी के साथ साथ आप लोगों से और हमारी जो मुलाकात है वो कल वाले प्रोग्राम में होने वाली है, यानी कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हम आप लोगों के साथ मौजूद रहते हैं, प्रोग्राम में फन करते हैं, बातें होती हैं, खूबसूरती की बातें करते हैं और आप लोगों को ब्यूटी टिप्स देते हैं, ठीक है ना? तो आप हमारा जो है ना ऐसे ही साथ दिया करें जैसे आप देते हैं हमेशा, और इसी के साथ साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। सो मुकलानी ना ही बाबू सिंह सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।
1: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
2: जड़े माँ पांजो ख्याल रखन्दी आहे, तो सेहत नस्लन ताई हलन्दी आहे। ही पेगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
3: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में दाखला जो ऐलान।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
6: जिंदगी भर का

0: 8 2018
1: अखबारी जंग रुगो बिन मुल्कन जी जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर जो ऑपरेशन बनल मरसूसी कामयाबी की साल पूरो थियण जी थियो में कोठियाल तकरीब के खिताब कयो। फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर चयो त अखबारी जंग 7 मई जी विझी वई, रात खां 10 मई ताईं दुश्मन असांजे क़ौमी वकार खे आज़माइण जी नाकाम कोशिश कई। मई 2025 जी जंग का ओचितो ईंदड़ जंग न हुई। माज़ी में दुश्मन पाकिस्तान ते बेबुनियाद ऐं हथ ठोकिया इल्ज़ाम लॻाइण जी कोशिश कई, पर हिकिड़ी जंग में भारतीय जहाज जो मुंहुं तोड़ जवाब ॾिनो वियो। पाकिस्तान दुश्मन खे हर पहिरें शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पियो। ऑपरेशन बनारल मरसूस खे 1 साल मुकमल थियण ते GHQ में मुनक़द ख़ासि तकरीर खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसम मुनीर चयो त दुश्मन ॼाणे वठी पाकिस्तान ख़िलाफ़ अॻिते अगराई जा असर इंतिहाई ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा। भारत जो ख़्वाब आहे त पाकिस्तान खे अस्करी जारियत ऐं सफ़ारती अकिलाई जो निशानो बणाए खिते में ताक़त जो तवाज़ुन तब्दील करे। इहो ख़्वाब हुन जे कद ऐं सलाहियत खां घणो वधीक आहे, जेको पाकिस्तान कॾहिं बि कामयाबु थियणु न ॾींदो। फिदा मज़ारनि ऐं पाक फिज़ाया जे शाहिननि दुश्मन जे 26 खां वधीक फ़ौजी हथनि खे कामयाबीअ सां निशानो बणायो। अवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख्तियारी, सरहदी सलामती ऐं क़ौमी वक़ार ते को बि ठाह क़ाबिले क़बूल नाहे। भारत जंग जे नतीजे में थियल जानी ऐं माली नुक़सान जी क़ीमत ईंदड़ वक़्तनि ताईं अदा कंदो रहंदो।

पाक फौज के जदीद घुर्जन सा लेस करण ला डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स कायम कर छो। बरदार इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक गडियल दिफाई मुआहिदो असान सफारती कामयाबियों में सब का वही कामयाबी है। अज पाकिस्तान पंजी असराती जिम्मेवारानी आएं अणथुरी सफारतकार जरिए तारीखी अमन गालियों की मेजबानी कर रहा है। फील्ड मार्शल सैद आसम मुनीर पंज खिताब में असि हर महाज से कश्मीरी आवाम की सियासी सफारती इखलाकी मदद जारी रखासी। असि मंजिल वो मकाम है जिनों ख्वाब असो बुजुर्गन दिखो हो। पाकिस्तानी कौम असि ताकत है असी कौम की कुवत आयो। पाकिस्तान जो मुस्तबिल इनशाला तमाम घो रोशन है।

0: मजे से हट जाने यूएन की जमीन हर जाई है हल हल चल है सोमे आता की हर हर दिल पर है बच्छाई है गाले हैं खुदा का फार है हम लड़ने के लिए तैयार है हम
1: हक जी जंग में भारत जी प्रमनाक शिकस्त के एक साल मुकम्मल आज समूरे मुल्क में फतेह जो जश्न मलाया पे बने जीएचक्यू रावलपिंडी में शानदार तकरीब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेयर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु ए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के शहीदन की यादगार से हाजिरी गुलदस्तो रखियो फातेह खानी कई ISPR पारा जारी कल बयान में कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी ए बाहरी चैलेंजन के मुंह डेण लाइ मुकम्मल तौर से तैयार है जंग में फतेह हथियारबंद फौज की तैयारी चाह ए पेशावराना सलाहियत जो सबूत है हक की जंग में कामयाबी आवाम जो हथियारबंद फौज के एतमाद के मजबूत किया है भारत खिलाफ़ ऑपरेशन महर का हक की कामयाबी के एक साल मुकम्मल थे सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कौम ए पाक फौज के बधाई सदर आसिफ अली जरदारी चाहे पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जारियत जो भरपूर जवाब दियण जानू था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क्यादत में पाक फौज दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दिनों भारत के गैर कानूनी कब्जे हेठ फरारल कश्मीर जो मसलो ठारान मुताबिक हल थन घुर्जे पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की इखलाकी ए सफारती हिमायत जारी रख वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पैं पैगाम में दुश्मन खिलाफ़ कामयाबी से अल्लाह तला के बेशुमार नेमतों एहसान सजदो कर है अज अस उन अज़म हिम्मत ए साबित कदम की याद कर रहा हूं जहां पाकिस्तान आजमाइश के वक्त में ॾेखारी ऐं दुश्मन खे ज़बरदस्त शिकस्त ॾिनी वरी वज़ीर इमरान अली शाह चयो आहे पहिरीं जंग में पाक फ़ौज दुश्मन जी नापाक इरादनि खे मिटी में मिलायो ऑपरेशन बनार मरसूस पाकिस्तान जी अस्करी तारीख़ जो सुनहरी बाब आहे निवल डाकयार्ड कराची में हक जे जंग में कामयाबी के साल पूरो थियण ते तकरीब ते ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर चयो त दुनिया पाकिस्तान जी फ़ौज जी महारत ऐं जदीद जंगी सलाहियत खे तस्लीम करे वरितो आहे शहीदनि जूं क़ुर्बानियूं क़ौमी सलामतीअ जूं बुनियाद आहिनि पाक फ़ौज हर ख़तरे खे मुंहुं ॾियण लाइ मुकमल तौर ते तयारु आहे सीनियर वज़ीर शर्जीलीना मेमुण चयो आहे त पाकिस्तान जी सलामती ऐं क़ौमी वकार लाइ समूरी क़ौम मज़बूत हितु बणिजी वेंदी आहे हिकु साल अॻु पाकिस्तान भारत जो सिंदूर मिटाए छॾियो महक हिकु रुगो जंग न पर क़ौमी एके हिमत पाकिस्तान सां मुहबत जी कहाणी आहे हक जी जंग में कामयाबी खे साल मुकमल थियण ते क़ौम खे वधाइण वारे पैगाम में शर्जील मेमुण चयो त दुनिया जी का बि ताक़त पाकिस्तान न मेरी अख सां ॾिसी नथी सघे असांखे मुल्क अमन तरक़ी ऐं भाईचारे खे हथी ॾियणी पवंदी भारत खिलाफ़ हक़ जी जंग में फतेह जी पहिरीं सालगिरह ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं कराची में अमेरिका हक़ जी कामयाबी जी ख़ुशी में मज़ार क़ाइद खां साइकिल रैली कढी वई टंडो आदम में समाजी तनज़ीम तरफ़ां गंढियल रैली में दुहल ऐं शरनाइन वॼाए पाक फ़ौज खे भेटा पेश कई वई खैरपुर में म्युनिसिपल कमेटी तरफ़ां गंढियल रैलीअ में शहरनि जे वॾे अंग में शिरकत कनकोट में अमन कमेटी ए म्युनिसिपल कमेटी जी डीसी ऑफिस का घंटाघर चौक ते रैली गढ़ी खेरो नदो ए नगर पालकर में भी हक की जंग के साल पुरथन की खुशी में रैलियों कटी पयूं पाक फौज के भेटा पेश कई पई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतर के वज़ीर आज़म ए परडे वज़ीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जासिम अल सानी जो फोन तब्दील थींदड़ इलाक़े सूरत हाल ए अमन कोशिशुनि में अगभराई जो जाइज़ो वज़ीर आज़म पारां पाकिस्तान जे अमन क़दमनि लाइ कतर जे मुसलसिल ऐं साबित क़दम हिमायत जी वाखाण ॿिन्ही अॻवाणनि जो अमन कोशिशुनि जी कामयाबी यकीनी बणाइण लाइ सभिनी धुरनि तरफ़ां तामीरी राब्तनि जी अहमियत ते ज़ोर वज़ीर आज़म चयो त कतर जे अमीर जे पाकिस्तानी दौरे जा मुंतज़र आहियूं ॿिन्ही मुल्कनि चटदार हिसेदारी खे वधीक मज़बूत बणाइण ऐं हथी ॾियण में मदद मिलंदी ایرانی آل ٹینکرز کی نشانہ بنائے ویو آئے خطے میں امریکی ٹھکانوں کے نشانوں بنائیداسیں ایران کے پاسداران انقلاب امریکہ کی سخت وارننگ دے چڑی آئی آر جی ایس ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر ایران جا میزائل جدید ڈرون مکمل طور سے تیار ہیں کئی بچارانی قدم جو فوری جواب دن کی صلاحیت رکھن تھا امریکی پٹی وزیر مارکو روبیو امریکی نمائندے ایسٹر ویٹکوف جی میامی میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی سے ملاقات ویران سے جنگ بندی تفصیلی گالن لا مختصر مفاہمتی یادائش تے غور زرین موجب تجویز کل فریم ورک جو مقصد جاری چکٹان جو خاتمہ سفارتی گالن جو رستہ کرنا ہے

मीआ साहब वरसा जानो जी बस खाई में गलती बाड़े समय टे जणा फौत औरतन बाड़न समेत पंजवी का वधिक जख्मी हुमाय रोड ते जकमबाद खां मीरपुर बुरडो वेंदर बस गलती थी पई जिते चैन बरन जो बाड़ो नबी बख्श चनो हजूर बख्श मुरीद फौत थी पिया औरतन बाड़न समेत पंजवी जणा जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची के मंगू पीर वाले इलाके में पुलिस चढ़ाई दौरान दिल के दौरों पौन सौ पीरसन फौत लाश मेन रोड से रखी धरणों गाड़ियों जो कतारू लगी पयूं वारसन चवण तो पुलिस घर में चढ़ाई कर औरतन और बारन तशद खौफ हिरास सब 50 साल रमजान सरमस्तानी दिल के दौरों पौन सौ फौत थी पो एहलकार खिलाफ कतल केस दाल कर इंसाफ किया वे मुतालबो किया। आगरा भरसा हथियारबंद की फायरिंग में घर धनी कतल गोट बरकत आराई में हथियारबंद घर अंदर दाखिल थिया तो घर धनी सुजाग थी पिया हथियारबंद फायरिंग करे पीरसन अब्बास अली के कतल कर छो लाश किम्स अस्पताल मुंतकिल किया वो पुलिस मौजूद जांच कई पे वे वाक्य फुर्ज है या पुरानी दुश्मनी का पीरसन कतल थो है। दादू जी शेवाज कॉलोनी में छेड़े दौरान फायरिंग में जड़ो मार पो पुलिस मौजूद मकसूद लाड़काना वासी मोहम्मद रक्षल तौर सुणप थी है पुलिस कार्रवाई करे शक के बुनियाद से बिन जन के गिरफ्तार कर वरतो।

मेयर में 27 अगवाती पियल 6 साला बाड़ी उजाला परवीन सोलंगी की बाजियाबी लाइ वासन पेटल ऐं सिविल सोसाइटी जी एहतियाज रैली घंटा घर चौक पर धरणो अॻवाणनि चयो त बाड़ी उजाला परवीन जी बाजियाबी सवाले निशान बणजी चुकी आहे। वार सख़्त परेशान आहिनि, पुलिस खे बि असराइता क़दम नाहिनि खयां।

0: बचड़न ता घोर वेंदड़ा दुनिया ची असीम हस।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: It's 3:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
8: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियन की खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई, बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
9: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
10: सुनते रहो GFM 90.8।

0: man, tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye, skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra, White Age Beauty Soap se mile, chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो. सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो. अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे. होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे. एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण. वधीक मशोरे ऐं राब ते जे लाइ 0327-99-84-763.
5: सिंध के माथे का झूमर,
6: DFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल दिल ढूंढता है फिर वही, पहली अक्टूबर से बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
2: 578 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

0: 2008 2016 और 2019 के नाम निहाद वाकयात यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान माजी भी इल्जाम तराशी मुबादला आरई जंगी जुनून और महदूद जाहिरियत के गुमराह तसव्वुर के लिए पाकिस्तान पर नाजायज जंग मुसल्लत करने और ताकत के ज़ोन में तंग नजर और क़लील मुद्दती सियासी व अक़ली मकासिद हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मादा हक महज दो मालिक या वाक के दरमियान लड़ने वाली जंग न थी बल्कि दर हकीकत ये दोनों नज़रियात के दरमियान एक फैसलन मुआवका था जिसमें अल्लाह फजल से हक फतायाब और बातिल हज़ीमत से दोचार हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वो हिंदुस्तान की इमा पर फितना अल-ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान की पुष्पनाही ही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और समाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे।
1: अकबरी जंग रुगो बिन मुल्कन की जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो ऑपरेशन बयान मरसूस की कामयाबी के साल पूरो थे जीएचक्यू में कोठायल तकरीब खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अकबरी जंग 7 मई की विच वाली रात का 10 मई तई दुश्मन असाजे कौमी वकार के आजमाने की नाकाम कोशिश कई। मई 2025 की जंग का ओशतो इंदड़ जंग न हुई। माजी में भी दुश्मन पाकिस्तान से बेबुनियाद हथ ठोके इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कई पर हक की जंग में भारतीय जारियत जो मुंह तोड़ जवाब दिनों पो। पाकिस्तान के दुश्मन की हर भेरे शिकस्त जो एक साल मुकम्मल थे जीएचक्यू में मुनद खास तकरीब के खिताब करे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुश्मन जाने वे तो पाकिस्तान खिलाफ अगत अग्राई जा असर इंतहाई खराब खतरनाक ए तकलीफ न हों। भारत जो ख्वाब है तो पाकिस्तान की अस्करी जारियत सफारती अखिलाई जो निशानो बनाए खिते में ताकत जो तवाजन तब्दील करे यो ख्वाब उन कद ए सलाहत का घणो वधीक है जो पाकिस्तान कदें भी कामयाब थे नींद फतेह मिसालन ए पाक फिजाय शाहिनन दुश्मन की 26 का वधीक फौजी हथन के कामयाबी से निशानो बनाया। आवाम ए कौमी क्यादत जो पैगाम है तो मुल्की खुदमुख्तियारी सरहदी सलामत ए कौमी वकार के को भी ठा काबिले कबूल ना है। भारत जंग के नतीजे में थियल जानी या माड़ी नुकसान की कीमत इंदड़ वक्त तई अदा कह रहा

सजावट जुड़े जो वेझो हथियारबंद जमले में नौजवान पुट समेत कतल ज़ाल एक पुट एक न्याणी जख्मी फौरियत सज्जाद अली तुनियो कुटुंब समेत पंज गोट फुलरी वही रहे हो तो ताड़ में वेठल हथियारबंद हथियार के जोर से हथियार जहाँ मुँह खोले छाया गोलियों लगन सब फौरियत सज्जाद अली तुनियो अठन वरन जो पुट रहमान तुनियो कतल थी वह मकसूल की ज़ाल रुखसाना सुणियाणी उमीदा ए पुट इमान अली जख्मी लाड़का ट्रामा सेंटर मुंतकिल इलाके वासन मौजूद मकसूल सज्जाद तुनियो रुखसाना से पसंद परणो किया हो नारी के वारसन हमलो किया साहब भरसा जानन की बस खाई में कलती बाड़ी समेत टे जणा फौत औरतन बारों समेत पंजवी का जख्मी हुमाय रोड से जगमबाद का मीरपुर बुरड़ो पेंदड़ बस कलती थी पई खाई में किरी पई चैन वरन जो बारड़ो नबख्श चनो हजूर बख्श ए मुरीद फौत पाया औरतन बारों समेत पंजवी जणा जख्मी अस्पताल मुंतकिल अगदाबर से हथियारबंद की फायरिंग में गर्दणी कतल गोट बरकत आराई में हथियारबंद घर अंदर दाखिल थिया तो गर्दणी सुजाग थी पाया हथियारबंद फायरिंग करे पीरसन अब्बास अली के कतल कर छो लाश गेम्स अस्पताल मुंतकिल पुलिस मूजिब जांच कई पे वे वाक्यो फुरजो है या पुराने दुश्मनी तां पीरसन कतल थो है दादू शहबाज कॉलोनी में चेटी दौरान फायरिंग में एक जणो मारजी वियो पुलिस मौजूद मकतूल के लाड़काने वासी मोहम्मद रखियल तौर सुणप थी है पुलिस कार्रवाई करे शख्स के बुनियाद से बिन जणन के गिरफ्तार कर वरतो है पन वाकिल में उरड़ी वबा बणजी वही वधीक एक मारणो फौत अंग वधी टे थी वयो छहन का वधीक मरीज में मतला गोड अलहयार नंढड़ में बिन वरन जो अहमद रजा नंढड़ उरड़ी वगे फौत थी वयो वही अग बेड़ में सतावी जी अगवा थी पियल छहन वरन की बाड़ी उजाला परवीन सोलंगी की बाजियाबी लिया वारसन जो एहतजाज पेटेलिफ ए सिविल सोसाइटी की एहतजाज रैली घंटाघर चौक पर धरणो अगवाण जो चवण तो बाड़ी उजाला परवीन की बाजियाबी सवाल निशान बन चुकी है वार सख्त परेशान हैं पर पुलिस के भी असहता कदम ना खाया

0: बजरंगा घोर विंदड़ दुनिया जी अजीम हस्ती अमर जिजल के सलाम रातन जा उजागा करे बचन के हंज में सकून रंड सुनाईंदड़ अमर वो रिश्तो आहे जेंजे पेरन में अल्लाह सई औलाद ला जन्नत रखी आहे तती हुजे या आंधी अमर हर हाल में बचन ता घोर वने थी सज दुनिया में अज मायरन जो आलमी रिहाड़ो मल्हायो पे वने मायरन जी मोहब्बत कुर्बानी खिदमतन के भेटा पेश कई पे वने
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: इट्स 4:15 पीएम
3: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: क्या देख रहे हो
5: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो
4: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
6: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
7: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघि ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वो है होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे तई बरोज जुम्मू मोकल है एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन मशोरे रबते जे लाए 0327-99-84-763
4: क्या देख रहे हो
5: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो
4: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
6: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
8: आप सुन रहे हैं
9: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

0: 2008 2016 और 2019 के नाम हाथ वाकयात यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान माजी में भी इल्जाम तराशी मुबालगा आराई जंगी जुनून और महदूद जाहिरियत के गुमराह तसव्वुर के जरिए पाकिस्तान पर नाजायज जंग मुसल्लत करने और ताकत के ज़ोन में तंग नजर और क़लील मुद्दती सियासी वाली मकासद हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हक महज दो ममालिक या फौज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग न थी बल्कि दर हकीकत ये दोनों नज़रियात के दरमियान एक फैसला मुआका था जिसमें अल्लाह फजल से हक फतायाब और बातिल हज़ीमत से दोचार हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की सीमा पर फितना हिंदुस्तान की पुष्प बनाना ही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और समाजों का मुकम्मल खात्मा करे।
1: हकवारी जंग रुगो बिन मुल्कन की जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल सैद आसम मुनीर जो ऑपरेशन बनारन मरसूस की कामयाबी के साल पूरे थे जी एच क्यू में कोठहल तकरीब के खिताब फील्ड मार्शल सैद आसम मुनीर चवा तो हकवारी जंग 7 मई के विच वे रात का 10 मई तई दुश्मन असाजे कौमी वकार के आजमायण की नाकाम कोशिश कई। मई 2025 की जंग का ओचितो ईंदड़ जंग न हुई। माजी में दुश्मन पाकिस्तान से बेबुनियाद हथ ठोकिया इल्जाम लगाने की कोशिश कई पर हक की जंग में भारतीय जहर जो मुंह तोड़ जवाब दिनों वो पाकिस्तान दुश्मन के हर भेरे शिकस्त जो मुंह ऐसा पो ऑपरेशन बनारन मरसूस के एक साल मुकम्मल थे ते जी एच क्यू में मुनद खास तकरीब के खिताब कर फील्ड मार्शल आसम मुनीर दुश्मन जाने वे तो पाकिस्तान खिलाफ अगते अग्राई जहा असर इंतई खतरनाक ए तकलीफ डींदड़ हूं भारत जो ख्वाब है तो पाकिस्तान की अस्करी जारियत सफारत या खिलाई जो निशानो बढ़ाए खिते में ताकत जो तवाजुन तब्दील करे यो ख्वाब उन कद सलाहियत का घो है जो को पाकिस्तान कदें भी कामयाब थे नी फतेह मिजालन ए पाकिस्तान फिजाया के शाहन दुश्मन के छवी का फौजी हथन की कामयाबी से निशानो बढ़ाया आवाम ए कौमी क्यादत जो पैगाम है तो मुल्की खुदमुख्तियारी सरहदी सलामती ए कौमी वकार से को कबूल नाहे भारत जंग नतीजे में थियल जानी ए माली नुकसान की कीमत इंदड़ वक्त तई अदा कंदो रहंदो।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का।
5: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
6: हाँ हैरत अंगेज ए जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज सा कुदरती शिफा हासिल करियो सेहत ए तंदुरुस्ती जी नई राह ते गामजन थियो तपोए देर छो अवां जे पांजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो ए जिगर गुर्दे पिते की पथरी ए सोज पुरानी खंग जुकाम دل جی تکلیف ہے ادھ متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 5 وگے تائیں بروز جمعہ موکل آہے ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرنڈ ودھیک مشورے ایں رابطے جے لائے 0327-99-84-763
5: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तो बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान समेत अक्सर ममालिक में माओं का आलमी दिन मई के दूसरे इतवार को मनाया करते हैं, मगर कई ममालिक दोस्तों ऐसे भी हैं जो ये दिन जनवरी, मार्च, नवंबर या अक्टूबर में भी मनाते हैं। 95 वर्ष कबल अमेरिकी सदर विड्रो विल्सन ने ऐलान किया था कि हर साल मई का दूसरा इतवार यौम मादर के तौर पर मनाया जाएगा। तब से ये दिन रफ्ता कई अकवाम और ममालिक ने अपना लिया और कदीम यूनान में कई देवताओं का जन्म देने वाली जो है साई बेले का यादगारी दिन बच्चों की जानिब से माँ को तोहफे देने का दिन होता है। रोमन लोग जो नो देवी की याद में एक दिन मुख्तस करके अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करते थे, जबकि अर्ज हिंद में एक सदी कब्ल इसे बहुत पहली बार बाकायदा तौर पर मनाने का सहरा अपने जारूस नामी खातून के सर जाता है जिनका ताल्लुक अमेरिका से था। माओं के आलमी दिन के मौके पर हमें ये याद रखना चाहिए कि वालदेन एक साय की तरह हैं, जिनकी ठंडक का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक ये साया सर पर मौजूद रहता है। जो ही ये साया खुदा ना खास्ता उठ जाता है तब जाके हमें एहसास होता है कि हम क्या खो बैठे हैं। इसीलिए आएं इस बरस अहद करें कि हम इस अजीम हस्ती की दिलो जान से भरपूर खिदमत करें और कोशिश करें कि जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया इसका कुछ फीसद ही हक अदा कर सकें। अब जो है हम अपनी माँ को किसी भी तरीके से ये एहसास दिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे खास और मोहतरम हस्ती आपकी माँ ही है। तो जनाब, माओं का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और माओं का रुतबे से कौन वाकिफ नहीं है? बिल्कुल जनाब, हर इंसान माओं के रुतबे से वाकिफ है और माओं की खिदमत में कोई कसर उठा के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वही माँ जनाब जब हमें पैदा करती है तो वो हमारे मतलब के हर कदम से लेकर हमारे जनाब हर सांस लेने तक हमारी महाफिज होती है। बिल्कुल जनाब, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ साथ चलती है। तो बिल्कुल जनाब, जिन लोगों की माए हयात है हमें हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका साया उन तमाम लोगों पर हमेशा कायम दायम रखे और वो हमेशा खुश खुर्रम रहें और अपनी माओ के संग संग रहें, क्योंकि माँ की दुआ जनाब अगर माँ चली भी जाती है खुदा ना खास्ता तो माँ की दुआ हमेशा हमारे साथ रहती है। तो बिल्कुल जनाब, इस वक्त आपका अपना शो है, आज मदर्स डे स्पेशल शो है, माँ प्यारी माँ आई लव यू माँ। तो बिल्कुल जनाब, ये हमारा और आपका साथ रहेगा 5 से 7 बजे तक, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आज फरमाइशें नहीं प्ले करेंगे जनाब, आज सिर्फ माँ की बातें करेंगे, माँ के गाने प्ले करेंगे और जनाब हम कोशिश करेंगे कि हम मदर्स डे पर पूरी के पूरे सॉन्ग आज मदर डे वाले ही चलाएं, कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा और आज आप आएं तो प्लीज़ मदर्स की बातें करें, अपनी माओं की बातें करें, अपने माओं के बारे में अशार सुनाएं, अपने माओं के बारे में कोई मैसेज कन्वे करें, वो बात हमारे साथ शेयर करें, तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो कि आज तक आप अपनी माँ को कह नहीं पाए ना। बाज़ुकात ऐसा होता है कि बहुत शाय बच्चे होते हैं, अपनी माँ को वो नहीं कह सकते जो कि उनके दिल में होता है। माँ तो कह देती है लेकिन बच्चे जो है थोड़ी सी शर्मीलापन जो उनमें उनके दरमियान हायल हो जाता है और वो बेचारे सोचते रहते हैं कि आखिर हम अपनी माँ को कैसे बताएं कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो शर्माने की बिल्कुल बात नहीं है, मेरा शो आपके लिए है आई लव यू माँ, जिसमें आप हमें कॉल करके हमें मैसेजेस करके आप बता सकते हैं कि जनाब आपका जो है प्यार आपकी माँ के लिए कितना है और जनाब हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खैर जनाब, मैं शो का पहला सॉन्ग आई थिंक प्ले करने लगा हूँ। बिल्कुल जनाब, शो का पहला सॉन्ग द वन एंड ओनली रहीम शाह की वॉइस में है, जो बहुत ही मशहूर जमाना सॉन्ग है, बा मुझको झुलाओ ना झूला। तो इस ट्रैक को सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा बिल्कुल जनाब, क्योंकि हम आपके साथ हैं 7 बजे तक। तो हमें छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि आज मदर्स डे स्पेशल है और यकीनी तौर पर तमाम जो लोग हैं हमारे साथ वो यही चाहते हैं कि अपनी माओं को ट्रिब्यूट पेश करें और हमारे साथ रहकर आप अपनी माओं को डेडिकेशन कर सकते हैं, शायरी पढ़ सकते हैं, उनके बारे में हमें बता

0: जी जनो वेलकम बैक हमाम उसको जलाओ ना झूला, क्या बात है, बहुत प्यारा सा और बहुत जबरदस्त सा ट्रैक हमने आपके समातों की नजर किया चुके हैं, यकीनी तौर पर आपको बहुत पसंद आया होगा। 5:23 टाइम इज राइट नाउ, माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और जनाब माएँ जो हैं वो कुदरत का एक हसीन तोहफा है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। दोस्तों अगर देखा जाए तो माओ के लिए एक दिन की याद आवरी कोई मायने नहीं रखती। माँ तो माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके लिए हर पल, हर साथ, हर रोज और हर बरस मुकद्दस होना चाहिए। माँ की शख्सियत यादगारी दिनों या त्योहारों की मोहताज है ही नहीं जनाब। हम हर दिन अपनी माँ के नाम करें तो ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो ही ज्यादा बेटर होता है, तो ही जबरदस्त होता है। तो बिल्कुल जनाब माओ की कभी भी नाफरमानी ना करें और अपनी माओ की हमेशा कदर करें। लेते हैं शो की पहली कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन आ चुके हैं। जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन हमारे साथ जनाब? जवार मोहम्मद बचल शंबानी साहब, तव्हांखे हैप्पी मदर्स डे। ऐं तव्हां अॼु जो ॾिहाड़ो कीअं था गुज़ारियो ऐं पंहिंजी अमर जे लाइ तव्हां छा चवण चाहींदव?
1: कुझु सर कलाम चंद जे अमर जे बारे में।
0: जी जी बिल्कुल, ॿुधायो ॿुधायो।
1: जबरदस्त
0: जबरदस्त ओ अमा ओ मां तुते सदको थिया मुंहिंजी मिठड़ी अमा। त बिल्कुल जनाब बिल्कुल बिल्कुल हींअर मुंहिंजी प्लेलिस्ट में लॻल आहे इहो सॉन्ग ऐं तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। पर तव्हां उन्हनि औलादनि खे छा चवणु चाहियो था जेको माउ जी कदुरी कोन था कयनि ऐं माउ जी नाफ़रमानी था कयनि? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही था चओ त उहा जेको माउ पीउ जी क़दर न कंदा आहिनि, स्पेशली माउ जी क़दर न कंदा आहिनि, त उहे हर जहान में ख़्वार थींदा आहिनि ऐं उन्हनि खे कोई बि शइ नसीब न थींदी आहे। बिल्कुल बिल्कुल। त तव्हां इहो गानो अॼु पंहिंजी मदर खे डेडिकेट कयो आहे, तव्हां पोएट्री बि डेडिकेट कई आहे। थैंक यू सो मच ज़वार बचल शाह संबानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जनाब माँ की बात कर रहे हैं तो दुआ को हाथ उठाए हुए लरसता हूँ, दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ, कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए। तो जनाब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, मुझे प्यारा मीठा भाग के रसा समरी संगत। सॉरी तव्हांजी आवाज़ सही न पई अचे, केर पिया ॻाल्हायो? गोठ वलीदात खां। तव्हांजी आवाज़ सही न पई अचे अदा, हमें कॉल कर सकते हैं पर आप वहां पे खड़ी हुई जहां पे आपकी आवाज बहुत क्लियर आए, क्योंकि मैं यहां से हेलो हेलो करते रहता हूं, वहां पे से हाय हाय करते रहते हैं, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आती है। लेते शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, क्योंकि हम आपके साथ शाम के 7 बजे तक हैं और हमारे साथ बहुत से लोग आ रहे हैं जनाब। और कॉल कीजिए हमें, आज मदर्स डे है, अपनी माओं को ट्रिब्यूट पेश कीजिए, क्योंकि आज का दिन जो होता है वो स्पेशली तौर पे माओं के नाम है। आई लव यू माँ शो है, आशफाक आपके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कौन हमारे साथ, कह रहे हैं सबली सागर साहब?
2: हाफिज लखवी फ्रॉम मोरो।
0: हाफिज लखवी फ्रॉम मोरो, मोरो वाला सब साथी की है नदाब? बिल्कुल बिल्कुल। ऐं मदर जे हवाले सां छा चवणु चाहियो थो? माउ जहिड़ी मिठड़ी हस्ती जे बारे में तव्हां अॼु छा चवणु चाहियो था, छो त अॼु माउनि जो आलमी ॾींहुं मल्हायो पियो वञे?
2: ਸਰ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਵੱਲ ਸਾਈ ਉਹ ਚਵਣ ਚਾਹਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਮਾਂ ਵਟ ਮਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਨ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਂ ਨਾ ਆਏ ਛੋ ਜੇ ਮਾਂ ਜੇ ਪੇਰਨ ਹੇਠਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਜਨਤ ਰੱਖੀ ਆਏ ਜੇ ਵਟ ਮਾਂ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਦਰ ਹੁਣ ਖਾਂ ਪੁੱਛੋ ਅਗਰ ਜੇ ਵਟ ਆਏ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਬਿਰਾਦੀ ਨੂੰ ਆਈ ਮਦੀਨਿਆ ਰੁਸ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਦੀ
0: ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਵਾਂ ਸਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਕਈ ਆਏ
2: ਆਈ ਐਸਾ ਜਾ ਦੋਸਤ ਆਇਨ ਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਟਰੋ ਜ਼ੋਕ ਬੁਲਾਇਓ
0: ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
2: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੁਧਾਇਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਜੋ ਮਾਂ ਓ ਮਿਠੜੀਆ ਮਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ ਫਰੋਮ ਮੋਰੋ ਜਹਾਂ ਕਹੀਂ ਪਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤੋ ਕੋ ਹਮ ਯਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹਮੇਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਪੇ ਜੋ ਹੈ 03000138 ਲੇਤੇ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕੀ ਇੱਕ ਔਰ ਕਾਲ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ
3: ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜਲੂਰੀ ਖਾਨ ਖਾਲਕ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
0: ਜਲੂਰੀ ਖਾਨ ਖਾਲਕ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਏ ਹੋ
3: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ
0: ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک مزے میں اج مدرس جو عالمی ڈی ملائے پہ ونے ماؤن جو عالمی ڈی بنائے پہ ونے ان حوالے سا تاجا چھا تاثر آتا ہے
3: یہ تا ما جو رشتہ کیڑو ہے جن کے اللہ سائی تے اڑو رتبوڑی نو ائے تے من جنت ما جے پیرنے تا ہے
0: بالکل ما جے پیرنے تا ہے جو تا ما جڑی اسا جاوندا ایوں تا پو اسا کے ان وقت کھا وٹھی کرے اسا جوان تھی ویندا ایوں پو بھی اسا جی خدمت میں کوئی کسر نہ چدی جی جی بالکل بالکل ہر مرحلے تے ہر موڑ تے اساں جی رہنمائی کندی ہے اساں کے سیف کندی ہے
3: جی ہاں بالکل بابا
0: ہاں تے کدی تواں پانی ماں ساں بس کھلے عام مطلب پیار جو اظہار کیو کدی کدی کوئی مانو شائے ہوندا ہیں مطلب چوندا ہیں مکے شرم دی اچ پانی ماں کے آئی لو یو چون لائے یا پانی دل جی گال بدھائن لائے تواں کی کدی یہ تھیو یا تواں دل کھولے پانی ماں ساں پیار جو اظہار کندا ہو
3: ادا اساں دسن پانی ماں ساں
0: حیات حیات رکھے اچھا ممتاز لاشاری پلے کندم کہ نال کرنا چاہو
3: جی ادا سنوار ہے عزیز سولنگی ہے قربان علی خاص کے لیے غلام رسول مری ہے یار ممن سولنگی ہے غلام ادر سولنگی ہے
0: ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ تھینک یو مہربانی جی جناب ہمارے ساتھ ضروری سے بہت پیارے سے دوست اب ہم پلے کرتے ہیں غدت کمرشل بریک اب ہمارے ساتھ رہے گا اور کہیں مت جائے گا
4: It's 5:30 p.m. This soundtrack is brought to you by
5: Heme Diamond Glow Bleach Cream Kudrati Jizan Sa Tayar Kayal Jekade Kudrati Nikhar Saaf Naram Ai Roshan Chehro Heme Diamond Glow Bleach Cream
6: Amma, hey, do you want to get
7: chamilio? Chamilio, putra?

0: महसूस।
1: असाय पानी साफ ना है तेंजे करी त सब बीमार त थियो। असा के पानी ए सफाई बिनन जो ख्याल रखन गुरजे।
2: केडो सयानो पुत्रा मुंजो
1: बाबा इयो ही जासूस तांगे बचाइंदो।
3: साफ पानी महफूज जिंदगी दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारू ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
8: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
9: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
8: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क
2: यहाँ से जो तालीम और तरबियत उसे मिलती है वो इसे कब्र तक अपने साथ लेकर चले कि अवलीन तरबियत या अपने बच्चों की अपनी अवलीन तरबियत में माँ का बहुत किरदार अच्छा जबरदस्त होता है, क्योंकि जनाब जब माँ तरबियत करती है तो जनाब पूरी नस्लें ही संवर जाती है। तो इसीलिए जनाब माँ की कदर करें और माँ जो कहे जनाब माँ की बात माने, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत फैसले नहीं करती। तो बिल्कुल जनाब, पढ़ी लिखी माएँ ही हमारे जो है माशरे में शऊर पैदा करती हैं, और माँ पढ़ी लिखी हो ना हो, लेकिन अगर हमें वैसे भी जनाब हमारी तरबियत करती हैं तो माओं की जो तरबियत होती है ना वो बहुत ज़्यादा मिसाली होती है। लेकिन अगर पढ़ी लिखी माएँ जनाब हमें शऊर देती हैं और जनाब हमें आगे बढ़ने की तगोदो में ऊँच नीच सिखाती हैं, और जनाब माएँ जो है ना वो बहुत ही कीमती तोहफा है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। है जनाब, पढ़ाई से मुझे याद आया, क्योंकि आज अगर हम अपनी बच्चियों को तालीम देंगे, अपनी बेटियों को तालीम देंगे, तो यकीन जानिए कि जो है हमारा जो है मुस्तकबिल संवर जाएगा, हमारा जो है लोग सुधर जाएंगे, हमारी पूरी नस्लें सुधर जाएंगी और परवान चढ़ेंगी। तो बिल्कुल जनाब, इसी हवाले से हम आपको बताते चलें कि साल 2026 के लिए हम आपको यहाँ पर ये दोस्तों बताते चलें कि साल 2026 के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में दाखिले जारी हैं, जिनमें BA, MBA, BS मैनेजमेंट, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स, रियाजियात, शुमारियात, और जनाब DPD फॉर्म, D केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माहौलियाती साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ और एजुकेशन शामिल हैं। बिल्कुल जनाब, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सखर में दाखिले जो है स्टार्ट हो गए हैं, और हम आपको इसी हवाले से बता रहे हैं कि साल 2026 के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में दाखिले जारी हैं, जिनमें BBA, MBA, BS मैनेजमेंट, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स, रियाजी, शुमारियात, DPD, फार्म, D केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माहौलियाती साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज और एजुकेशन शामिल हैं। अगर आप अपनी बेटियों के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाहिशमंद हैं तो ये एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि एक माँ पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है। तालीम याफ्ता औरत एक मजबूत और बाख्तियार माशरे की जमानत होती है, लिहाजा देर न करें, आज ही बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सखर में दाखिला लें और अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाए, क्योंकि एक पढ़ी लिखी माँ जो होती है वो नस्लें सवार देती है। तो जनाब नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी में जाएं और अपनी बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आज ही अपनी बच्चियों का दाखिला करवाएं। बहुत ज़बरदस्त से कोर्सेज आए हुए हैं, उसमें दाखिला करवा के अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल को रोशन बनाएं। तो जनाब माओं का आलमी दिन अशफाक आपके साथ, लेते हैं शो की एक और कॉल। हमारे कॉलर्स जनाब बड़ी ही देर से वेट करें। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम सर जी, कैसे हैं आप?
3: फर्स्ट क्लास।
2: ये बताएं क्या हो रहा है?
3: अल्लाह का करम है, आपको बताया था ना मैंने।
2: क्या बताया था मुझे आपने?
3: BS का कोर्स कर रहे हैं।
2: माशाल्लाह। तो BS का कोर्स कर रहे हैं। ये बताइए कि आज मदर्स डे है, तो आप हमारे तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपनी मदर को स्पेशली तौर पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
3: जी सर, ये तो हमारे लिए खुशी की खबर है कि आज हमारे जो है ना सब जो भी है सबकी मांग है, उनका आलमी दिन जो मनाया जा रहा है
2: जनाब,
3: और आपको भी हम वेलकम करते हैं। आज आपका शो सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। आज अमी के दिन के आलमी दिन के पर बात करेंगे।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं।
3: तो ये जो माएँ होती हैं तो ये रहमत का एक खजाना होता है।
2: बिल्कुल स्पेशली,
3: और इंसान को जो है ना इसका कदर करना चाहिए, और जिसके पास नहीं तो मालूम है तो क्या माँ क्या चीज है,
2: माँ क्या चीज है। माँ बहुत अनमोल तोहफा है हम सब के लिए,
3: और जो माँ है ना ये जन्नत का एक मतलब एक जन्नत है,
2: जन्नत की छांव है, पूरी जन्नत है।
3: तो एक बाप जो है ना वो जन्नत की कुंजी है।
2: बिल्कुल जनाब बिल्कुल।
3: तो जन्नत का हम कदर करेंगे और जन्नत की कुंजी का ख्याल रखेंगे तो हम जन्नत में जरूर जाएंगे।
2: जन्नत में जाएंगे बिल्कुल जनाब, और माँ की कदर करनी चाहिए ना। कुछ लोग नाफरमान होते हैं,
3: स्पेशली जो है ना हम आपको बताएंगे आज के FM 88 जो भी सुन रहे हैं सब तमाम लिसनर को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जो है ना बुरे वक्त में जब शामिल होते हैं, जब बुरा वक्त आपको वेलकम करता है, तो जो लोग होते हैं ना अपने तो आपको वो पहचानते नहीं है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो वो वक्त होता है अम्मी और अबू का जो आपके साथ खड़े होते हैं, और जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते,
2: कभी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि ये प्योर रिश्ते हैं ना, ये किसी भी बगैर किसी लालच के हमारे साथ होते हैं।
3: ये हमारे लिए हमारे खुशी में भी ये शामिल होते हैं, दुख में भी शामिल होते हैं, हमारी हर चीज में ये शामिल होते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो ये हमसे बाहर कभी नहीं जाते,
2: कभी भी नहीं जाते वाकई।
3: और हम भी उनका इतना ही ख्याल रखेंगे वो जितना हमें रखते हैं,
2: जितना हम उनका कोई कर्ज उतार तो नहीं सकते ना, कि जितना वो ख्याल रख सकते हैं औलाद कभी भी उस हद तक ख्याल नहीं रख सकती, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें।
3: लेकिन सुनो ना भाई, ये बात सुनो मेरी।
2: जी जी जी सुनाए।
3: लेकिन हमें एहसास होना चाहिए ना।
2: बिल्कुल एहसास होना चाहिए, अगर एहसास है तो हम इंसान है ना, अगर हमें एहसास ही नहीं तो फिर हम इंसान किस चीज के हैं।
3: वो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों में और जानवरों में पहचान के लिए ये बात रखी है, जिसके पास एहसास और इंसानियत है ना वो इंसान इंसान है, अगर जिसके पास ये दोनों चीज नहीं है वो इंसान जानवर है।
2: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
3: तो आज ये दिन जो है हमारे लिए स्पेशली है, और हम आपको भी वेलकम करते हैं। आज हमें बहुत खुशी हुई, और जुमे वाला जो दिन था ना, हम आपका शो तो सुन रहे हैं लेकिन कुछ मजबूरी थी जो हम आपका शो नहीं सुन पाए।
2: अच्छा, तो आपने दिल से दुआ की थी और फिर दिल से मुझे याद किया, तो देखे मैंने अचानक से एक प्रोग्राम क्रिएट हो गया और मैं आपके साथ आ गया।
3: तो आज हमारी एक फरमाइश बनती है, लेकिन अगर आप प्ले करें तो
2: मैंने अभी गाना लगाया हुआ है, कब से वो चलाया नहीं है, माँ ओ मिठड़ी माँ बाय मुमताज लाशारी, तो वो गाना सुनवाने जा रहा हूँ, आप अपनी फरमाइश बता दे मुझे तो इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करता हूँ।
3: सर ये अब्रफ मक्सी का गाना है, अब्रफ मक्सी का।
2: जी जी।
3: खाली तबाही थे पर इश्क ने कर दो।
2: अच्छा, तबाही भले थे इश्क ने चढ़ चो। सही है, पांच इरादे ने मन को मजबूत हो जन खपे।
3: जी हाँ बिल्कुल।
2: सही है सही, कहेंगे डेडिकेट कंदाओ।
3: सर ये मुझे प्यारो दोस्त नमस्कार लंड दोस्त आयो हाफि लक्ष्मी रिमी साहब।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही।
3: जवाहर मोहन बच्चन छबानी।
2: ठीक है,
3: वालेकुम
2: अस्सलाम, थैंक यू सो मच अदा पांचो, खास ख्याल रखिए। ओके ओके ओके ओके, हम चलते हैं जनाब एक अदद कमर्शियल ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक अदद जबरदस्त सा गाना आपके लिए प्ले करेंगे। तो आप सुनते रहिए GFM 88 नेटवर्क से, आपका अपना शो है जनाब आई लव यू मां विद अशफाक नियाज़ी।
4: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
0: फातिह मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
4: GFM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।
5: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी, मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
6: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो, है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा, कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो, पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो, है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीए हुजे हीरो, है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
7: किरु शौक हो ना तोखे मुझे रो पाए तैयार थियण जो,
8: तू आज भी हसी,
7: थोरो पाए तो रेखार
9: ना। मां मां थकी पई आहां।
7: न पुट, ही थक ना है, रत जी कमी आहे, दिस त केडो ना फिको थी वयो है तुंजो चेहरो।
9: छा कया मां,
7: 6 महीना थी वयन पुट, तू उम्मीद साही अई हाणे वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी, कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट, तोखे खबर है असा त मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ सी, उनन साई त खून ठांदो है, इन सा न तोखे कुछ थिंदो अ नई बार रखे। पुट हाणे तू मां थण वाली आही, पहंजो ख्याल रखन बियन खां प वधिक जरूरी है।
8: मेरी बातें तेरे जिम्मे, अब ये तुझको निभानी है।
10: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तव्हां ट्यून कयो आहे, तव्हां सभिनी दोस्तनि सां गॾु आहे अशफाक नियाज़ी ऐं जनाब तव्हां असांखे कॉल बि करे सघो था असांजे नंबर ते वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल नंबर बि तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त नंबर छा आहे 03000113488 ते तव्हां असांखे कॉल करे सघो था ऐं पंहिंजे जज़्बात पंहिंजे अहसासात पंहिंजी माण्हुनि जे हवाले सां असां सभिनी सां शेयर करे सघो था छो त जनाब इहा अॼु जो ॾींहुं जेको आहे तमामु घणो ज़बरदस्त ॾींहुं आहे छो त अॼु जो ॾींहुं असां पंहिंजे माण्हुनि जे ट्रिब्यूट पेश कंदा आहियूं ॿारनि खे बिल्कुलु जनाब ऐं उहे त असांखे हर ॾींहुं ट्रिब्यूट पेश करणु खपे असांखे हर ॾींहुं जेको आहे न पंहिंजी ॿारनि जे नाले करणु खपे ऐं उनखे माना ईअं फील करणु खपे त उहा असांजी ज़िंदगी जी वाहिद उहा ख़ातून आहे जेका असांजे दिलि जी राणी आहे बिल्कुलु जनाब ऐं असांजी ज़िंदगी जी मालिक आहे त बिल्कुलु इहो हिकिड़ो ॾींहुं न पर हर ॾींहुं असांखे इहो ई पंहिंजी ॿारनि खे फील करणु खपे त उहा असांजी ज़िंदगीअ जी कर्ता धर्ता आहिनि उहा असांजी ज़िंदगीअ जी मालिक आहिनि ऐं उन खां अलावा जेको आहे असां जेको आहे असांजी दुनिया सुनी सुनी आहे त बिल्कुलु जनाब पंहिंजी माण्हुनि खे ट्रिब्यूट पेश कयो उनजे लाइ कोई शायरी आहे त प्लीज़ अची करे मूंसां शायरी बि उनजे नज़र कयो ऐं कोई गानो आहे त तव्हां गानो बि गुनगुनाए सघो था कोई मैसेज पंहिंजी मदर खे ॾियणु चाहियो था त जल्दी सां अचो 03000113488 असांजो नंबर आहे टाइम इंतिहाई शॉर्ट आहे पर असां तव्हां सां गॾु आहियूं पंहिंजी खां सते ताईं हिन कलाक जो टाइम जेको आहे ख़तमु थियण वारो आहे छो त इन कलाक खे पूरो थियण खां असां बि कोन था रोके सघूं बिल्कुलु जनाब किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुख आया मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई तो बिल्कुल जनाब जो हमारी माएँ होती हैं वो हमारी ज़िंदगी का सरमाया होती हैं और मैंने जैसे पहले ही कहा कि एक पढ़ी लिखी माँ जो होती है वो नस्लें संवार देती है और नस्लें जब संवर जाती हैं तो कौमें सुधर जाती हैं लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम कौन हमारे साथ जनाब इतनी जल्दी में मोहम्मद ताहिर लुंड साहब थोड़ी ब्रेकों पे पांव रखें और मुझे बताइए कि आज जो है मदर्स डे मनाया जा रहा है तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे
1: जी बिल्कुल हमारी जो पहली हमारी होती है वो आज बहुत होती है और हमें चाहिए कि हम अपनी माओ की इज्जत करें ना उनके जो है ना तालियां और उन्हें
0: बिल्कुल घट बद नहीं ॻाल्हायूं अच्छा तव्हां इहो ॿुधायो त अॼु जो ॾींहुं जेको आहे तव्हां पंहिंजी माउ खे कीअं स्पेशल फील करायो आहे कोई तव्हां उनखे गिफ्ट ॾिनो आहे तव्हां उनखे किथे घुमाइण फिराइण या खाराइण वठी विया आहियो या न बसि ईअं ई बसि ज़बानी कलामी हैप्पी मदर्स डे ममा बसि तव्हां पंहिंजी मदर खे कोई गिफ्ट ॾिनो आहे किथे घुमाइण फिराइण वठी विया आहियो पंहिंजी मदर खे अचो भला अचो पर हाणे तव्हां फारिग थिया आहियो त पंहिंजी मदर खे स्पेशल फील करायो हुनखे किथे वठी वञो घुमाइण लाइ खाराइण लाइ कंहिं सुठे होटल ते ऐं उनखे ॿुधायो त तव्हां हुन सां केतिरो प्यार कंदा आहियो बिल्कुलु तव्हां वठी वञो छो त असांजी माउनि जेका आहिनि तमामु घणियूं असांजे लाइ अहमियत जी हामिल हूंदियूं आहिनि छो त असांखे नंढपिण खां ई जवानी ताईं असांजो ख़ासि ख़्यालु रखंदियूं आहिनि असांजी हर शइ जो ख़ासि ख़्यालु रखंदियूं आहिनि त असां ते बि फर्ज़ु आहे त हुननि जो ख़ासि ख़्यालु रखूं बिल्कुलु बिल्कुलु जॾहिं सभु कुझु सम्झो था त पोइ हिनखे स्पेशल फील छो नथा करायो पंहिंजी माउनि खे अदा
1: जी जी साईं बिल्कुलु
0: हा त तमामु माण्हुनि खे तमामु दोस्तनि खे छा मैसेज ॾियणु चाहियो था
1: सभिनी दोस्तनि खे मैसेज ॾींदासीं त हुननि खे जेको आहे सो हुननि जी इज़त कनि हुननि खे घटि वधि न कंदा आहिनि ऐं हुननि खे जेको आहे सो ख़्यालु रखनि
0: बिल्कुलु ख़्यालु रखनि थैंक यू सो मच अदा ताहिर साहब पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो
1: ऐं कुझु दोस्त आहिनि साईं
0: हा हा बिल्कुलु शामिल कयो हो जाती है और आज की गर्मा गर्मी है लेकिन आपका ठंडा ठार सा शो हम आपके लिए लेकर आए हैं आई लव यू मॉम मदर्स डे के स्पेशल मौके पर तो आप हमारे साथ रहिए आप चलते हैं जनाब एक अदद ब्रेक के जाने ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं आपके शो आई लव यू मॉम में तो सुनिए और सुनते रहिए जी एफ एम एच नेटवर्क से आपका अपना शो विद अशफाक नियाज़ी
2: It's 6 PM this time check is brought to you by
3: jadan maa panjo khyal rakhandi aahe ta sehat naslan tai halandi aahe hi pegham kash foundation and canadian government je tarfa pesh kayo vyo
4: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
5: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا

0: FM 88 की आवाज,
1: GA FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GA FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में दाखिला जो ऐलान साल 2026 लाए, दाखिलाओं जारी आहिन मुख्तलिफ शोबन में BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई फिजिक्स, रियाजी ऐं शुमारियात जहिड़ा अहम प्रोग्राम्स, ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, BEd 4 साला, MS एजुकेशन 2 साला, मुस्तहक शागिर्दियाण लाइ स्कॉलरशिप्स भी मौजूद, एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन घट में घट 50% मार्कू इंटरव्यू।

0: 2001, 2008, 2016 और 2019 के नाम वाकयात यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान माजी में भी इल्जाम तराशी, मुबालगा आराई, जंगी जुनून और महदूद जाहिरियत के गुमराह तसव्वुर के जरिए पाकिस्तान पर नाजायज जंग मुसल्लत करने और ताकत के ज़ोन में तंग नजर और क़लील मुद्दती सियासी वाली मकासिद हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मारवाए हक महज दो ममालिक या वाक के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग न थी बल्कि दर हकीकत ये दो नज़रियात के दरमियान एक फैसलन मुआका था जिसमें अरे अल्लाह फजल से हक फतायाब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की इमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और अमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे।
1: हक वारी जंग रुगो बिन मुल्कन न पर बिन नजरियन में फैसलाइती जंग हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो ऑपरेशन बुनान मरसूस की कामयाबी के साल पूरो थियण ते जीएचक्यू में कोठायल तकरीब के खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त 7 खां 10 मई ताईं दुश्मन असांजी कौमी वकार के आज़माइण की नाकाम कोशिश कई। दुश्मन ॼाणे वठे त पाकिस्तान खिलाफ़ अगराई जा असर इंतहाई ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा। भारत जो पाकिस्तान के सफारती अकेलाई जो निशानो बणाए खिते में ताकत जो तवाज़ुन तब्दील करण वारो ख्वाब संदसि कद ऐं सलाहियत खां घणो वधीक आहे। पाक फिज़ाइया जे शाहीननि दुश्मन जी 26 खां वधीक फ़ौजी हदफ़नि खे कामयाबी सां निशानो बणायो। अवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी, सरहदी सलामती ऐं क़ौमी वकार ते को बि ठाह क़बूलण जोॻो नाहे।

भारत खिलाफ़ ऑपरेशन हक जी जंग जी कामयाबी के एक साल मुकम्मल थियण ते सदर आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो क़ौम खे ऐं पाक फ़ौज खे वाधायूं। सदर ज़रदारी चयो त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी क़यादत में पाक फ़ौज दुश्मन खे मुंह तोड़ जवाब ॾिनो। भारत जी गैर क़ानूनी कब्ज़े हेठि वालारियल कश्मीर जो मसलो ठहराइण मुताबिक़ हल थियणु घुरिजे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त दुश्मन ख़िलाफ़ कामयाबीअ ते अलाह ताला जी बेशुमार नियामतुनि ऐं अहसाननि लाइ सजदो करण जो ॾींहुं आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: किरु शोक हो ना तो खे मुझे रो पाए तैयार थे जो
2: तू आज भी हसी
1: थोड़ो पाए तो रेखार
3: ना माँ मा थकी पई आया
1: ना पुटा ही थकन है रत जी कमी है दिसता केडो ना फिको थी हुआ है तुझो चेहरो
3: छा कया माँ
1: छह महीना थी वे इन पुटा तू उम्मीद से आई आई हाने वने तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट तोखे खबर है असा त मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ से उनन साई त खून ठांदो है इनसा न तोखे कुछ थिंदो अ नई बार के पुट हाने तू मां थण वाली आही बहजो ख्याल रखन बेन खांप वधिक जरूरी है
2: मेरी बातें तेरे जिम्मे अब ये तुझको निभानी है
4: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी है त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफां पेश कयो वयो।
5: छा अहां जो चेहरो बेजान ए डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम ए रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
6: हाँ हैरत अंगेज ए जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज सा कुदरती शिफा हासिल करियो सेहत ए तंदुरुस्ती जी नई राह ते गामजन थियो तपोए देर छो अवां जे पांजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो ए जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल जी तकलीफ है अधमथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सबनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे खां शाम 5 वगे ताई बरोज जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण वधिक मशोरे ए जिलाए 0327-99-84-763।
7: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हेलो वर्णा, खबर ना है मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला छोड़ दिया है।
1: It's 6:15 PM.
2: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz. A product by Biocon International Pakistan.
0: Hello Varna, khabar na hai main har waqt teri thakela thakela shoon diya hai.
3: Tu khaindi chahe. स्कूल में बाकी बार अंजी मंझंजी मानी डिठिया है
4: सोच

0: नाचे ने तताओ ने के रोज अंडा खा रहे जो मंझन जी मानी में सूफे दी जो तजियो स्कूल में मुहागुर थकेलो थकेला ना हो जे
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी غذائی जुजन जी घटताई हुंदी आहे जेका उनन जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणजे थी ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: बहजो शहर बहजो घर सकरंट ए सकरंट जो आवाज
3: जी एफ एम 90.8

0: बिल्कुल बिल्कुल अज जेतरी भी असा जै भी मंजिल चाहूँ तो उनमें असा मदर जो किरदार तमाम घणो अहम है बिल्कुल अगर वो न हो जाए तो असा कड़े भी कम ज ना हो जाऊँ हाँ जी जी
1: तो उन्होंने को पछा के तो उन्होंने दिल में शाह गुजरे तो
0: सही सही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: अमर से वही सही सही आ दिए जो दुआ रात के दुआ में ये करे जो दुआ तो मैंने तुम उन्होंने खिदमत कर दे ना को दुआ वाला
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल तमाम सही चाहिए हुआ तमाम बिल्कुल सही चाहिए हुआ दा जैको बाद वारा मेरा मुझा प्यारा भा यो बुधायो त हाने मा गानो बुधाण वारो आया मा जे हवाले सा के जे नारा था करना चाहो
1: ते सब को पेर आवाज नाले हो जे गानो
0: जी जी
1: मैं चारो दो तंदर दर्शन रखो थोड़ा बुदे दो लखवान पाचड़ बुदे दो भोती दुकान शामिल पाचड़ बुदे दो तनी आकल का मैंने तेरी चारो दोस्त आशार दारू का बुदे दो मैं गुलाम भी पाचड़
0: जी जी
1: मुझे नंदो से चाग बुदे दो मुजम्मल भी पाचड़
0: मुजम्मल भाप मुजम्मल प्यारा बेटा की आयो ठीक ठाक है हो खुश आयो केड़ी क्लास में पढ़दो आ
1: कहीं पढ़दो ना है नंदो आ कौन साला जो नालो नन्ने तो मां थोड़ो बारे
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनके पढ़ायो सुठी तरबियत कयो आई एक भलो इंसान जी तहां पान आयो इहे ठायो
1: बिल्कुल
0: हां थैंक यू शरीफ भाई थैंक यू पांजो खास कर थैंक यू सो मच दीजिए ना हमारे साथ जगह बासी शरीफ भाई आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर और जनाब आज मदर्स डे के वाले से अपनी माओ को पैगाम दें अपने प्यार का इजहार करें अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: जी वफीद वहीद वफाई आई थिंक
2: जीजल उहा शइ आहे जेका तूं अधु राति मंझ राति ईंदी पर हूअ नेरनि झलियूं बीठी हूंदी त मां बचू अचे त मां खाधो
0: खावायांसि
2: काथे भी तू कुंड कहिड़ी बि तलाश कंदी त मां जहिड़ी ॿी अज़मत शइ न मिली सघंदी
0: मिलंदी कोन बिल्कुलु वाकई
2: बिल्कुलु ऐं हिकु ॻाल्हि माउ जेतर आहे त द्वार जा दर खुलियल आहिनि माउ जंहिं महिल हिन दुनिया मां वञी थी त द्वार जा दर पोइ इश्फाक भाई सम्झ बंदि थी विया
0: हा ईअं बि हूंदो आहे पर मां त हमेशा चवंदा आहिनि त मां अगरि हली बि वेंदी आहे त उहो पंहिंजे बचनि लाइ हमेशह दुआ कंदी आहे
2: उहा त दुआ कंदी आहे पर हिकिड़ो त बि साईं फ़र्क़ु आहे
0: बिल्कुलु
2: असां इहो चवणु चाहींदासीं
0: जी
2: त जेके बि मां मैसेज ॾींदुमि न तव्हांजे चैनल जे थ्रू जेके बि अमृनारा आहिनि जंहिंजी ज़िंदा आहिनि जा मरी वियूं आहिनि त बि उते बाबा वञनि फाता कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: ज़िंदा आहिनि त उन सां मुंहिंजी इहा ई रुकेश आहे हथ ॿधी अपील थो कयां त पंहिंजे अमड़ियुनि जो ख़्यालु कयो
0: बिल्कुल
2: अमड़ियुनि खे निगहबानी कयो
0: उन्हनि
2: खे चङो खाधो चङो माना उनजी निगहबानी मक़सदु उन में सभु कुझु अची वियो
0: बिल्कुलु जीअं उन्हनि असांजो नंढे हूंदे खां वॾे हूंदे ताईं ख़्यालु रखियो आहे त उन खां वधीक असां उन्हनि जो ख़्यालु रखियूं
2: बिल्कुलु हाणे अॼुकल्ह अक्सर त इहो बि हली रहियो आहे दुनिया में त अॼु अहमियत अमड़ खे घटि था ॾियनि पियो खे
0: बिल्कुलु
2: बसि हाणे असां त वधीक न चवंदासीं
0: हा बिल्कुलु तमामु दोस्तनि खां रिक्वेस्ट आहे की पंहिंजी पीउ माउ खे क़दुरु कयो उन्हनि खे उहा फैसिलिटेट कयो जीअं उन्हनि तव्हांखे फैसिलिटेट कयो
2: इहो तव्हां हले जो जीजल जे मनसब सां मनताज़ लाशारे त जीजल अमा ज़ोर आहे ॿिया बि रिश्ता कनि इहो हलाईंदा त महिरबानी
0: बिल्कुलु मुंहिंजी लिस्ट में आहे इहो गानो मां ज़रूरु हलाईंदुमि तव्हां दिलि जाइ कयो
2: बाक़ी इहो हे सॼो प्रोग्राम भाई इश्फाक पंहिंजे नाले
0: थैंक यू सो मच
2: हेॾो आहे भाणी जो मुंहिंजो रफ़ी कुझु
0: पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो थैंक यू जी जनाब हमारे साथ वहीद वफा जतोई फ्रॉम सखर और मदर डे के हवाले से उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें की देखते हैं कि अब हमारे साथ अच्छी बातें करने कौन आ चुके हैं अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल बिल्कुल
3: तो मुझे लाए जन्नत आए
0: वाह वाह
3: तो मुझे लाए रहमत आए और मुझे श्री अमा
0: वाह वाह वाह वाह
3: तो सवा ये दुनिया अधूरी
0: वाह
3: तो सवा ये दुनिया अधूरी मुझी जिंदगी यहाँ पूरी
0: वो
3: मुझी मिट्टी अमा
0: वाह वाह वाह वाह
3: मुझे खिदमत करे मां जन्नत कमाईंदुसि
0: वाह
3: मुझे खिदमत करे मां जन्नत कमाईंदुसि तुंहिंजा पेर धोई मां पीअंदुसि
0: वाह वाह,
3: ओ मुझी मिठड़ी अमा,
0: ओ मुझी मिठड़ी अमा, ओ मुझी मिठड़ी अमा। तो बिल्कुल जनाब, ये शायरी भी आई है, तमा पांजी वाकी पांजी मदर जी खिदमत भी कंदा आयो, उनके फैसिलिटेट उही कंदा आयो जे उन नंढे हुंदे तमा के कयो।
3: बिल्कुल, जो इंसान होता है वो हमने को जो साहब खिदमत क्यों था पर होता है हमने वो खिदमत का साखन अदा करे से
0: हां
3: वाकियो बदान तो ये को ने आज हाल है।
0: जी जी जी जी,
3: नबी पाक जन जो दौर जो आका अवे करनी नाल एकड़ो नबी पाक जो आशिक हो।
0: जी जी,
3: ये को यमन रा को है।
0: हम्म,
3: तो उन्हें छा कयो जो वो नबी पाक पे अनु विश्वास तो एकड़े ने पांजी भी मां पड़ी हुई है।
0: जी जी,
3: उन्हें का मोकला इतने मां वना तो जो नबी पाक दी ज़ियारत करन मदीने पाक।
0: सही,
3: मां उन्हें के तो बाप मदीने पाक वनी तो पर नबी पाक मस्जिद नबी हमें हुजन तो ज़ियारत करे ना जो ना हुजन तो वापस मोट जा।
0: जी जी,
3: उसे इंतजार न करो।
0: सही,
3: नबी पाक जन मस्जिद नबी हुजन तो उन्हें जो ज़ियारत करे ना जो ना हुजन तो इंतजार न करा तो अरेस्ट करनी होता निकतो आ यमन मुल्क में।
0: सही,
3: जने मदीने पाक पहुंचो उते मस्जिद नबी विवाह उते नबी पाक मौजूद ना है।
0: सही,
3: घड़ी खन भी इंतजार क्यों बने के मां जी गाल याद है के मुखे मां तो नीत होयो।
0: सही, बिल्कुल
3: पाण रोई उते पे रोई करे मां जो नाले के ते अमा पहुंचे करे नबी पाक के छदे मोटां दो तुंजी इज्जत।
0: जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: जब वो मोटी आयो नदी पास मस्जिद नदी में आयो बाबा इकराम को पूछा के हित को मानो आयो मुझे दीदार मार।
0: जी,
3: यो एकड़ो अवेश करने वाला शख्स यमन जो रहा को बुधाए तो वो आयो हो ने ये गाल ही ते क्या वना तो का मुख ही तो।
0: जी,
3: जब वापस मोटी आयो उते मावा से मां के टीम तू जे करे तो चयो पुछल मां त तू नदी पाक जो दीदार करे की न तो जो चयो त नदी पाक मस्जिद नदी में हुजे दीदार करे या मत वापस मोट गए।
0: जी जी,
3: उने दे करे हां मोती आज दीदार मोना के नदी पाक दन से सबर पई कदे नदी पाक ता हजरत अली है हजरत उमर के मोकलो पांजो दिबो मुबारक दे ती मनो फलाण मुल्क में फलाण इलाके में अवे करने वाले एकड़ो शख्स रहंदो आ उन्हें कही मुझे जुबो सलाम दींदो उन्हें के चो तो मुझी उम्मत ला दुआ करे।
0: जी जी,
3: तो जदे उता यमन दे रवाना थे हजरत अली हजरत उमर पुछाइंदा पुछाइंदा यमन दे ला के जे रहंदो हो तो पुछा करे हजी को एकड़ो चढ़ियो आ एकड़ो दीवानो आ जो फलाणी जाए ते उठ चारींदो आ करने नाले वो शख्स।
0: सही सही सही सही,
3: तो जदे उते तो गाओ सुबह मुबारक सांग कर दिनो तने आए उन को उम्मत जे ला दुआ कराई।
0: सही,
4: सोशल मीडिया ते
3: कोई ने मैं बात के मिले तो बस मिले तो तब फरमान करता ला जी कदे खिदमत कदे मन दे जवान दे
0: सही सही सही बिल्कुल बिल्कुल, जो अमर जी वरी शान हुंदी आए उनके असा हमेशा उनके अहमियत देने का कभी पानी जिंदगी का भी वधिक। थैंक यू सो मच अदा ता। जी जी,
3: कदे भी न चजे आदि समय ते तो नबी पाक तन फरमांदा त मां के फोन पे हो जे घर में बाहर केड़ी कीमत चे पई दे।
0: जी जी,
3: तू बाहर उछला छडे वो पुत्र के हक ना है औलाद के हक ना है छोड़ो ए तू चे मां ये अफसोस लाए।
0: हां बिल्कुल बिल्कुल, मां जी परेशान आता, मां जी परेशान आ। थैंक यू अदा, थैंक यू सो मच। जी जी,
3: अहमद मुगलो जो कलाम उठाईंदा जेको अमर जे हवाले सा आहे मूंखे बोलत जी आहे अहमद मुगलो जो।
0: ओके, मां सर्च करे तव्हां जे लाइ प्ले कंदुम इंशाल्लाह।
3: दोस्तन कुझु?
0: जी जी,
3: यार मामल बचल संभाणिया।
0: जी जी,
3: एयरपोर्ट सखर कहां आगे रजबली जोने दो।
0: जी जी,
3: भूरल फकीर बंदरो बंदरो न पर भलो फिकरा किया।
0: ओके ओके अदा, थैंक यू सो मच, पांजो खास ख्याल रखजो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ारा खुशी सालार समय जो, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं ज़ारा खुशी सालार समय जो कश्यप ज़ारा, उनकी फरमाइश पर हम ये गाना जो उन्होंने फरमाइश किया था वो तो हम चला चुके हैं, लेकिन अब हम चला रहे हैं अमर जी जलजोरा, तो सुनिए और हमारे साथ रहिए।

0: at 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Shah Latif ka Sufi thikana.
3: Fatih Mehran, Sindh ki ek aur pehchan.
2: GA FM 88 Network,
3: Sindh ki awaaz.
4: Hello.
5: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
6: सजो डी दिसा थी तो के परेशान घुमती रही हां, पहरो पहरो मां थी रही आही ना मुझो भी इयो ही हाल हो.
7: खबर ना है तो आही सब कुछ किया कियो नानी. मां ता एत्रो थकी थी पवा, छा कयो हो तवा.
8: हो पहले 6 महीने सिर्फ मां का दूध, अब दूध कैसे आए ये जरा पूछ.
7: किए

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजे, बसि इहा ॻाल्हि कम ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
3: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़,
4: GFM 90.8।

0: बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333। ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो
1: यार मचा क्या किथे वन्या।

0: साथ
1: exactly. तो आप अपने तमाम दोस्तों को, कोई सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से?
0: बस यही है कि जितना हो सके अपनी माँ को टाइम दें, क्योंकि हम बोलते हैं ना बाहर टाइम देते हैं दोस्तों को जो भी, और तो हम कहते हैं तो घर ही हो टाइम दे देंगे,
1: क्योंकि ये टाइम फिर दोबारा से नहीं आएगा, हम चाहे लाख कोशिश कर लें।
0: हाँ
1: ठीक ठीक ठीक
0: हम ना भी हमको पता है ना
1: एग्जैक्टली
0: कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ
1: हाँ, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हम माँ को खो देंगे, हम बाप को खो देंगे, हम कभी ये नहीं चाहते ना, हमारा दिल ही नहीं मानता कि हम ऐसा हो भी सकता है
0: अभी तक हमारी माँ

0: हमको कुछ साल हुए ना
1: exactly.
0: मगर अभी तक कैसे पता तो
1: सही.
0: करे हमको रहती है तो सही सही. होता है माँ का प्यार
1: बिल्कुल. तो अब्बास बहुत अच्छी आपसे बातचीत हुई, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा आपके पीछे बैकग्राउंड में कोई गाना, कोई सुरीला सिंगर आया हुआ आई थिंक बाहर मोहल्ले में आपके, या कोई
0: नहीं वो मांगने वाले हैं.
1: अच्छा गधा कर रहे हैं. बड़ी सुरीली आवाज है उनकी बाय द वे. चले ठीक है, थैंक यू अब्बास, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जी जनाब, हमारे साथ अब्बास. और अब टाइम हो जाता है जनाब एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, क्योंकि आपसे टाइम बातें जब करते हैं तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता. चलते हैं एक अदद कमर्शियल ब्रेक की जाने.
2: नौशहरों मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज. जीए एफएम 88 नेटवर्क. छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाने वक्त आहे चमकण जो. है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो. बहरी इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो. है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए होजे हीरो. है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज. हमारे शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 साल जो तजुर्बा.

वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अदाब, थैंक यू। किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं, किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं, टिफिन रखती है मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है। तो जनाब, आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन हमने आपके लिए स्पेशल शो अरेंज किया जिसका नाम था आई लव यू माँ। अशफाक नियाजी आपके साथ रहा 2 घंटे तक। और माओं के आलमी दिन के मौके पर हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वालदैन एक साय की तरह हैं जिनकी ठंडक का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक ये साया सर पर मौजूद रहता है। जो ही ये साया उठ जाता है खुदा न खास्ता, तब हमें एहसास होता है कि हम क्या खो बैठे हैं। आए इस बरस अहद करते हैं कि हम इस अजीम हस्ती को दिलो जान से भरपूर खिदमत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया इसका कुछ फीसदी हक अदा कर सकें। आप अपनी माँ को किसी भी तरीके से यह एहसास दिलाने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों कि आपकी जिंदगी में सबसे खास और मोहतरम हस्ती आपकी माँ ही है। तो माओ की कदर कीजिए जनाब, माँ बहुत अनमोल हस्ती है। अब हम प्ले करते हैं जनाब एक बहुत प्यारा सा ट्रैक, डेडिकेट करते हैं तमाम माओ को। तो इस ट्रैक को सुनिएगा। अशफाक नियाज़ी को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी चलते चलते किसी प्रोग्राम में। तब तक दीजिए इजाजत, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, अल्लाह निगाह।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज हाँ नरम चमक आई साफ जल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिह में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड आई जल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन आई आरबुटिन जेके दिन तुम्हारे चेहरे के कुदरती साफ आई चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे हिक नो ग्लो हिक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचर्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अवां जे शहर सखर में मेदे जा मसला गैस बदहजमी कब्ज खूनी आई बादी बवासीर जनाना बीमार समेत बिन मर्जन जो इलाज करे रहयो आहे रोजाना सुबह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नजद पीएसओ पेट्रोल पंप रेस कोर्स

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघि ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वो है होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत। टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 5 AM तई बरोज जुम्मू मोकल है। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण। वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-99-84-763।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संग दे मां गुलाब खान बेण।

सिंधराउंड अप में अज अवां बुझी सघंदा सिंध सरकार पारां कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾणु हारिन ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीअं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियणु।

आइका मोटरसाइकिल हलाय दणन जलाए सिंध सेल्स टैक्स में छूट जो ऐलान कर छो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में नवाजिशू एक्सीएन जा टे अहम अहदा असिस्टेंट इंजीनियर हवाले कार व्यवहार मुतासर। सिंध में 65 साल बुजुर्ग भी वीसी शिप लाए अहल करार बोर्ड जो भर्तियों सर्च कमेटी हवाले। वडे वजीर पारा कराची के शहरों के ईद जो तोहफो शाहराए भुट्टो ईद के ट्रैफिक के लिए खोलने जो ऐलान। रिथामी देर मयार भी कोताही बर्दाश्त न कबी वजीर आला सिंध। कोट डिजी उमरकोट नौकोट किला आलमी सकाफती विरसे की लिस्ट में शामिल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 के इम्तिहान जा नतीजा जारी कर छा 70 उम्मीदवार कामयाब। स्पेशल रिपोर्ट में अवाम बुझी सकंदा जाली दवाओं जो कारोबार अवाम के जिंदगी से खेलींदड़ निजाम। सिंध सरकार कोटड़ी के हैदराबाद से मिलाने के लिए नई पुल अडण हारिन ट्रांसपोर्टर जहाणन के तेल सब्सिडी डण बाइका मोटरसाइकिल हलाइंदड़न के लिए सिंध सेल टैक्स में छूट जो ऐलान कर छो। काल वाडे वजीर सैद मुराद अली शाह की सदारत हेठ थियल काबीना के इजलास में 30 अरब रुपये की तरक्याती फलाही इसलाही एजेंडा की मंजूरी दिनी वही। इजलास में कराची ठट्टो सजावल बदीन के मोहणन के फौरी माली रिलीफ फराहम करने के लिए 515 मिलियन रुपये जो फ्यूल सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दिनी वही। वडे वजीर चो तो डीजल की वधंदड़ कीमतों सबब मच्छी के शिकार में 20 सैकड़ो घटताई आई है। उन हजारे मोहणन की रोजगार के खतरो पैदा थी वो है। स्कीम तहत 9,634 रजिस्टर्ड बेड़ीन होड़न के 1 लाख तई टारगेटेड मदद फराहम कई वेंदी। इजलास में मोटरसाइकिल मालिकन के मई में भी 2,000 रुपया तेल सब्सिडी देने जो फैसलो कदे 2 अरब रुपया जारी किया वह। इजलास में परगणे में बाइका हलाइंदड़न ते लागू सिंध सेल्स टैक्स 5 का घटाए 2 सैकड़ो करने की मंजूरी दिनी वही। उन गड 120 मिलियन जो फायदो इजलास में वडे वजीर माली कमेटी की सिफारिश से हैदराबाद कोटड़ी विच में सिंधु दरिया से 1.12 किलोमीटर डिघी हाईवे पुल के इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए 147.2 मिलियन रुपये जो कंसल्टेंट सर्विस लाइ ग्रांट की मंजूरी दई छी। वडे वजीर चो तो वह पुल मुल्क के बिन इलाकन दां अच वन के हल्की ए गरी ट्रैफिक के लिए वही सहूलत साबित थी। सिंध काबीना वाइस चांसलर के मुकर्री के लिए उम्र की हद 62 का बधाए 65 साल कर छी जडे त जरूरी तजुर्बे के 15 का बधाए 20 साल किया वो है। जैमें घट में घट 10 HEC जो तस्दीक थल अशातू लाजमी करार दिन व्यून। काबीना सिंध के 7 तालीमी बोर्ड के लिए ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशन 2026 की मंजूरी दिनी जै हेठ चेयरमैन सेक्रेटरी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ऑडिट ऑफिसर जड़ियों पोजिशन हाँ मयारी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी जरिए भर वेंद। नए जबतन तहत चेयरमैन BPS 19-20 के लिए उम्र की हद 40 का 55 साल मुकर्र कई वही है। जै लाए मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन 15 साल जो सीनियर मैनेजमेंट तजुर्बो घुर्बल हों। सिंध के वडे वजीर सैद मुराद अली शाह कराची के अहम तरक्याती रिथाउन जो तफसीली दौरों किया। लागापल अमलदारन के हिदायत कई तो कराची बस रिपिड ट्रांजिट रेड लाइन कॉरिडोर शाहराए भुट्टो पहलवान गोट रोड से कम जो रफ्तार तेज कई वे जडे तो सभी रिथाउन में मयार शफाफियत के यकीनी बनाया वे। वडे वजीर ऐलान किया तो शाहराए भुट्टो के ईद का अग ट्रैफिक लाइ खोलो वो जैसे उन कराची के अवाम के लिए ईद जो तोहफो करार दिनों। वडे वजीर चो तो वसीला मौजूद हाँ मुख्य जमीन से नतीजा नजर अचण घुर्जन कम केतर शिफ्टन में जारी रखो वे तो जी मुकर्र वक्त अंदर मुकम्मल थे शहरों के जल्द रिलीफ मिले। वडे वजीर मौसमियात से फ्लाईओवर जो कम नामुकम्मल ऐसी फौरी तौर से बीहर शुरू करने की हिदायत कई यकीन दियारो तो फंड्स वसीला फराहम कया वा। उन शाहराए भुट्टो शहरांदर ट्रैफिक के दबाव के घटाई M9 N5 शाहराहों के विच में राबते के बेहतर बनाई गरी ट्रैफिक शहर का बाहर मुंतकिल थी वेंदी जैसा कराची के रहवासन के वो रिलीफ मिल।
वर्क्स एंड सर्विस खाते में अंधेर नगरी सूबाई बिल्डिंग डिवीजन कराची में असिस्टेंट इंजीनियर ते नवाजिश सूबाई बिल्डिंग्स डिवीजन जे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वारन टिन पोस्टों ते मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियर के इजाफी चार्जों हवाले थियल एक्सटेन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वारे उहदे ते हिचन ग्रेड जा असिस्टेंट इंजीनियर मुकरर हुजण सबब वहवार रोलड़ जो शिकार बनल है। उन हवाले से मिलियल जान मूजिब वर्क्स खाते के इख्तियार पारा असिस्टेंट इंजीनियर से खास नवाजिश कदे खेन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वारा उहदा इजाफी चार्ज तौर खेन हवाले कया व्या केतर ही महीनों का वक्स खाते पारा एक्सएन वन एक्सएन टू एक्सएन थ्री वाले उहदे ते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मुकरर करण बजाय पांजे मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियर के मथिन उहदन ते मुकरर कयो वियो आहे। उन हवाले से मिलियल मालूमात मूजिब एक्सएन वन वाले उहदे ते असिस्टेंट इंजीनियर वजाहत पाटोली के इजाफी चार्ज मिलियल है जडे एक्सएन टू वाले उहदे ते वरी असिस्टेंट इंजीनियर अब्दुल्ला मस्तोई एक्सएन थ्री के उहदे जे असिस्टेंट इंजीनियर ताहिर खान के इजाफी चार्ज मिलियल है। सिंध सेक्रेटरियट के मुख्तलिफ ब्रेक समेत सरकारी ऑफिसन अस्पतालों बन सरकारी इमारतों में मरम्मती तामीराती कम हलदड़ मनसूबा असिस्टेंट इंजीनियर वक्स हवाले कर सबब समूरो बवार सख्त मुतासर है। जरन वटा मिलियल जान मूजिब तो वक्स खाते में 14 का 19 ताई असिस्टेंट इंजीनियर मथे ग्रेड वे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के उहदे से तरक् माण के इंसार में वेठल है। पर वक्स खाते के अख्तियार पारा जानायल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए चईन महीनों का डीपीसी रोकी वही है जैसे असिस्टेंट इंजीनियर केतर ही महीनों का तरक् मारण का महरूम बनल। सिंध काबीना पारा मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम में वाद कैब सर्विस लाए सेल्स टैक्स में वही घटाई की मंजूरी दई छी है। सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ थियल सूबाई काबीना के इजलास में अवामी सहूलत लाए अहम फैसला कया व्या जैमें पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम के मद में 31 मई 2024 तीन बात कई वही। वे वजीर हिदायत कई तो फ्यूल सब्सिडी के मद में मई महीने के लिए 12 अरब रुपया फौरी तौर जारी कया वन। इजलास दौरान वे वजीर के ब्रीफिंग दीदे बुधा वो तो इन वक्त 5,48,000 मानों के फ्यूल सब्सिडी की अदायगी जारी है जडे तो हिंसर तीन 1.96 अरब रुपया विराया व्या काबीना पारा मोटरसाइकिल कैब सर्विस ऑनलाइन राइडिंग एप्स के लिए सेल्स टैक्स में भी वही घटाई कई वही है। ब्रीफिंग मूजिब काबीना सेल्स टैक्स के 5% में घटाए 2% कर जैसा सालियानो 120 मिलियन रुपये जो माली असर पवंद। वे वजीर मुराद अली शाह जो चवण हो तो इन कदम से ऑनलाइन सर्विस फराहम कदड़ सवे ड्राइवर के सीधो सौ फायद पहुंचो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गडियल चटाभेटी वाले इम्तिहान 2024 के लिखित वे इम्तिहान जा नतीजा जारी कर छिया जैमें 70 उम्मीदवार कामयाब करार दिना व्या। कामयाब उम्मीदवार के हिदायत कई वही है तो 7 दिन के अंदर तालीमी सर्टिफिकेट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में जमा कराएं। बे मरहले में कामयाब उम्मीदवार का इंटरव्यू वरतो वो नतीजन वे नोटिफिकेशन में जाना वो है तो कामयाब ए नाकाम उम्मीदवार जो मार्कू वेबसाइट से रखी व्यून। चटाभेटी के इम्तिहान में 70 उम्मीदवार में सब का कराची जहा 15 उम्मीदवार कामयाब थे जडे तो खैरपुर जिले जहा 6 सखर जहा 4 लाड़कानू 4 होटकी 4 मटियारी 3 उमरकोट 2 थरपारकर 2 ठट्टो 2 जामशोरो 2 दादू 2 बदीन 2 टडो मामन खान 1 सांगड़ 2 नौशर फिरोज 1 उमरकोट 1 कंबर 1 जिकमाबाद जिले जहा 2 कश्मोर जिले जहा भी 1 उम्मीदवार कामयाब थे। पेरे नंबर से थरपारकर जो बशीर एवन सुमरो है जै 610 मार्कू हासिल कयू। सिंध जा 3 तारीखी किला आलमी सकाफती विरसे के फहरस्त में शामिल। यूनेस्को मीरपुर खास के नौकोट किलो खैरपुर जो कोटडीज किले उमरकोट किले के पांजे लिस्ट में शामिल कर छो है। उन हवाले से मिलियल जान मूजिब तो अकवाम मुतहदा के तालीमी साइंसी सकाफती इदारे यूनेस्को सिंध के 3 तारीखी किलन के आलमी सकाफती विरसे में शामिल करने के लिए इब्तदाई लिस्ट में बाजाबा तौर शामिल कर छो है। उन दस में यूनेस्को के पाकिस्तानी नुमाइंदे
नोटिफिकेशन पिण जारी कयो आहे, जंहिं में लाॻापियल इख़्तियारनि खे टिन्ही क़िलनि बाबति आगाही ॾिनी वई आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जे क़दीमी असारनि वारे खाते जे डायरेक्टर जनरल अब्दुल फताह शेख जो चवणु आहे त नओं कोट क़िलो, उमर कोट क़िलो ऐं कोट निजी क़िलो यूनेस्को जे इफ़्तिताही लिस्ट में शामिल थियण बाद टिन्ही माॻनि खे आलमी सतह ते पज़ीराई मिलंदी। हुन चयो त तारीख़ी हंधनि खे हतमी तौर लिस्ट में शामिल करण खां अॻु खेनि इफ़्तिताही फ़हरिस्त में शामिल कयो वेंदो आहे, जंहिं दौरान उन्हनि जी तारीख़ी, सकाफ़ती ऐं साइंसी इतबार खां जाइज़ो वरितो वेंदो आहे।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। मुल्क में वधंदड़ दवाओं की कीमत और जाली दवाओं के कारोबार अवाम की जिंदगी के सख्त खतरे में विझी छोड़ो है। बीमारियों से विरड़ंदड़ गरीब मानू अज दवा खरीद करण की सघ विञाए वेठो है। माहिरन मूजिब दवाओं के अघ में बार बार वाध जो वो सबब हुकूमत पारा कीमतों से कंट्रोल खत्म करण है। अग हुकूमत दवाओं की कीमतों के जब्ते हेठ रखंदी हुई, पर आहिस्ते आहिस्ते दवा साज कंपनियों के मुकमल आजादी मिली वही, जैखा पे दवाओं जो कीमतों केतरा ही भेरा वधियों। नतीजे तौर मरीजन लाए इलाज कराण दुख्यो बनजी वो। गरीब लाए इलाज ख्वाब बनजी वो। अज केतरा ही मरीज पांजे इलाज अध में छड़े रहा है, छाकाण त सदन आमदनी दवाओं के खर्च अगया बेवस बनजी वे थी। केतरा ही वालदेन पांजे बारन की तालीम या घर की जरूरतों से खर्च घटाए दवाओं खरीद करते मजबूर आन। खास तौर से दिल, शुगर, कैंसर और गुर्दन की बीमारियों में इस्तेमाल थन्दड़ दवाओं जो कीमतों आम मानू के बर्दाश्त का बाहर थी व्यू। ड्रिप ते सवालिया निशान। सेहत के शोबे से लागापल माहिरन समाजी हल्कन जो चवण है त दवा साज इदारन की निगरानी कंदड़ इदारे ड्रिप की कारकर्दगी ते सख्त सवाल उठन था। इल्ज़ाम आहिन त कुछ अमलदारन दवा साज कंपनियों से गठजोड़ कर अवामी मुफादन के बदरा कारपोरेट मुफादन के तहफुज़ दई रहा आहिन। जाली दवाओं के कारखानों खिलाफ कार्रवाई महदूद और गैर असरायतू नजर अचन थ। हुकूमत लाए अहम सवाल, जैकड़े रियासत पांजे शहरों के सस्तो इलाज और मयारी दवाओं फराहम नथी कर सके तो पांजे बुनियादी जिम्मेवारी निभाण में नाकाम समझी वी। सेहत कें भी रियासत की बुनियादी जिम्मेवार मां एक है, पर मौजूदा हालतों में लगे तो हुकुमरान लाए अवामी मसलन का अहमियत कारोबारी मफादन के हासिल है। माहिरन जो तजवीजों। माहिरन समाजी तंजीम ने हुकूमत का मुतालबो किया है त दवाओं की कीमतों के बीहर रेगुलेट किया वे, ड्रिप की आजाद जांच कराई वे, करप्ट अमलदार खिलाफ कार्रवाई कई वे, जाली दवाओं ठाईदड़न के लिए खास अदालतों कायम कई वन, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और मयारी दवाओं फराहम कई वन, दवा साज कंपनियों और डॉक्टरों की गठजोड़ रोकण के लिए शफाफ कानून ठाया वन। गडियल आवाज की जरूरत है। हि मसलो रुगो दवाओं की महंगाई तई महदूद ना है, बल्कि लखे मानून की जिंदगी और मौत से जुड़ियल है। उन लाए पार्लियामेंट, अदलिया, मीडिया और सिविल सोसाइटी के गजी आवाज उथारणो पवंदो, जी अवाम के सेहत जड़ो बुनियादी हक फराहम थी सके। जैकड़े वक्त सर कदम न खया व्या तो गरीब मानू इलाज के खोड़ सबब तकलीफुन और मौत के मुंह में वन मजबूर थी वा।

0: ਰੇਡੀਓ ਹਿਨ ਵਕਤ ਜੋ ਸਿੰਧ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਬੇ ਆਚਰ ਜੇ ਸਿੰਧ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਤਈ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਭੇਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।
1: जो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8
1: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करयो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
0: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघि ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बालन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभिनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 5 AM ताई बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन वधिक मशोरे जे लाए 0327-99-84-763।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

कॉली डिस्कनेक्ट थी वही है जी सभी डॉक्टर साहब डे कॉल कर सको था मां के नंबर बुधाई दो ला 0327984760 3 8 3 2 7 8 9 8 4 7 6 3

0: होम्योपैथिक वारा छा कंदा असीं पहिरीं असांजी नज़र में असांजी होम्योपैथी नज़र में इहो आहे साइड इफेक्ट, यानी कि का तकलीफ़ हुई उनजी दवा खाधी उनजे बरक्स बि का तकलीफ़ पैदा थी वई, इहा थी वई साइड इफेक्ट। पहिरीं हिन साइड इफेक्ट खे ख़तमु करिणो आहे, उन खां बाद में इहो ॾिसणो आहे त हिन साइड इफेक्ट सां तव्हांखे कहिड़ी कहिड़ी तकलीफ़ूं थी वियूं, जंहिंमें मादे में जलन, जिगर ते गरमाइश, इहा थी वई, पोइ इन जो इलाजु करिणो आहे त हीउ मर्ज़ु बिल्कुलु ख़तमु थी थो वञे। जीअं असां सिर्फ़ु गरमाइश ख़तमु करण जी दवाऊं ॾींदासीं त उन में छा आहे वक़्ती फ़ाइदो अव्हांखे मिलंदो, दवाऊं हलनि पियूं, मेडिसन हले पई, अव्हां एहतियात कयो पिया, परहेज़ कयो पिया, दवाऊं जेका दवाउनि सां गॾु जेका शयूं इस्तेमालु करणियूं आहिनि उहा कयो पिया, त उन सां सिर्फ़ु मर्दु वधंदो न, दवाऊं ख़तमु थींदियूं, साॻी मर्द वरी वापसि रिपीट कंदो। होम्योपैथिक चवंदी आहे त मर्दु दवा ख़तमु थिए त मर्दु वरी रिपीट न थिए, त इन खे चवंदा आहियूं सिहतियाबी, ऐं हिनखे चवंदा आहियूं शिफ़ा, ऐं इहो चवंदा आहियूं कामयाबु इलाजु। ऐं इन जे करे असांजा होम्योपैथिक वारा पहिरीं हर सिम्टम जी मालूमात करे उन सिम्टम जे मुताबिक़ जेका मेडिसन अव्हांजे लाइ राइट आहे, ऐं जेका असां चवंदा आहियूं त 100 सिम्टम 100 जी 100 असांखे कंहिं मेडिसन में मिले पई त उहा ई मेडिसन असांखे 2 महीना हलाइणी पई असां पेशंट खे ॾींदासीं। हाणे अव्हांजो जेको सुवालु हो त कुवत मुदाफ़त उन मसइले खे हल कीअं कंदी, पेन खे छो न कंदी, उन सुवाल जो जवाबु इन में आहे। जेका अलामतूं, जेका तकलीफ़ूं, जेका मर्ज़ अव्हांखे थियनि पिया उहा ई असांजी पोटेंशियल में लिखियलु आहे, त इहा तकलीफ़ थिए मतिलबु कि मादे में सूरु आहे त उन सां गॾु मथे में सूरु थिए पियो त उन जे लाइ इहा दवा आहे। सिर्फ़ु उहा ई दवा ॾियणी आहे अव्हांखे, उहा ई दवा अव्हां इस्तेमालु कंदा कुझु 6 ॾींहं, कुझु 12 ॾींहं, कुझु 15 ॾींहं, महीनो बि इस्तेमालु कंदा आहिनि, पोइ इहा तकलीफ़ ऑटोमेटिक ख़तमु थी वेंदी आहे। इहा टाइम जेको लॻंदो आहे त उन में पेशंट जो किरदारु हूंदो आहे, त पेशंट जी इम्यूनिटी कीअं आहे, स्ट्रॉन्ग आहे, वीक आहे, या पेशंट खे टाइम घणो थी चुको आहे इन मसइले में, त उन जे करे दवा जो असरात थोरा लेट थींदा आहिनि, या उन सां अलावा पेशंट में इन खां अलावा बि का तकलीफ़ आहे, या जिस्म जे अंदरि को वायरस आहिनि जंहिंजे करे असांजी जेका दवाऊं आहिनि उहा असर कनि पिए, सुस्ती कनि पियूं, त उन सां गॾु असांखे कुझु एंटीबायोटिक जेका एलोपैथिक वारा ॾींदा आहिनि, त असांजी होम्योपैथिक में अलॻि सिम्टम आहे, अलॻि शइ आहे, त जेके असां चवंदा म्याज़मेटिक दवाऊं, उहा एलोपैथिक में आहे, एंटीबायोटिक असां में आहे म्याज़मेटिक दवाऊं, त उन वायरसनि खे हटाए करे रस्तो साफ़ करण जो कमु असांजी उन म्याज़मेटिक दवाउनि जो हूंदो आहे। असां उन सां गॾु म्याज़मेटिक दवाऊं ॾींदा आहियूं त वायरस ख़तमु थी वेंदा आहिनि, जेको महीने वारो कमु आहे उहा 15 ॾींहं में थी वेंदो आहे। इन करे अव्हांखे चवंदा आहियूं त होम्योपैथिक इलाजु करायो। होम्योपैथिक इलाजु करण सां जेको मर्दु आहे, जेको तकलीफ़ आहे, जेका बीमारी आहे, सिर्फ़ु उन जी दवा मिलंदी, ऐं उहा दवा सां अव्हांखे को बि का मसइलो, बि का तकलीफ़, बि का बीमारी पैदा नथी थी सघे। सिर्फ़ु पैदा थियण जी वजूहात ईअं थींदो आहे त कुझु पेशंट तकड़ में जल्दी जल्दी दवाऊं असांजी खाई वेंदा आहिनि, त उन जे करे नुक़सानु थी वेंदो आहे। त जंहिंमें असां अव्हांखे पेशंट खे इहो सम्झाईंदा आहियूं त जे असांखे अव्हांखे इहे सभु दवाऊं लाॻीतो ई खाराइणी हुयूं त हिकिड़ी जॻह ते ॾेई छॾियूं हा, त इन करे असांखे कुझु दवाऊं अलॻि खाराइणियूं पवंदियूं आहिनि, त उन में दवाउनि में वक़फ़ो ज़रूरु रखंदा कयो।
1: डॉक्टर साहब कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। हलो डॉक्टर साहब अलाए छा इशू आहे, तवां जंहिंखे जेको आहे त वरी लॻाए ॾिसो थी सघे थो, असां वटि को इशू हुजे, कॉल जेका आहे त बार बार डिस्कनेक्ट थियो थी वञे, ईअं न थियणु खपे अॼु लाइ, छो ईअं थिए पियो असां अवां ॿुधो पिया जी शकर नवाब शाह एफ एम 90.8 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जो राज होम्योपैथिक सां पेश कयो पियो वञे, ऐं मां अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान सलीम अहमद सरगणी। जी ज़मीन असांजो साथ रहंदो पूरे 9 वॻे ताणी डॉक्टर साहब जी क्लिनिक सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक जे नाले सां। डॉक्टर साहब जी टाइमिंग सुबुह जो 9 खां शाम 5 वॻे ताणी डॉक्टर साहब असां सां गॾु मौजूदु हूंदा, ऐं डॉक्टर साहब होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां मरीज़नि जो इलाजु कनि था। जीअं ज़मीन का बि बीमारी आहे, परेशानी आहे, इलाजु कराए कराए थकिजी पिया, फ़ाइदो नथो पवे, त उन्हनि मां पंहिंजनि भाइरनि भेनरुनि बुज़ुर्गनि खे चवंदुसि हिकु दफ़ा होम्योपैथिक तरीक़ा इलाजु आज़माए ॾिसो, शफ़ात अलाज हथ आहे, त थी सघे थो तव्हांजी तकलीफ़ होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में ख़तमु थी वञे ऐं तव्हां सिहतयाब थी वञो। समीन कंहिं बि ऑपरेशन कराइण खां पहिरीं हिकु दफ़ो मशवरो लाज़मी कजो, मसाने में पथरी हुजे, गुर्दनि में पथरी हुजे, पिते में पथरी हुजे, बवासीर हुजे, अहिड़ियूं बीमारियूं जिन्हनि में ऑपरेशन लाज़िम करार ॾिनो वेंदो आहे, त उन्हनि ऑपरेशन कराइण खां पहिरीं हिकु दफ़ो लाज़मी चेकअप कराए ॾिसजो, थी सके तो अवां ऑपरेशन का बची वञो।

0: ऐं अव्हां जो तकलीफ़ूं दवाउनि वसीले ई ख़तमु थी वञनि। समिन डॉक्टर साहब जनरल फिज़िशियन आहिनि, हर बीमारी जो इलाज कनि था, ऐं का बि अहिड़ी बीमारी न आहे जंहिंजो डॉक्टर साहब इलाज न कंदा हुजनि। हा ॾिसो, कंहिंखे अखि में मसिलो हूंदो आहे, पोइ डॉक्टर साहब हुनखे अखि जे स्पेशलिस्ट ॾे मोकिलींदा आहिनि त जीअं हू हुते वञे ऐं हुनजी अखि सेट थी वञे। अखि जो इलाजु होम्योपैथिक में बि आहे, पर हुनजो कमु जॾहिं स्पेशलिस्ट जो आहे त उन ई रेफर करे छॾींदा आहिनि। यानी अगरि होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां मरीज़ सही थींदो त डॉक्टर साहब हुनजो इलाज बि कनि था, अगरि न थींदो त उनखे वरी जेतर डॉक्टर जे इलाज जी ज़रूरत हूंदी त वरी उनखे ओॾे ई मोकिलियो वेंदो आहे। डॉक्टर साहब वटि इहा शइ न आहे त आयो आहे त हाणे हिन जी खल लाइ बि, खल लाहिण वारो कमु डॉक्टर साहब जी क्लिनिक ते न आहे। ऐं त अलहमदिल्ला हर छंछरु आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो आहे। आम ॾींहं ते डॉक्टर साहब जी फीस 300 रुपया हूंदी आहे। जुमो क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। डॉक्टर साहब जी टाइमिंग सुबुह जो 9 खां शाम 5 वॻे ताईं हूंदी आहे। तव्हां डॉक्टर साहब ॾे कॉल करे सघो था, मां मूंखे नंबर ॿुधायां थो, तव्हां नंबर नोट कंदा, शायदि मोबाइल इशो या नेटवर्क इशो कालूं जेके आहिनि बार बार डिस्कनेक्ट थी पियूं, नंबर नोट कंदा 0327 89 84 7 3 8 2 3 2 7 8 9 8 4 7 6 3। जीअं समय इहो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर आहे, तव्हां हिन ते कॉल करे मालूमात वठी सघो था। समिन डॉक्टर साहब माहिर अमराज़, नक कन गलो पुराणो नज़लो निछूं, जोड़नि जो सूर, मथे जो सूर, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, तिली जो वधणु, जिगर जा मर्ज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालेज, खंघ, टीबी, हेपाटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बि बग़ैर ऑपरेशन जे इलाजु कयो वञे थो, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, मर्दनि तोड़े औरतनि में वज़न जो न वधणु, इन्हनि सभिनीनि बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। डॉक्टर साहिबु रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवाणी कीरिया, मेहरापुर रोड, नज़द बाईपास सकरण में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। जुमो मोकल कंदा आहिनि हर छंछरु आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो आहे। नोट सिर्फ़ु दवा स्टोर तां वठणी पवंदी आहे, स्टोर बि होम्योपैथिक जो डॉक्टर मौजूदु हूंदो आहे। समिन तकलीफ़ थिए थी, बीमारी थिए थी, तव्हांखे पंहिंजी डॉक्टरी न आहे करणी। मां हमेशह तव्हांखे मना कंदो आहियां त नीम हकीम ख़तरे जा हूंदो आहे, त इनजे करे पंहिंजी डॉक्टरी न कंदा कयो। थोरी तकलीफ़ थिए थी, डॉक्टर साहिबु वटि अची पंहिंजो चेकअप कराए पंहिंजो इलाजु करायो। घणी तकलीफ़ आहे पोइ बि डॉक्टर साहिबु वटि अची चेकअप करायो ऐं पाण खे सिहतयाब बणायो। समिन होम्योपैथिक जे चवण मुताबिक़ जेके पंहिंजी डॉक्टरी कंदा आहिनि उहे पाण खे मारींदा आहिनि, ईअं ई आहे। ऐं इहा हक़ीक़त बि आहे, तॾहिं त चयो वियो आहे त नीम हकीम ख़तराए जान। तव्हांजे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु मारूफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर हारिस जावेद लाजपूत साहबु लेक्चरर मौजूदु आहिनि। तव्हां अची पंहिंजो चेकअप कराए मुतमैन थियो था, दवा वठो, 6 ॾींहनि जी दवा खाए ॾिसो, इनशाला 6 ॾींहनि में ई ज़रूरु फ़ाइदो मिलंदो। फ़ाइदो डॉक्टर जी दवा ज़रूरु ॾींदी, तकलीफ़ ख़तमु करणु अलाह ताला जे हथ में हूंदी आहे, उहा डॉक्टर कंहिंजे बि हथ में न हूंदी आहे। दवा हिलो वसीलो ख़तमु तकलीफ़ करणु अलाह ताला जे हथ में हूंदी आहे। समय डॉक्टर साहब मर्दनि तड़े औरतनि जा पोशीदा अमराज़ जा बि माहिर अमराज़ आहिनि, त कहिड़े बि क़िस्म जी तकलीफ़ हुजे, जेके असांजा जोड़ा बे औलाद आहिनि उहे बि अची औलाद जे लाइ दवा वठी सघनि था। औलाद ॼण अलाह जी ज़ात जो कमु आहे ऐं डॉक्टर दवा ॾींदो, इनशाला सिहतयाबी ज़रूरु थींदी। वधीक डॉक्टर साहब तरफ़ हलूं था ऐं डॉक्टर साहब खां कंहिं टॉपिक कंहिं बीमारी जे हवाले सां मालूमात वठूं था। अॼु डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मसाने में कमज़ोरी जे हवाले सां जेके तकलीफ़ूं थींदियूं आहिनि या उन्हनि में छा खाइणु खपे उनजो हल, या इहे सॼियूं थोरियूं ॿुधायो, छो जो मुंहिंजो भाणे जो आहे उनखे थोरी तकलीफ़ आहे मसाने जी। जी डॉक्टर साहब,
1: बिल्कुलु साईं, असां अव्हांजी जेके भाणे जी फरमाइश आहे उन जे बारे में असां अव्हांखे इन सवाल जो जवाबु असां ज़रूरु ॾींदासीं। पर उन खां पहिरीं हिकिड़ी शइ यादि रखो त असांजा हज जेका ओ पी डी थी, असांखे ॾाढी ख़ुशी थी। उन में कुछ केस असा अड़ा हुआ तो अस पा सोच पाया हि बाकी इन सख्त इलाज की जरूरत है। तकरीबन अजो का जो पेशेंट हुआ ओपीडी हुई तकरीबन नव ही पेशेंट हुआ मूँ वट अलहमदुल्ला नव पेशेंट हुआ तकरीबन दवाओं अस पा परेशान थी अज मानी भी जी अस शाम मंझंद वाली मानी अस शाम जो चई बजे अस मानी खाधी उन में चाहे तो पेशेंट नव हुआ केस तमाम घना खराब थियल हर डॉक्टर जहाँ पाँ पाँ तरीके से उन्होंने जो इलाज करल हो तो जैमें समझ में न पे अचे तो हि केस शुरू किथा क्यों इलाज किथा क्यों कड़ी दवा दूँ तो उनमें परेशानी तमाम घनी थी। कुछ पेशेंट तो मुझे अड़ा हुआ तो उनके मुँह दवा लिखी मुझे दवा हिंसर को दें तो बाहर वही वो बया टे चार मरीज हलए वरी वापसी घुराए वो वरी सगी गाल रिपीट कर दवा लिखी सी मतलब एतरी असा के उन केसन में डिस्टर्बेंस थी वही तो यार बीमारी तो सभी सामू यहाँ अचे पी पर पेशेंट गाल करे पो बी छो भला तो उनके थोड़ा वक्फो रही वरी चेक कियासी तो वरी सागी गाल अलग गाल मतलब मुख्तलिफ़ गाल असके समझ में अचन पे तो हि मसला एतरा खराब थी पर पेशेंट की कंडीशन दिस पाया तकरीबन सही है तो अज तकरीबन पेशेंट जो हुआ तमाम खराब दवाओं खाए खाए पाँजा मायदा खराब जिगर खराब कर वेठा हुआ बीमारी सागी जगह से बीठल हुई तो उन्होंने जो यो ही हो चवण हो तो रात अवान जो प्रोग्राम बुध हो तो उनमें अवान चो तो ऑपरेशन कराने का पैरी असा जरूर ऐसो थी सके तो असा वो अड़ी मेडिसन पे हो जो अवान के ऑपरेशन का बचा वे तो उन कर आयासी तो मुझे दादी खुशी थी अवान आया हो तो असि पूरी कोशिश कंदूँ अवान के ऑपरेशन वाली गाल बचाने अज तकरीबन केस असाजा अड़ा हुआ। सलीम साहब जो सवाल तो गुर्दे में पथरी गुर्दे में पथरी मसाने में तकलीफ अच्छा मसाने में तकलीफ सही मसाने में तकलीफ थियन की ब गाल एक है मसाने में गरमाइश मसाने में कमजोरी बो है UTI यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन मन मसाने में इन्फेक्शन थी वन पेशाब वाली नाली में इन्फेक्शन थी वन केस अच्छा इन केसन में अस डिस्कशन कंदी तो हाँ कें खबर पे इन पेशेंट से केस कड़ो है तो उनमें सभी का पैर असा कुछ क्वेश्चन थन्दा तो बाबा पेशाब कें तो पेशाब में जलन है पेशाब में साड़ो थे तो पेशाब करने का बाद में गंद किचरो अचे तो उन टिन्न केसन में समझ में इंदा तो हि पेशेंट की कंडीशन हाँ इन में कड़ी आ पेशाब में जलन है तो माना मसाने में गरमाइश है जो पेशाब में अवान के चवंदा हो तो पेशाब मुख्य अचे तो रुकी रुकी अचे तो यानी कि मसानो कमजोर आ या बर्दाश्त न तो थे पेशाब जी लगे तो पेशाब क्या न तो मुझा कतरा निकली तो माना मसानो कमजोर थी UTI में हमेशा याद रखो तो जेडी मल ट्रैक में इन्फेक्शन थी तो पेशाब में जलन लाजमी थी तो उनमें पेशाब में जलन थी जेडी मल असा यूरिन DR कराइंदी तो उनमें पस सेल RBS रेड रत गंद पेशाब वाली टेस्ट में जरूर इंदा पेशाब जो है तो जेडी मल रिपोर्ट ठाईंदा तो एस्टरबाइट हों यानी कि पेशाब में गंद किचरो अचे पो तो सीधी गाल UTI पॉजिटिव है अवे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन अवान चुको है उनमें पानी जो एहतियात जरूर कजो पानी जो इस्तेमाल तमाम घणो कजो गर्म शेयर तरल शेयर इस्तेमाल न कजो तो जैसा अवान की तकलीफू मर्द वधन ना कच्ची लस्सी है वह अवान इस्तेमाल कर सोस था तो जैमें असा कच्ची लस्सी इस्तेमाल कर सकूँ था जैसा पेशाब में तकलीफ खत्म थी सकन थी कमन जरस अस इस्तेमाल कर सकूँ था।
0: डॉक्टर साहब कॉल वठूँ था अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर क्या हाल है
0: साईं दुआओं अलाज एहसान केर गलाए पे किथा का
2: साईं गुलाम अहमद भाईओ नवाब शाह का साईं
0: जी मुजा भा डॉक्टर साहब से गल है
1: अब अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
1: साईं अस्सलाम वालेकुम
2: साईं असन भा के फालिज जो थियो है गलाए कोन तो सके
1: अच्छा घणो टाइम थियो है फालिज के
2: साईं अंगारे दी थियो आगे ते
1: अच्छा केड़े केड़े हिस्सन ते फालिज थियो है हाथ पैर छत ते फालिज थियो है पाण सोचो गलो किथा पासो सुन थी वियो आहे समझ में नथो अचे त हीउ मुंहिंजो आहे के ॿिए जो आहे किथा ॻाल्हाईंदो ठीकु आहे FM ॿुधो मां FM ते जवाबु ॾियां थो
0: जी डॉक्टर साहब अच्छा डॉक्टर साहब देवर जो चवण जो मकसद यो त हाने थियो माने हफ्तो खन थियो त फाले जो टे कयो पासो सजो सुना गाले न
1: तो इन में चाहे त जदी मल ब्लड प्रेशर वधिक थिंदो आ न त 200 ते पहुंचंदो आ 180 200 थिंदो आ त दिमाग में का रग आयो आ दबजी वेंदी आ पो फालिज उन में चांस थिंदा पेशेंट जा त ओ राइट साइड ते लेफ्ट साइड ते हेठी हिस्से जो थे कड़े भी किस्म जो फॉलेज थी सके तो हाँ अवान जो भाई उनके सो साजे पास इनमें दवाओं मेडिसन मिलन थी जी रग रगन के ताकत मिले रग की गर्दिश रत की गर्दिश है वह भी हले वही सेट थी तो बाकी जो क्लिनिक अचो तो मैं बुधा तो
0: डॉक्टर साहब कॉल वठूँ था अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
2: साईं खुश आयो जो खैर आ
0: बाबा सब खैर है रेडियो सेट जो आवाज बंद करदा यो बुधायो केर गलाय पे किथा का
2: हेलो
0: अदा रेडियो सेट जो आवाज बंद कयो पो बुधायो केर गलाय पे किथा का
2: जी जी आयो अदा ही जावा ते देखोला
0: जी अदा
2: आज का जा पर थोरो
0: चाचा केर पे गलायो किथा का रेडियो सेट जो आवाज बंद कयो तवा जो आवाज वापसी अचे पे मोडे तवा जी काल की हलंदी चाचा बुधायो जी साईं जी
2: आवाज देव जी आवाज खपी ना दे
0: हेलो
2: नवाब साहब गलायो पिया
0: जी दा छा सवाल आ तवा जो
2: यार मुठाए दिल मुजी वठजी वया नशा के राकया थसे
0: जी
2: आई दिल मुजी कम छडे वया
0: अच्छा दिल तवा कम छडे
2: हां आई का पोस्ट अस्पताल में विंदो आया 15 दी 20 दिन ते महीने ते
0: जी
2: दवाओं करता बराल फायदो मुके अन्या ते कोन पियो आ दिल आज वरी धक धक पई करे
0: ठीक है चाचा ठीक है एफएम बदो डॉक्टर साहब बदाइन था तवा जी दिल जी धक धक अला कंदो त नॉर्मल थी विंदी अजय डॉक्टर साहब चाचे जो सवाल तवा बुधा
1: पर इन जे रजी वे डॉक्टर चाचो चयो को नशो चई छा चई
0: आ नशो चई नशो इलाही कयो जाम कयो जो माना तमाम घणो कयो सर इन सवाल जो जवाब देने का तमाम पैगाम तरफ जो टाइम तमाम शॉर्ट है प्रोग्राम जो टाइम भी पुजाने तो पहुंचने वालों जी डॉक्टर साहब
1: चाचा दिसो सभी का पहले नशो आ न नशे में जो सिगरेट है सिगरेट में जो वजन है तो वह सभी घटा सिगरेट जो उनको दूह आ फिफड़ के दिल के नुकसान दी मायदे के भी नुकसान दी है अवं के जो है दिल जो मसलो दिल जो आर्दो थी वो इन्हें में अवं सूफ़ वो इस्तेमाल कर जैसा दिल के ताकत मिले तो अवं की तकलीफ़ खत्म थे घड़ो तेज हलण घनी का गाल गोड़ बुधन की अवं के इजाज़त कान्ने का जड़े पकड़ में तक वजन की इजाज़त कान्ने का ब्लड प्रेशर पाँच रोज़ चेक कराइंदा कर सुबह शाम करा टी में चक्कर करा ब्लड प्रेशर पाँच चेक करा होम्योपैथिक जो अवं इलाज कराइंदा तो अवं जो नशे वाली जो शूं हुई ना सभी का पैर असा उन असारात के ख़त्म कंदू नशे की जी बारी गाल नशो इस्तेमाल करने का जिसम के मत अलामतूँ अलग थन्दन असा उन खत्म कंदू तो अवान दिल की तकलीफ़ है वह ऑटोमेटिक पाँगी पा खत्म थी वी पर उनमें एहतियात जरूर कजो सणप जो इस्तेमाल न कजो सणप जो असा भाजी में विझूँ ठीक है उन मथा जो असा मख मानी खाइंदा वह जरूरत कान्ने का खीर पियो था मत तरी लाहे पींदा तो जैसा मखण गिह में जो सणप है वह अवान जिसम में घट वी दिल में जो तकलीफ़ है उनका करे हार्ट अटैक वाली कंडीशनू न थी सकंदी छो तो कोलेस्ट्रोल लेवल थी वो तो अवान जो दिल की तकलीफ़ वह थी पवंदी सामिन प्रोग्राम के आखिर में अस अवान खड़ी इंदा आयो पैगाम जो अवान की सेहत के बाबत हों तो उनमें अस अवान यही समझाइंदी सेहत है तो हर शे है सेहत ना है तो का शे कान्ने का तबियत खुश आवा खुश आयो तबियत खुश ना है अवान खुश ना आयो जी अवान जिसम में का तकलीफ़ है का मर्ज है तो जेस ते उन इलाज न कराइंदा वो आस्ते आस्ते पाँचे पान उन रखी वा तो वह वो कुटन को उनको इलाज तुम्हें जरूर करो अच्छा कुछ पेशेंट हुआ उन सवाल यो हो तो सही मैं बीमारी थी कारी साई थी मु इलाज कराया उनका बाद में मु गर्म शे तरल शे मिर्च मसाला पकौड़ा देग वाली भाजी ये सब शूं वो गोश्त ये सब शूं इस्तेमाल न क्यों तो अने का पो भी बीमार आया तो मैं यो ही समझा दिसो ये शूं इस्तेमाल करन सा बीमारी वधीक थिंदी इस्तेमाल न करन सा बीमारी वधन जा चांस खत्म थी वेंदा पर बीमारी तो मौजूद है असा उन खत्म करने का भी अड़ी शे इस्तेमाल ना क्यों जी मादे का तकलीफ है जिगर की तकलीफ़ है तो अवान गर्म शूं बंद कर पाया थदी शूं भी इस्तेमाल कर जैमें पानी जूस कमन जो रस कच्ची लस्सी या मशरूबात शरबत जो अवान बेहतर रहा घणी गोश्त घणो गोश्त वारी शयूं तरल शयूं उनखे तव्हां अवॉइड कयो। साई भाॼी जेका आहिनि उन जो इस्तेमालु तमामु घणो कयो, ख़ासि करे जिगर जो मसलो थिए त जेको साए पते वारी का बि भाॼी हुजे साए पते वारी, जीअं का गजर आहे उन में सावापन हूंदा आहिनि ऐं मूली आहे उन में सावापन हूंदा आहिनि, इहो अव्हां जे लाइ जिगर जे लाइ तमामु बहितरु आहे, उहा इस्तेमालु करे सघो था। ऐं यादि रखो जीअं इहे जिगर जे लाइ बहितरु आहिनि ईअं ई गुर्दनि जे लाइ नुक़सानदेह आहे, जीअं गुर्दे में पथरी थींदी अव्हांखे इहा शयूं इस्तेमालु न आहे करणियूं, जिगर जी का तकलीफ़ थींदी अव्हांखे इहा शयूं इस्तेमालु करणियूं। त इन में हिकिड़ी शइ हिकिड़ी बीमारी लाइ फ़ाइदेमंद आहे त ॿिए लाइ नुक़सानु आहे, इन शइ जो बि एहतियात कजो। होम्योपैथिक इलाज अलहमदिल्ला असां वटि मौजूदु आहे, सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी किरिया मेहरापुर रोड नज़द बाईपास सकरन ते अची सघो था, पंहिंजो होम्योपैथिक तरीक़ेकार सां इलाज कराए सघो था। असांजी कोशिशि रहंदी तव्हां जो इलाज सही नमूने सां थी सघे, जेका मेडिसन दवाऊं असां वटि मौजूदु हूंदियूं आहिनि असां हर पेशेंट खे ॾींदा आहियूं, जेका न हूंदी आहे त असांखे सभिनी खे लिखी ॾींदी उहा ई दवा उन्हनि खे मिले जंहिं दवा जी ज़रूरत हूंदी आहे। त इन करे अवां बेफ़िक्र थी असां खां इलाज कराए सघोसि था। सामिन प्रोग्राम जो टाइम थिए पियो ख़तमु, ॿिए प्रोग्राम में हूंदुसि अवां सां गॾु, इनशाला कोशिशि हूंदी त अवां सां खोड़ कचहरियूं थियनि, अवां जी बीमारियुनि जे बारे में मालूमात वठी अवां जी बीमारी जो हल करण जी कोशिशि ज़रूरु कंदासूं, पर इलाजु अवां पंहिंजो ज़रूरु करायो, भले जिथां करायो पर इलाजु ज़रूरु करायो। सिहतमंद रहो, ख़ुशहाल रहो, अवां पंहिंजी ज़िंदगीअ में ख़ुशि रहो, असांखे ॿियो कुझु बि नाहे खपे। इनशाला उमेद कंदासीं होम्योपैथिक इलाज अवां कराईंदव, अव्हांजी सिहत ज़रूरु ख़ुशहाल थींदी। सामिन मिलंदासीं वरी क्लिनिक ते, अची पंहिंजो इलाज कराए वठो, पंहिंजो चेकअप कराए वठो। फ़िलहाल ॾियो इजाज़त, अलाह निगहबान।
0: जीअं समय असां सां गॾु आहे सकरन जा मशहूरु ऐं मारूफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहबु, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह सवाबिस्ता आहिनि।

शाम 5 बजे तक सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी किरिया मैरापुर रोड नर्स बाईपास सकरन में मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। जुमो मोकल कंदा आहिनि। हर छंछर आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो आहे। नोट सिर्फ़ दवाई स्टोर तां वठणी पवंदी आहे। डॉक्टर साहब जो मालूमाती नंबर 0327-99-84-763 2-7-8-9-8-4-7-6।

0: कुछ समझूं त ये असन दे लाइक नी बड़ी बदकिस्मती जड़ी गाल आज मदर्स डे हो त अस सबन के जको आ त पने मां जो ख्याल करन घुरजे आई जनन जो अमड़ियो जिंदा हन अल्लाह उनन के हयाती दे जनन भाईन बहनरन जो अमड़ियो ही दुनिया छड़े वई हन अल्लाह उनन के जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम न आता तफर में सामिन हमेशा पंजो पंजो पैरन जो ख्याल रखना करो सामिन वक्त जो एहसास प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक सां जो टाइम भी पहुंचे तो पुजानी थे जडे भी दुआलायत खणो पंजे मेज़बान सलीम अहमद सरगानी के दुआउन में जरूर याद रख जो जिंदगी अगर साथ दिनो तो बे प्रोग्राम में होंदस अवां सा गड तेसी मुखे दींदा इजाजत सदाई गड अल्लाह वाही अल्लाह निगहबान जेडा पेर तेडा खैरो खैर
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
2: सुनते रहो GFM 90.8
3: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें तकरीबात का हाल मसाइल की सूरत हाल सिंध के रहने वालों के ख्याल जानिए ये सब सिंध राउंड अप में सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर
4: अस्सलाम वालेकुम सामेईन तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगे मां गुलाब खान भेण

स्टैंड राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध सरकार पारां कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾणु, हारियुनि ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीअं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियणु, बाइका मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंध सेल्स टैक्स में छूट जो ऐलान करे छॾियो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में नवाज़िशूं, एक्सीएन जा टे अहम अहुदा असिस्टेंट इंजीनियरनि हवाले, कार वहिंवार मुतासिर। सिंध में 65 सालनि जा बुज़ुर्ग बि वीसी शिप लाइ अहल करार, बोर्ड जूं भर्तियूं सर्च कमेटीअ हवाले। वॾे वज़ीर पारां कराची जे शहरनि खे ईद जो तोहफ़ो, शाहराह भुटो ईद ते ट्रैफ़िक जे लाइ खोलण जो ऐलान, रिथामी देर ऐं मयार बि कोताही बर्दाश्त न कबी, वज़ीर आला सिंध। कोट जी उमरकोट ऐं नओकोट क़िला आलमी सकाफ़ती विरसे जी लिस्ट में शामिल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 जे इम्तिहान जा नतीजा जारी करे छॾिया, 70 उमेदवार कामयाब। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, जाली दवाउनि जो कारोबार, अवाम जे ज़िंदगियुनि सां खेॾींदड़ निज़ाम। सिंध सरकार कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾणु, हारियुनि ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीअं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियणु, बाइका मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंध सेल टैक्स में छूट जो ऐलान करे छॾियो। काल्ह वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल काबीना जे इजलास में 30 अरब रूपियनि जी तरक़ियाती, फलाही ऐं इस्लाही एजेंडा जी मंज़ूरी ॾिनी वई। इजलास में कराची, ठटो, सिजावल ऐं बदीन जे मुहाणनि खे फौरी माली रिलीफ फराहम करण जे लाइ 515 मिलियन रूपियनि जो फ्यूल सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾिनी वई। वॾे वज़ीर त डीज़ल जे वधंदड़ क़ीमतुनि सबबि मच्छी जे शिकार में 20% घटिताई आई आहे, उन ई करे हज़ारे माण्हुनि जी रोज़गार खे ख़तरो पैदा थी वियो आहे। हिन स्कीम तहत 9,634 रजिस्टर्ड ॿेड़ियुनि होड़नि खे 1 खां 2 लख ताईं टारगेटेड मदद फराहम कई वेंदी। इजलास में मोटरसाइकिल मालिकनि खे मई में बि 2,000 रूपिया तेल सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो कंदे 2 अरब रूपिया जारी कया विया। इजलास में परगणे में बाइका हलाईंदड़नि ते लागू सिंध सेल्स टैक्स 5% घटाए 2% करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई, उन सां गॾु 120 मिलियन जो फ़ाइदो थींदो। इजलास में वॾे वज़ीर माली कमेटीअ जी सिफ़ारिश ते हैदराबाद कोटड़ी विच में सिंधु दरिया ते 1.12 किलोमीटर डिघी हाईवे पुल जी इंजीनियरिंग डिज़ाइन जे लाइ 147.2 मिलियन रूपियनि जो कंसल्टेंट सर्विस लाइ ग्रांट जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर चयो त उहा पुल मुल्क जे ॿिनि इलाइक़नि ॾांहुं अच वञ जी हल्की ऐं गरीब ट्रैफ़िक जे लाइ वॾी सहूलियत साबित थींदी। सिंध काबीना वाइस

चांसलरनि जे मुक़ररे जे लाइ उमिरि जी हद 62 खां वधाए 65 साल करे छॾी, जॾहिं त ज़रूरी तजुर्बे खे 15 खां वधाए 20 साल कयो वियो आहे, जंहिं में घटि में घटि 10 HEC जूं तस्दीक थियल अशातूं लाज़मी करार ॾिनियूं वियूं आहिनि। काबीना सिंध जे 7 तालीमी बोर्डनि जे लाइ ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशन 2026 जी मंज़ूरी ॾिनी, जंहिं हेठि चेयरमैन, सेक्रेटरी, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन्स ऐं ऑडिट ऑफिसर जहिड़ियूं पोज़ीशनूं हाणे मयारी एंड सिलेक्शन कमेटी ज़रिए भरियूं वेंदियूं। नए ज़ाब्तनि तहत चेयरमैन BPS 19 ऐं 20 जे लाइ उमिरि जी हद 40 खां 55 साल मुक़ररु कई वई आहे, जंहिं लाइ मास्टर डिग्री, फर्स्ट डिवीज़न ऐं 15 सालनि जो सीनियर मैनेजमेंट तजुर्बो घुर्बल हूंदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कराची जे अहम तरक़ियाती रिथाउनि जो तफ़सीली दौरो कयो ऐं लाॻापियल अमलदारनि खे हिदायत कई त कराची बस, रैपिड ट्रांज़िट, रेड लाइन कॉरिडोर, शाराए भुटो ऐं पहलवान गोठ रोड ते कम जी रफ़्तार तेज़ कई वञे, जॾहिं त सभिनी रिथाउनि में मयार ऐं शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणायो वञे। वॾे वज़ीर ऐलान कयो त शाराए भुटो खे ईद खां अॻु ट्रैफ़िक लाइ खोलियो वेंदो, जंहिंखे हुन कराची जे अवाम जे लाइ ईद जो तोहफ़ो करार ॾिनो। वॾे वज़ीर चयो त वसीला मौजूदु आहिनि, हाणे मूंखे ज़मीन ते नतीजा नज़र अचणु घुर्जनि, कमु केतिरनि शिफ्टनि में जारी रखियो वञे त जीअं मुक़ररु वक़्त अंदरि मुकमल थिए ऐं शहरनि खे जल्द रिलीफ मिले। वॾे वज़ीर मौसमियात ते फ्लाई ओवर जो कमु नामुकमल ॾिसी फौरी तौर ते ॿीहर शुरू करण जी हिदायत कई ऐं यकीन ॾियारियो त फंड्स ऐं वसीला फराहम कया वेंदा। हुन चयो त शाराए भुटो शहर अंदरि ट्रैफ़िक जे दॿाउ खे घटाईंदी ऐं M9 ऐं N5 शाहराहुनि जे विच में राब्ते खे बहितर बणाईंदी। ॻरी ट्रैफ़िक शहर खां ॿाहिरि मुंतक़िल थी वेंदी, जंहिंसां कराची जे रहवासियुनि खे वॾो रिलीफ मिलंदो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में अंधेर नगरी, सूबाई बिल्डिंग डिवीज़न कराची में असिस्टेंट इंजीनियर ते नवाज़िश, सूबाई बिल्डिंग्स डिवीज़न जे एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारनि टिनि पोस्टुनि ते मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियरनि खे इज़ाफ़ी चार्जूं हवाले थियल। एक्सटेन एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारे उहिदे ते हेठनि ग्रेड जा असिस्टेंट इंजीनियर मुक़ररु हुजण सबबि वहिंवार रोलड़ जो शिकार बणियल आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि वर्क्स खाते जे इख़्तियारनि पारां असिस्टेंट इंजीनियरनि ते ख़ासि नवाज़िश कंदे खेनि एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारा उहिदा इज़ाफ़ी चार्ज तौर खेनि हवाले कया विया आहिनि। केतिरनि ई महीननि खां वक्स खाते पारां XN1, XN2 ऐं XN3 वारे उहिदे ते एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियरनि खे मुक़ररु करण बजाए पंहिंजे मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियरनि खे मथियनि उहिदनि ते मुक़ररु कयो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल मालूमात मूजिबि XN1 वारे उहिदे ते असिस्टेंट इंजीनियर वजाहत पाटोली खे इज़ाफ़ी चार्ज मिलियल आहे, जॾहिं त XN2 वारे उहिदे ते वरी असिस्टेंट इंजीनियर अब्दुल्ला मस्तोई ऐं XN3 जे उहिदे जे असिस्टेंट इंजीनियर ताहिर खान खे इज़ाफ़ी चार्ज मिलियल आहे। सिंध सेक्रेटरिएट जे मुख़्तलिफ़ ब्रेकनि समेत सरकारी आफ़ीसुनि, इस्पतालुनि ऐं ॿियनि सरकारी इमारतुनि में मरमती ऐं तामीराती कमनि वारा हलंदड़ मनसूबा असिस्टेंट इंजीनियर वक़्त हवाले करण सबबि समूरो वहिंवार सख़्तु मुतासिर थी रहियो आहे। ज़रनि वटां मिलियल ॼाण मूजिबि त वक़्त खाते में 14 खां 19 ताईं असिस्टेंट इंजीनियर मथे ग्रेड वारे एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर जे उहिदे ते तरक़ियूं माण जे इंतज़ार में वेठल आहिनि, पर वक़्त खाते जे अख़्तियारनि पारां ॼाणायल असिस्टेंट इंजीनियरनि जे लाइ 4 महीननि खां DPC रोकी वई आहे, जंहिं करे असिस्टेंट इंजीनियर केतिरनि ई महीननि खां तरक़ियूं माण खां महरूम बणियल आहिनि। सिंध काबीना पारां मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम में वाद कैब सर्विस लाइ सेल्स टैक्स में वॾी घटाई जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में अवामी सहूलियत लाइ अहम फ़ैसिला कया विया, जंहिं में पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम जे मद में 31 मई 2026 ताईं वाद कई वई। वॾे वज़ीर हिदायत कई त फ्यूल सब्सिडी जे मद में मई महीने जे लाइ 12 अरब रुपया फौरी तौर जारी कया वञनि। इजलास दौरान वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त हिन वक़्त ताईं 5,48,000 खां वधीक माण्हुनि खे फ्यूल सब्सिडी जी अदायगियूं जारी आहिनि, जॾहिं त हींअर ताईं 1.96 अरब रुपया विरिहाया विया आहिनि। काबीना पारां मोटरसाइकिल कैब सर्विस ऑनलाइन राइडिंग एप्स जे लाइ सेल्स टैक्स में बि वॾी घटाई कई वई आहे। ब्रीफिंग मूजिबि काबीना सेल्स टैक्स खे 5% मां घटाए 2% करे छॾियो आहे, जंहिंसां सालियानो 120 मिलियन रुपियनि जो माली असर पवंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो चवण हो त हिन क़दम सां ऑनलाइन सर्विस फराहम कंदड़ सभई ड्राइवरनि खे सिधो सओं फ़ाइदो पहुचंदो।
सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गडियल चटाभेटी वाले इम्तिहान 2024 के लिखित वे इम्तिहान जहा नतीजा जारी कर छिया जैमें 70 उम्मीदवार कामयाब करार दिना वा कामयाब उम्मीदवार के हिदायत कई वही है तो 7 दिन के अंदर तालीमी सर्टिफिकेट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में जमा कराएं बे मरहले में कामयाब उम्मीदवार का इंटरव्यू वरतो वो नतीजन बारे नोटिफिकेशन में जाना वो है कामयाब ए नाकाम उम्मीदवार जो मार्कू वेबसाइट से रखी व्यून चटाभेटी के इम्तिहान में 70 उम्मीदवार में सब का कराची जहा 15 उम्मीदवार कामयाब थे जडे खैरपुर जिले जहा 6 सखर जहा 4 लाड़कानू 4 होटकी 4 मटियारी 3 उमरकोट 2 थरपारकर 2 ठट्टो 2 जामशोरो 2 दादू 2 बदीन 2 टडो मामन खान 1 सांगड़ 2 नौशर फिरोज 1 उमरकोट 1 कंबर 1 जिकमाबाद जिले जहा 2 कश्मोर जिले जहा भी 1 उम्मीदवार कामयाब थे पेरे नंबर से थरपारकर जो बशीर एवन सुमरो है जै 610 मार्कू हासिल क्यों सिंध जा टे तारीखी किला आलमी सकाफती विरसे के फहरस्त में शामिल यूनेस्को मीरपुर खास के नौ कोट किलो खैरपुर जो कोटडीज किले उमरकोट किले के पांजे लिस्ट में शामिल कर छो है उन हवाले से मिलल जान मूजिब त अकवाम मुतहदा के तालीमी साइंसी सकाफती इदारे यूनेस्को सिंध के टिन तारीखी किलन के आलमी सकाफती विरसे में शामिल करने लाइ इब्तदाई लिस्ट में बाजाबता तौर शामिल कर छो है उन डस में यूनेस्को के पाकिस्तानी नुमाइंदे नोटिफिकेशन पिण जारी किया है जैमें लागापल इख्तियार टिन्हीं किलन बाबत आगाही दिनी वही है बे तरफ सिंध के कदीमी असारन वाले खाते के डायरेक्टर जनरल अब्दुल फताह शेख जो चवण है त नौ कोट किलो उमरकोट किलो कोट निजी किलो यूनेस्को के इब्तदाई लिस्ट में शामिल थियण बाद टिन्हीं मागन के आलमी सतह से पजीराई मिली उन तारीखी अंधन के हतमी तौर लिस्ट में शामिल करण का अग खेन इब्तदाई फहरस्त में शामिल किया वो है जै दौरान उन्हें तारीखी सकाफती साइंसी इतबार का जायजो वरतो वो है।

0: पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। मुल्क में वधंदड़ दवाउन जी कीमत ऐं जाली दवाउन जे कारोबार अवाम जी जिंदगी के सख्त खतरे में विझी छड़ियो आहे। बीमारियुनि सां विढ़ंदड़ गरीब माण्हू अॼु दवा ख़रीद करण जी सघ विञाए वेठो आहे। माहिरनि मूजिबि दवाउनि जे अघनि में बार बार वाध जो वॾो सबबु हुकूमत पारां क़ीमतुनि ते कंट्रोल ख़तमु करणु आहे। अॻु हुकूमत दवाउनि जी क़ीमतुनि खे ज़ाब्ते हेठि रखंदी हुई, पर आहिस्ते आहिस्ते दवा साज़ कंपनियुनि खे मुकमल आज़ादी मिली वई, जंहिं खां पोइ दवाउनि जूं क़ीमतूं केतिरा ई भेरा वधियूं। नतीजे तौर मरीज़नि लाइ इलाज कराइण ॾुखियो बणिजी वियो। गरीब लाइ इलाज ख़्वाब बणिजी वियो। अॼु केतिरा ई मरीज़ पंहिंजे इलाज अध में छॾे रहिया आहिनि, छाकाणि त सदन आमदनी दवाउनि जे ख़र्च अॻियां बेवस बणिजी वञे थी। केतिरा ई वालदेन पंहिंजे ॿारनि जी तालीम या घर जी ज़रूरतुनि ते ख़र्च घटाए दवाऊं ख़रीद करण ते मजबूर आहिनि। ख़ासि तौर ते दिल, शुगर, कैंसर ऐं गुर्दनि जी बीमारियुनि में इस्तेमाल थींदड़ दवाउनि जूं क़ीमतूं आम माण्हू जे बर्दाश्त खां ॿाहिरि थी वियूं आहिनि। ड्रिप ते सवालिया निशान। सिहत जे शोबे सां लाॻापियल माहिरनि ऐं समाजी हलकनि जो चवणु आहे त दवा साज़ इदारनि जी निगरानी कंदड़ इदारे ड्रिप जी कारकर्दगी ते सख़्त सवाल उथनि था। इल्ज़ाम आहिनि त कुझु अमलदारनि दवा साज़ कंपनियुनि सां गठजोड़ करे अवामी मुफ़ादनि जे बदिरां कार्पोरेट मुफ़ादनि खे तहफ़ुज़ ॾेई रहिया आहिनि। जाली दवाउनि जे कारखाननि ख़िलाफ़ कार्रवायूं महदूद ऐं गैर असराइतियूं नज़र अचनि थियूं। हुकूमत लाइ अहम सवाल। जेकॾहिं रियासत पंहिंजे शहरनि खे सस्तो इलाज ऐं मयारी दवाऊं फराहम नथी करे सघे त पोइ उहा पंहिंजे बुनियादी ज़िमेवारी निभाइण में नाकाम सम्झी वेंदी। सिहत कंहिं बि रियासत जी बुनियादी ज़िमेवारियुनि मां हिकु आहे, पर मौजूदा हालतुनि में लॻे थो त हुकुमराननि लाइ अवामी मसइलनि खां वधीक अहमियत कारोबारी मफ़ादनि खे हासिलु आहे। माहिरनि जूं तजवीज़ूं। माहिरनि ऐं समाजी तनज़ीमुनि हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त दवाउनि जी क़ीमतुनि खे ॿीहर रेगुलेट कयो वञे, ड्रिप जी आज़ाद जांच कराई वञे, करप्ट अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे, जाली दवाऊं ठाहींदड़नि जे लाइ ख़ासि अदालतूं क़ाइम कयूं वञनि, सरकारी अस्पतालुनि में मुफ़्त ऐं मयारी दवाऊं फराहम कयूं वञनि, दवा साज़ कंपनियुनि ऐं डॉक्टरनि जे गठजोड़ रोकण जे लाइ शफ़ाफ़ कानून ठाहिया वञनि। गॾियल आवाज़ जी ज़रूरत। ही मसइलो रुगो दवाउनि जी महांगाई ताईं महदूद न आहे, बल्कि लखे माण्हुनि जी ज़िंदगी ऐं मौत सां जुड़ियल आहे। उन लाइ पार्लियामेंट, अदलिया, मीडिया ऐं सिविल सोसाइटीअ खे गॾिजी आवाज़ उथारणो पवंदो, जीअं अवाम खे सिहत जहिड़ो बुनियादी हक़ फराहम थी सघे। जेकॾहिं वक़्त सर क़दम न खयां विया त ग़रीब माण्हू इलाज जे खोड़ सबबि वधीक तकलीफ़ुनि ऐं मौत जे मुंहं में वञण ते मजबूर थी वेंदा। हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंड अप। ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: जो शहर पंहिंजो घर सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
2: GFM 90.8।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: सिंध के माथे का झूमर,
3: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो बहरी इस्तेमाल में फर्क महसूस करयो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

सुनते हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंकी आवाज।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान बेण।

सिनराउंड अप में अज अव बुझी सकंदा। सिंध सरकार पारां कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾण, हारिन ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीअं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियण, बाइका मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंध सेल्स टैक्स में छूट जो ऐलान करे छॾियो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में नवाज़िशूं, एक्सीएन जा टे अहम उहिदा असिस्टेंट इंजीनियरनि हवाले, कार वहिंवार मुतासिर। सिंध में 50 सालनि जा बुज़ुर्ग बि वीसीशिप लाइ अहल करार, बोर्ड जूं भर्तियूं सर्च कमेटीअ हवाले। वॾे वज़ीर पारां कराची जे शहरनि खे ईद जो तोहफ़ो, शाहराह भुटो ईद ते ट्रैफ़िक जे लाइ खोलण जो ऐलान, रिथामी देर ऐं मयार में कोताही बर्दाश्त न कबी, वज़ीर आला सिंध। कोट डिजी उमरकोट ऐं नवकोट किला आलमी सकाफ़ती विरसे जी लिस्ट में शामिल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 जे इम्तिहान जा नतीजा जारी करे छॾिया, 70 उमेदवार कामयाब। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, जाली दवाउनि जो कारोबार, अवाम जे ज़िंदगीन सां खेॾींदड़ निज़ाम। सिंध सरकार कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾण, हारिन ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीअं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियण, बाइका मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंध सेल टैक्स में छूट जो ऐलान करे छॾियो। काल वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल काबीना जे इजलास में 30 अरब रूपियनि जे तरक़ियाती, फलाही ऐं इस्लाही एजेंडा जी मंज़ूरी ॾिनी वई। इजलास में कराची, ठटो, सिजावल ऐं बदीन जे मुहाणनि खे फौरी माली रिलीफ फराहम करण जे लाइ 515 मिलियन रूपियनि जो फ्यूल सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾिनी वई। वॾे वज़ीर तो डीजल के वधंदड़ कीमतुन सबब मच्छी के शिकार में 20% घटताई आई है, उन ही करे हजारे मुहाणन जिया रोजगार के खतरो पैदा थी वो है। इन स्कीम तहत 9,634 रजिस्टर्ड बेड़ीन होड़न के 1-1.5 लाख ताई टारगेटेड मदद फराहम कई वी। इजलास में मोटरसाइकिल मालिकन के मई में भी 2,000 रुपया तेल सब्सिडी देने फैसलो कदे 2 अरब रुपया जारी कया व्या। इजलास में परगणे में

हलाइण ते लागू सिंध सेल्स टैक्स 5 खां घटाए 2 सैकड़ो करण जी मंजूरी ॾिनी वई। उन सां गॾु 120 मिलियन जो फ़ाइदो थींदो। इजलास में वॾे वज़ीर माली कमेटीअ जी सिफ़ारिश ते हैदराबाद कोटड़ी विच में सिंधु दरिया ते 1.12 किलोमीटर डिघी हाईवे पुल जी इंजीनियरिंग डिज़ाइन जे लाइ 147.2 मिलियन रुपियनि जो कंसल्टेंट सर्विस लाइ ग्रांट जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर चयो त उहा पुल मुल्क जे ॿिनि इलाइक़नि ॾांहुं अच वञ जी हल्की ऐं घणी ट्रैफ़िक जे लाइ वॾी सहूलियत साबित थींदी। सिंध काबीना वाइस चांसलरनि जी मुक़ररी जे लाइ उमिरि जी हद 62 खां वधाए 65 साल करे छॾी, जॾहिं त ज़रूरी तजुर्बे खे 15 खां वधाए 20 साल कयो वियो आहे, जंहिं में घटि में घटि 10 HEC जूं तसदीक थियल अशातूं लाज़मी करार ॾिनियूं वियूं आहिनि। काबीना सिंध जे 7 तालीमी बोर्डनि जे लाइ ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशन 2026 जी मंज़ूरी ॾिनी, जंहिं हेठि चेयरमैन, सेक्रेटरी, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऐं ऑडिट ऑफिसर जहिड़ियूं पोज़ीशनूं हाणे यारी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी ज़रिए भरियूं वेंदियूं। नए ज़ाब्तनि तहत चेयरमैन BPS 19 ऐं 20 जे लाइ उमिरि जी हद 40 खां 55 साल मुक़ररु कई वई आहे, जंहिं लाइ मास्टर डिग्री, फर्स्ट डिवीज़न ऐं 15 सालनि जो सीनियर मैनेजमेंट तजुर्बो घुर्बल हूंदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कराची जे अहम तरक़ियाती रिथाउनि जो तफ़सीली दौरो कयो ऐं लाॻापियल अमलदारनि खे हिदायत कई त कराची बस रिपिड ट्रांज़िट रेड लाइन कॉरिडोर शाराए भुटो ऐं पहलवान गोट रोड ते कम जी रफ़्तार तेज़ कई वञे, जॾहिं त सभिनी रिथाउनि में मयार ऐं शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणायो वञे। वॾे वज़ीर ऐलान कयो त शाराए भुटो खे ईद खां अॻु ट्रैफ़िक लाइ खोलियो वेंदो, जंहिंखे हुन कराची जे आवाम जे लाइ ईद जो तोहफ़ो करार ॾिनो। वॾे वज़ीर चयो त वसीला मौजूदु आहिनि, हाणे मूंखे ज़मीन ते नतीजा नज़र अचणु घुर्जनि। कमु केतिरनि ई शिफ्टनि में जारी रखियो वञे त जीअं मुक़ररु वक़्त अंदरि मुकमल थिए ऐं शहरनि खे जल्द रिलीफ़ मिले। वॾे वज़ीर मौसमियात ते फ्लाई ओवर जो कमु नामुकमल ॾिसी फौरी तौर ते ॿीहर शुरू करण जी हिदायत कई ऐं यकीन ॾियारियो त फंड्स ऐं वसीला फराहम कया वेंदा। हुन चयो त शाराए भुटो शहरांदर ट्रैफ़िक जे दॿाउ खे घटाईंदी ऐं M9 ऐं N5 शाहराहुनि जे विच में राब्ते खे बहितर बणाईंदी। ॻरी ट्रैफ़िक शहर खां ॿाहिरि मुंतक़िल थी वेंदी, जंहिंसां कराची जे रहवासियुनि खे वॾो रिलीफ़ मिलंदो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में अंधेर नगरी, सूबाई बिल्डिंग डिवीज़न कराची में असिस्टेंट इंजीनियर ते नवाज़िश। सूबाई बिल्डिंग्स डिवीज़न जे एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारनि टिनि पोस्टुनि ते मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियरनि खे इज़ाफ़ी चार्जूं हवाले थियल। एक्सटेन एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारे उहिदे ते हिचन ग्रेड जा असिस्टेंट इंजीनियर मुक़ररु हुजण सबबि वहिंवार रोलड़ जो शिकार बणियल आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिब वर्क्स खाते जे इख़्तियारनि पारां असिस्टेंट इंजीनियरनि ते ख़ासि नवाज़िश कंदे खेनि एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारा उहिदा इज़ाफ़ी चार्ज तौर खेनि हवाले कया विया आहिनि। केतिरनि ई महीननि खां वक्स खाते पारां XN1, XN2 ऐं XN3 वारे उहिदे ते एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियरनि खे मुक़ररु करण बजाए पंहिंजे मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियरनि खे मथियनि उहिदनि ते मुक़ररु कयो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल मालूमात मूजिबि XN1 वारे उहिदे ते असिस्टेंट इंजीनियर वजाहत पाटोली खे इज़ाफ़ी चार्ज मिलियल आहे, जॾहिं त XN2 वारे उहिदे ते वरी असिस्टेंट इंजीनियर अब्दुल्ला मस्तोई ऐं XN3 जे उहिदे जे असिस्टेंट इंजीनियर ताहिर खान खे इज़ाफ़ी चार्ज मिलियल आहे। सिंध सेक्रेटरिएट जे मुख़्तलिफ़ ब्रेकनि समेत सरकारी आफ़ीसुनि, इस्पतालुनि ऐं ॿियनि सरकारी इमारतुनि में मरमती ऐं तामीराती कमनि वारा हलंदड़ मंसूबा असिस्टेंट इंजीनियर वक़्त हवाले करण सबबि समूरो वहिंवार सख़्त मुतासिर थी रहियो आहे। ज़रनि वटां मिलियल ॼाण मूजिबि त वक़्त खाते में 14 खां 19 ताईं असिस्टेंट इंजीनियर मथे ग्रेड वारे एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर जे उहिदे ते तरक़ियूं माण जे इंसार में वेठल आहिनि, पर वक़्त खाते जे अख़्तियारनि पारां ॼाणायल असिस्टेंट इंजीनियरनि जे लाइ 4 महीननि खां DPC रोकी वई आहे, जंहिं करे असिस्टेंट इंजीनियर केतिरनि ई महीननि खां तरक़ियूं माण खां महरूम बणियल आहिनि। सिंध काबीना पारां मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम में वाद कैब सर्विस लाइ सेल्स टैक्स में वॾी घटाई जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में अवामी सहूलियत लाइ अहम फ़ैसिला कया विया, जंहिं में पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम जे मद में 31 मई 2026 ताईं वाद कई वई। वॾे वज़ीर हिदायत कई त फ्यूल सब्सिडी जे मद में मई महीने जे लाइ 12 अरब रुपया फौरी तौर जारी कया वञनि। इजलास दौरान वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त हिन वक़्त ताईं 5,48,000
ॿ खां वधीक माण्हुनि खे फ्यूल सब्सिडी जी अदायगियूं जारी आहिनि, जॾहिं त हींअर ताईं 1.96 अरब रुपया विरिहाया विया आहिनि। काबीना पारां मोटरसाइकिल कैब सर्विस ऑनलाइन राइडिंग एप्स जे लाइ सेल्स टैक्स में बि वॾी घटताई कई वई आहे। ब्रीफिंग मूजिब काबीना सेल्स टैक्स खे 5% मां घटाए 2% करे छॾियो आहे, जंहिंसां सालियानो 120 मिलियन रुपियनि जो माली असर पवंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो चवण हो त हिन क़दम सां ऑनलाइन सर्विस फराहम कंदड़ सवेन ड्राइवरनि खे सिधो सओं फ़ाइदो पहुचंदो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गॾियल चटाभेटीअ वारे इम्तिहान 2024 जे लिखत वारे इम्तिहान जा नतीजा जारी करे छॾिया आहिनि, जंहिंमें 70 उमेदवार कामयाब करार ॾिना विया आहिनि। कामयाब उमेदवारनि खे हिदायत कई वई आहे त 7 ॾींहनि जे अंदरि तालीमी सर्टिफिकेट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे आफ़िस में जमा कराइनि। ॿिए मरहले में कामयाब उमेदवारनि खां इंटरव्यू वरितो वेंदो। नतीजनि वारे नोटिफिकेशन में ॼाणायो वियो आहे त कामयाब ऐं नाकाम थींदड़ उमेदवारनि जूं मार्कूं वेबसाइट ते रखियूं वयूं आहिनि। चटाभेटीअ जे इम्तिहान में 70 उमेदवारनि मां सभ खां वधीक कराची जा 15 उमेदवार कामयाब थिया आहिनि, जॾहिं त खैरपुर ज़िले जा 6, सखर जा 4, लाड़काणू 4, होटकी 4, मटियारी 3, उमरकोट 2, थरपारकर 2, ठट्टो 2, जामशोरो 2, दादू 2, बदीन 2, टडो मामन खान 1, सांगड़ 2, नौशर फिरोज 1, उमरकोट 1, कंबर 1, जिकमाबाद ज़िले जा 2 ऐं कश्मोर ज़िले जा बि 1 उमेदवार कामयाब थिया आहिनि। पहिरें नंबर ते थरपारकर जो बशीर अहमद सुमरो आहे, जंहिं 610 मार्कूं हासिल कयूं आहिनि। सिंध जा 3 तारीख़ी क़िला आलमी सकाफ़ती विरसे जी फ़हरिस्त में शामिल। यूनेस्को मीरपुर ख़ास जे नओ कोट क़िलो, खैरपुर जो कोटडीज क़िले ऐं उमरकोट क़िले खे पंहिंजे लिस्ट में शामिल करे छॾियो आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि त अक़वामे मुतहिदा जे तालीमी, साइंसी ऐं सकाफ़ती इदारे यूनेस्को सिंध जे 3 तारीख़ी क़िलनि खे आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल करण जे लाइ इब्तिदाई लिस्ट में बाज़ाबता तौर शामिल करे छॾियो आहे। उन ॾस में यूनेस्को जे पाकिस्तानी नुमाइंदे नोटिफिकेशन पिण जारी कयो आहे, जंहिंमें लाॻापियल इख़्तियारनि खे 3 किलनि बाबति आगाही ॾिनी वई आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जे क़दीमी असारनि वारे खाते जे डायरेक्टर जनरल अब्दुल फताह शेख जो चवणु आहे त नओं कोट क़िलो, उमरकोट क़िलो ऐं कोट निजी क़िलो यूनेस्को जे इब्तिदाई लिस्ट में शामिल थियण बाद 3 माॻनि खे आलमी सतह ते पज़ीराई मिलंदी। हुन चयो त तारीख़ी हंधनि खे हतमी तौर लिस्ट में शामिल करण खां अॻु खेनि इब्तिदाई फ़हरिस्त में शामिल कयो वेंदो आहे, जंहिं दौरान उन्हनि जी तारीख़ी, सकाफ़ती ऐं साइंसी इतबार खां जाइज़ो वरितो वेंदो आहे।

0: पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। मुल्क में वधंदड़ दवाउन जी कीमत ऐं जाली दवाउन जे कारोबार अवाम जी जिंदगी के सख्त खतरे में विझी छड़ियो आहे। बीमारियों से विरड़ गरीब मानू अज दवा खरीद करण जी सग विञाए वेठो आहे। माहिरन मूजिब दवाउन जे अघ में बार बार वाध जो वॾो सबब हुकूमत पारां कीमतुनि ते कंट्रोल खत्म करणु आहे। अॻु हुकूमत दवाउन जी कीमतुनि खे ज़ाब्ते हेठि रखंदी हुई, पर आहिस्ते आहिस्ते दवा साज़ कंपनियुनि खे मुकमल आज़ादी मिली वई, जंहिंखां पोइ दवाउनि जूं कीमतूं केतिरा ई भेरा वधियूं। नतीजे तौर मरीज़नि लाइ इलाज कराइण ॾुखियो बणिजी वियो। गरीब लाइ इलाज ख़्वाब बणिजी वियो। अॼु केतिरा ई मरीज़ पंहिंजे इलाज अध में छॾे रहिया आहिनि, छाकाणि त सदन आमदनी दवाउनि जे ख़र्च अॻियां बेवस बणिजी वञे थी। केतिरा ई वालदेन पंहिंजे ॿारनि जी तालीम या घर जी ज़रूरतुनि ते ख़र्च घटाए दवाऊं ख़रीद करण ते मजबूर आहिनि। ख़ासि तौर ते दिल, शुगर, कैंसर ऐं गुर्दनि जी बीमारियुनि में इस्तेमाल थींदड़ दवाउनि जूं क़ीमतूं आम माण्हू जे बर्दाश्त खां ॿाहिरि थी वियूं आहिनि। ड्रिप ते सवालिया निशान। सिहत जे शोबे सां लाॻापियल माहिरनि ऐं समाजी हलकनि जो चवणु आहे त दवा साज़ इदारनि जी निगरानी कंदड़ इदारे ड्रिप जी कारकर्दगी ते सख़्त सवाल उथनि था। इल्ज़ाम आहिनि त कुझु अमलदारनि दवा साज़ कंपनियुनि सां गठजोड़ करे अवामी मुफ़ादनि जे बदिरां कार्पोरेट मुफ़ादनि खे तहफ़ुज़ ॾेई रहिया आहिनि। जाली दवाउनि जे कारखाननि ख़िलाफ़ कार्रवायूं महदूद ऐं गैर असराइतियूं नज़र अचनि थियूं। हुकूमत लाइ अहम सवाल। जेकॾहिं रियासत पंहिंजे शहरनि खे सस्तो इलाज ऐं मयारी दवाऊं फराहम नथी करे सघे त पोइ उहा पंहिंजे बुनियादी ज़िमेवारी निभाइण में नाकाम सम्झी वेंदी। सिहत कंहिं बि रियासत जी बुनियादी ज़िमेवारियुनि मां हिकु आहे, पर मौजूदा हालतुनि में लॻे थो त हुकुमराननि लाइ अवामी मसइलनि खां वधीक अहमियत कारोबारी मफ़ादनि खे हासिलु आहे। माहिरनि जूं तजवीज़ूं। माहिरनि ऐं समाजी तनज़ीमुनि हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त दवाउनि जी क़ीमतुनि खे ॿीहर रेगुलेट कयो वञे, ड्रिप जी आज़ाद जांच कराई वञे, करप्ट अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे, जाली दवाऊं ठाहींदड़नि जे लाइ ख़ासि अदालतूं क़ाइमु कयूं वञनि, सरकारी अस्पतालुनि में मुफ़्त ऐं मयारी दवाऊं फराहम कयूं वञनि, दवा साज़ कंपनियुनि ऐं डॉक्टरनि जे गठजोड़ रोकण जे लाइ शफ़ाफ़ कानून ठाहिया वञनि। गॾियल आवाज़ जी ज़रूरत। ही मसइलो रुगो दवाउनि जी महांगाई ताईं महदूद न आहे, बल्कि लखे माण्हुनि जी ज़िंदगी ऐं मौत सां जुड़ियल आहे। उन लाइ पार्लियामेंट, अदलिया, मीडिया ऐं सिविल सोसाइटीअ खे गॾिजी आवाज़ उथारणो पवंदो, जीअं अवाम खे सिहत जहिड़ो बुनियादी हक़ फराहम थी सघे। जेकॾहिं वक़्त सर क़दम न खया विया त ग़रीब माण्हू इलाज जे खोड़ सबबि वधीक तकलीफ़ुनि ऐं मौत जे मुंहं में वञण ते मजबूर थी वेंदा। हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
2: GFM 90.8।
1: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़, नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज़।
3: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर से हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वो है होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे तई बरोज जुम्मो मोकल है एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण वधिक मशोरे राबते के लिए 0327-99-84-763
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
4: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।